एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज वीरवार है, शक संबत 1948 के भाद्रपद माह की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज का प्रसारण आरंभ होता है।

हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाला भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाले डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी

0: श्रम ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी, ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जनभागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली सरकार आज से एक महीने तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान की भी शुरुआत करेगी। इस दौरान परिवहन, सड़क, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कोनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभयारण्य में है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आइए सुनते हैं चिंतन।

ज्ञान और भक्ति आध्यात्मिक जीवन के दो ऐसे आधार हैं जो मनुष्य को सत्य, शांति और ईश्वर के समीप ले जाते हैं। ज्ञान हमें सही और गलत का विवेक देता है, जबकि भक्ति हमारे हृदय को प्रेम, समर्पण और विनम्रता से भर देती है। जब ज्ञान और भक्ति का सुंदर संगम होता है, तब मनुष्य का जीवन सार्थक बन जाता है। जब ज्ञान हमारे कर्मों को दिशा देता है और भक्ति हमारे हृदय को पवित्र बनाती है, तभी जीवन में आनंद, संतोष और आत्मिक शांति का अनुभव होता है।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का मधुर कार्यक्रम, जहां हर गीत में आस्था, हर सुर में शांति और हर शब्द में है प्रभु का आशीर्वाद।

जिस मन में विश्वास का दीप जलता है उसके जीवन में उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए।

भक्ति वह मधुर स्वर है जो सीधे हृदय से निकलकर प्रभु के चरणों तक पहुंचती है। आइए प्रभु का नाम स्मरण करते हुए इस मधुर संगीतमय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं इस भक्तिमय रचना के साथ।

इसी भजन के साथ थे आज का भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं, आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान का भाग 212।

चित्रकूट पहुंचकर श्री राम को देखते ही भरत, हे नाथ रक्षा कीजिए कहकर रूखे सूखे बांस की तरह पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत और राम का इस प्रकार का हृदय स्पर्शी मिलन देखकर उपस्थित लोगों को अपनी सुधि न रही। कैसे वर्णन किया जाए इस प्रेम मिलन का, जो कवि के कर्म, मन और वाणी तीनों की पहुंच से परे है। भरत श्री राम का प्रेम ऐसा अगम्य है जहां ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का मन भी नहीं पहुंच सकता। संभवतः इसी कारण दोनों भाइयों का मिलन देख देवता इस आशंका से भयभीत हो गए कि श्री राम को अयोध्या लिवा ले जाने में भरत सफल न हो जाएं। किंतु देवगुरु बृहस्पति के समझाने पर उनका भय जाता रहा और उन्होंने भ्रातृप्रेम के इस अभूतपूर्व दृश्य पर पुष्प वर्षा की। श्री राम सहज प्रेम से शत्रुघ्न से मिले और फिर केवट निषाद राज से भरत और लक्ष्मण और फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का मिलन हुआ। भरत और लक्ष्मण ने सीता के चरणों की रज अपने माथे पर धारण की। स्नेह और शील का ये अद्भुत दृश्य है जहां उपस्थित सभी लोग प्रेम और आनंद के सागर में गोते लगा रहे हैं। कोई न कुछ कहता है न ही कुछ पूछता है। तब निषादराज बोले, हे नाथ, कुलगुरु वशिष्ठ जी के साथ सभी माताएं, नगर निवासी, सेवकगण, सेनापति, मंत्री सभी आपके वियोग में व्याकुल

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से ये संगीतमय पाठ। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज तीनों सभाओं में प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे जानकारी और गीत संगीत का कार्यक्रम सुबह सुहानी। 7:40 पर सुनवाया जाएगा कार्यक्रम शुभ प्याग। 7:55 पर सुनिएगा देशगान। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम सुनवाया जाएगा गाने सुहाने। 9:00 आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि। 10:00 कार्यक्रम रहेगा गीतों का कारवां। 10:30 पर हिमाचली गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर प्रस्तुत किया जाएगा। 11:05 पर आप सुनेंगे पंजाबी गीतों का कार्यक्रम महक पंजाब दी। 11:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग आप सुनेंगे। 12:00 सुनिएगा कार्यक्रम सैनिकों के लिए। 12:30 पर सखियों के लिए कार्यक्रम मिंजरा प्रस्तुत किया जाएगा। 1:10 से 5:00 तक आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। 5:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी भजन। 5:25 ये समय रहेगा युवाओं के कार्यक्रम युवा मंच का। 5:55 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण।

पर सुनिएगा कार्यक्रम सुरमई सांझ 6:30। ये समय रहता है कार्यक्रम मौजा ग्राइंदिया का। शाम 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी। 8:00 कार्यक्रम सुनिएगा सबरस, जो विविध संगीत पर आधारित रहेगा। 8:30 पर देशभक्ति गीत सुनवाए जाएंगे। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम सुनवाया जाएगा एक ही कलाकार। आज की कलाकार रहेंगी शवाना आजमी। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम रंगी गजल सुनवाया जाएगा। रात्रि 10:00 हिमाचली लोकगीत आप सुन सकेंगे। 10:30 पर कार्यक्रम सुनिएगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20, 11:00, दिन में 3:00, शाम 6:00 और रात्रि 7:45 पर प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज, 1:00 हिंदी में समाचार, शाम 5:00 हिंदी में समाचार, 7:00 और रात 11:00 हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे। दिन में 1:05 पर, शाम 5:05 पर, शाम 7:05 और रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9:00 News@9 आकाशवाणी दिल्ली से ही रिले किए जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत बिना किसी कानूनी आधार वाले पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट

0: युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री को भी प्रकाशित की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा आज विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है उसमें अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे हैदराबाद में आयोजित हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। 4 वर्ष पहले नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से चीतों को भारत लाया गया था। कार्यक्रम के तहत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। 52 चीतों में से 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान और 3 गांधी सागर अभ्यारण्य में हैं। 17 सितंबर 2022 से 17 सितंबर 2026 तक की स्थिति समीक्षा के अनुसार इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए जीवित चीते और उनकी संतानों के साथ बोत्सवाना से हाल में लाए गए चीते भी शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 today morning at Yashobhoomi in New Delhi. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems, Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policymakers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning today. The initiative is designed to commemorate Prime Minister Narendra Modi's birthday today and celebrate completion of his 25 years of public service as a head of government. To mark the occasion, a Seva Sankalp Abhiyan will be launched from his hometown, Vadnagar, in Gujarat today. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will flag off a Vadnagar to Varanasi bike rally as part of the celebrations. A report.
3: A series of welfare programs will be held at PM's birthplace in Vadnagar today on the occasion of his birthday and 25 years of his public service. Union Home Minister Amit Shah and Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel will participate in a grand Mahaarti at the historic Shamishta Lake, where sacred water will be collected in a kalash and handed over to bikers travelling to Varanasi. The dignitaries will lead a foot march from the lake to Hatkeshwar Temple to offer prayers, followed by flagging off a rally of 250 bikers heading to Varanasi to spread the message of public service. Home Minister and Chief Minister will also lead a cleanliness drive at Vadnagar Railway Station today. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.

0: सुबह सुहानी।
1: सुबह सुहानी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जी श्रोताओं, सुहाना सा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं और दिल को छूती संगीत की मधुर धुनें, भला इससे खूबसूरत सुबह और क्या ही हो सकती है। तो आइए इस खुशनुमा मौसम और गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ आज की इस सुबह सुहानी को बनाते हैं और भी खास, जिसकी शुरुआत होगी आज के सुविचार के साथ। कहते हैं श्रोताओं, इंसान की आवाज केवल कानों तक नहीं पहुंचती, उसके शब्द सीधे दिल का रास्ता तय करते हैं। एक मीठा शब्द किसी उदास चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, वहीं एक कड़वा वचन किसी अपने को दिल उसका दुखा सकता है। तो बोलिए ऐसा कि आपकी बातों में मिठास हो, आपके शब्दों में सम्मान हो और आपकी वाणी में अपनेपन का एहसास हो, क्योंकि सुंदर चेहरा केवल कुछ ही समय का आकर्षण है, लेकिन मीठी वाणी जीवन भर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेती है। तो याद रखिए श्रोताओं, मीठी वाणी शब्दों की मिठास ही नहीं बल्कि हमारे मन की भी सुंदरता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम में आप जान लेते हैं श्रोताओं आज के दिन के इतिहास के बारे में। जी हाँ, आज का दिन इतिहास के पन्नों में भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं की गवाही देता है। तो समय के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहता है 17 सितंबर का ये दिन इतिहास में। 1630 में अमेरिका के बॉस्टन शहर की स्थापना हुई 17 सितंबर को। सन 1787 में अमेरिका के संवैधानिक सम्मेलन में अमेरिकी संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। सन 1978 में कैंप डेविड समझौते ने विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ा। 1949 में दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का गठन किया गया। 1957 में मलेशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 1956 में भारतीय तेल एवं प्राकृतिक गैस का गठन किया गया। 1982 में भारत और श्रीलंका के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया और आज ही के दिन नीदरलैंड के नाव

वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बडनगर में हुआ। आधुनिक भारतीय चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले मशहूर चित्रकार एम एफ हुसैन का जन्म आज ही के दिन हुआ। भारतीय क्रिकेट के प्रमुख ऑफ स्पिन गेंदबाज और ऑलराउंडर रविचंद्रन अश्विन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। पत्रकारिता, लेखन और सुधारवादी विचारों के प्रचारक प्रबोधंकर ठाकरे का जन्म भी आज ही के दिन हुआ और समाज सुधारक और द्रविड़ आंदोलन के प्रमुख विचारक ईवी रामास्वामी पेरियड का जन्म भी आज ही के दिन सन 1889 को हुआ।

धर्मशाला केंद्र से ये कार्यक्रम इस समय चल रहा है और समय 7:22:52। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और उन महान हस्तियों को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया और अपने विचारों, प्रतिभा और कर्मों से दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी। आज ही के दिन अमेरिकी हास्य कलाकार, अभिनेता और टीवी कलाकार रेड स्केल्टन, जी हाँ, हमें अलविदा कह गए। भारतीय फिल्म जगत के मशहूर गीतकार और शायर हसरत जयपुरी का निधन भी आज ही के दिन हुआ। 17 सितंबर 1999 को वो हमें अलविदा कह गए। उन्होंने भारतीय संगीत को कई यादगार गीत दिए। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार भी प्रदान किया गया। कार्ल पॉपर, प्रसिद्ध ऑस्ट्रियाई ब्रिटिश दार्शनिक, ये भी आज ही के दिन हमें अलविदा कह गए। इनका विज्ञान, दर्शन और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। विली मॉस्कोनी अमेरिका के पेशेवर पूल खिलाड़ी थे जो कि 17 सितंबर 1993 को हमें अलविदा कह गए। इसी के साथ जानकारी के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और एक और महत्वपूर्ण दिन की बात कर लेते हैं। जी हाँ, 17 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। इसका उद्देश्य, श्रोताओं, स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान होने वाली ऐसी हानियों को कम करना है जिन्हें उचित सावधानी और बेहतर व्यवस्था से रोका जा सकता है। रोगी की सुरक्षा केवल डॉक्टर या अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें स्वास्थ्यकर्मी, मरीज, परिवार और समुदाय की भी भूमिका रहती है। दवाओं का सही ज्ञान होना, डॉक्टर की सलाह को समझना, जांच और उपचार के बारे में सवाल पूछना, अपनी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी सही सही साझा करना भी सुरक्षित देखभाल का हिस्सा है। इसलिए सुरक्षित उपचार बेहतर स्वास्थ्य की पहचान है। सजग मरीज, सहयोगी परिवार और जिम्मेदार स्वास्थ्य व्यवस्था सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा को और मजबूत बना सकता है। तो श्रोताओं, स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और सुरक्षित स्वास्थ्य देखभाल को अपना अधिकार और अपनी जिम्मेदारी दोनों समझिए। सही जानकारी लीजिए, डॉक्टर से कोई भी सवाल पूछने में संकोच बिल्कुल ना कीजिए और याद रखिए, एक अच्छा स्वास्थ्य ही हमारा सर्वोत्तम धन है। और अब फिर से रुख करते हैं गीत संगीत की तरफ और ले चलते हैं आपको खूबसूरत से सफर की तरफ।

जी श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत सी शुरुआत हो चुकी है आज की सुबह की आपके अपने इस कार्यक्रम सुबह सुहानी के साथ। श्रोताओं, 17 सितंबर को एक और दिन मनाया जाता है, यानी आज के दिन विश्वकर्मा की पूजा भी की जाती है। विश्वकर्मा जयंती आज मनाई जाती है। संक्रांति के अवसर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। उन्हें हिंदू परंपरा में देवताओं के शिल्पकार और वास्तुकार के रूप में माना जाता है। जी हाँ, ये पर्व केवल पूजा का अवसर नहीं बल्कि मेहनत, हुनर और कला निर्माण के सम्मान का भी दिन है। जिन हाथों से औजार चलते हैं, जिन मशीनों से निर्माण होता है, जिस कौशल से तकनीक जन्म लेती है, जिस रचनात्मकता को निर्माण की शक्ति का प्रतीक माना जाता है, आज का दिन उन्हीं के सम्मान का दिन है। ये पूजा हमें सिखाती है कि हर हुनर, हर मेहनत को सम्मान हमें देना है। जिस हाथ में हुनर है वही हाथ निर्माण करता है, जिस मन में लग्न है वही नया संचार गढ़ता है। और अपने काम, अपने हुनर और अपने औजारों का हमेशा सम्मान करें, मेहनत को अपना साथी बनाएं, ईमानदारी और अपनी निष्ठा से हर काम को अच्छे से करें, ताकि हर कार्यस्थल को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले और हम सभी नई रचनाओं के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। और अब भी हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। एक और पारंपरिक त्यौहार आज हम मना रहे हैं, जी हाँ, सैर सायर और सैर साजा इसे कहते हैं। ये मुख्य रूप से कांगड़ा, चंबी, चंबा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, कुल्लू, शिमला में मनाया जाता है। ये दिन ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाने का अवसर है। किसानों की खरीफ की फसल पककर तैयार हो चुकी है और वे प्रकृति और भगवान का आभार जताते हैं इस पर्व को मनाकर। इस दिन सैरी माता की पूजा की जाती है। मौसमी फल उन्हें अर्पित किए जाते हैं। कहीं रक्षाबंधन पर बांधी गई राखी इस दिन उतार कर सैरी माता को अर्पित करने की भी परंपरा है। इस दिन कहीं अखरोट का खेल हमें देखने को मिलता है तो कहीं गलगल के दर्शन की प्रथा सुनने और देखने को मिलती है। कहीं बैलों की लड़ाई तो कहीं मीठे नमकीन पकवानों का आदान प्रदान होता है। तो श्रोताओं, हमारे पारंपरिक त्यौहार हमारी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को पहचान देते हैं। यही त्यौहार हमें हमारी जड़ों और विरासत से जोड़ते हैं। तो संजो कर रखिए अपनी संस्कृति को, परंपराओं को और मिलकर मनाते रहिए इन त्यौहारों को।

सुबह सुहाने कार्यक्रम में अब रुख करते हैं देश और दुनिया की प्रमुख खबरों की तरफ। भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए बातचीत जारी है। भारत के नेपाल स्थित राजदूत ने नेपाल के विदेश मंत्री से मुलाकात की। आज नई दिल्ली में यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार आयोजित करेगी 4 प्रमुख कार्यक्रम। इसके साथ ही भारतीय तटरक्षक बल का 43वां कमांडर्स डिफेंस कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में विशेष स्वच्छता अभियान के 6 चरण के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। और एक और ताज़ा तरीन खबर आपके साथ साझा करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र पर लगाए प्रतिबंध को 1 महीने और बढ़ाने की घोषणा की है। 2026 की एशियाई खेलों को देखते हुए भारतीय महिला कबड्डी टीम

खिताब बचाने की तैयारी कर रही है। वहीं भारतीय टीम के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती चोट के कारण एशियाई खेलों से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह बिप्रज निगम को जो है वो शामिल किया गया है। और इसी के साथ मौसम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं मौसम के हाल। आज देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा। दिल्ली, चंडीगढ़ और कुछ शहरों में बारिश के आसार हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ जगह पर गरज चमक की भी संभावना है। सामान्यतः आज आसमान बादलों से घिरा रहेगा और बताया जा रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जब भी आप सैर करें थोड़ा सा ध्यान रखें और पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जारी रह सकती है। तो सुहाने से इस मौसम का आनंद लेते हुए सावधानी भी ज़रूर रखनी है आप सभी श्रोताओं ने, और बारिश का भी आनंद लेते रहना है। और चलते चलते एक और प्यारा सा गीत सभी श्रोताओं के लिए।

जी श्रोताओं, मुलाकात का ये सिलसिला जारी रहेगा। जी हाँ, फिर कभी। और अब इस कार्यक्रम का समय यहीं पर संपन्न होता है। श्रोताओं नमस्कार।

0: सुबह सुहानी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। प्रातः के 7:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिमाचली गीतों और लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्याग।

इसी लोकगीत के साथ थे। कार्यक्रम शुभ प्याग अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। सुबह के 7:55 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथा कथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान को अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से संबंधित किसी भी समझौते में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था पर प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया। और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। आज से शुरू हो रहे 3 दिन के सम्मेलन और प्रदर्शनी का विषय है सिलिकॉन से सिस्टम्स, बिल्डिंग द इकोसिस्टम। इसमें सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी वैश्विक और भारतीय कंपनियां, नीति निर्माता, निवेशक, शोधकर्ता, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना है। समानांतर सत्रों में डिस्प्ले उद्योग में हुई प्रगति, सहयोग और संयुक्त उद्यमों को सुगम बनाने के लिए डिजाइन किए गए 6 कंट्री राउंड टेबल, महिला नेतृत्व पर एक मंच आदि शामिल होंगे। सेमिकॉन इंडिया 2026 एक व्यापक मूल्य श्रृंखला दृष्टिकोण अपनाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर सामग्री, उपकरण और चिप डिजाइन से लेकर निर्माण, उन्नत पैकेजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिस्टम तक की यात्रा प्रदर्शित की जाएगी। नया रेत से सिलिकॉन से सिस्टम तक मूल्य श्रृंखला अनुभव सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में इस पूरी यात्रा को प्रस्तुत करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2026 में 600 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 50,000 आगंतुकों को आकर्षित करने की उम्मीद है। इनमें 52 देशों से प्रतिनिधि, 400 से अधिक अधिकारी और 150 से अधिक वक्ता शामिल

0: होंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली को रवाना करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके जनसेवा के 25 वर्षों के उपलक्ष्य पर उनके जन्मस्थान वडनगर में विभिन्न जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ऐतिहासिक शर्मिष्ठा तालाब पर आयोजित महाआरती में भाग लेंगे, जहां से पवित्र जल का कलश वाराणसी जाने वाले बाइकर्स को सौंपा जाएगा। इसके बाद दोनों नेता हाटकेश्वर मंदिर तक पदयात्रा पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पटेल वडनगर रेलवे स्टेशन पर स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान भी करेंगे। अपर्णा खूंट की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके जन्मदिन के मौके पर कई भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चन और रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी से वडनगर तक की सेवा यात्रा पर निकलने वाले 500 युवा बाइकर्स का सम्मान भी किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री JPS राठौर ने बताया कि युवा बाइकर्स को सेवा यात्रियों के रूप में झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। बाइक यात्रा के शुभारंभ से पहले काशी स्थित ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ का पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आज सेवा, समर्पण और जन भागीदारी से जुड़े चार प्रमुख कार्यक्रम आयोजित करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान परिवहन, सड़क, सीवरेज, जल शोधन, शिक्षा, बिजली, जन सुविधाओं और शहरी सौंदर्यकरण से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा।
4: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत आज कर्तव्य पथ पर 1,00,000 से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। जन सेवा से देश सेवा के मार्गदर्शक सिद्धांत से प्रेरित ये कार्यक्रम जन भागीदारी और सेवा की भावना का एक मजबूत संदेश देगा। इस बीच त्यागराज स्टेडियम में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुर में GD करनालोड पर खाटू श्याम तेली धाम में 108 कुंडीय यज्ञ का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों के लिए एक नमो श्रमिक सेवा केंद्र शुरू किया जाएगा, जो एक ही छत के नीचे पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और कल्याण योजनाओं से संबंधित सेवाएं प्रदान करेगा। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से इस सोच को जमीन पर उतारने के एक उदाहरण की जानकारी दे रहे हैं। मेक इन इंडिया के अंतर्गत उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजनाओं के माध्यम से भारत में 20,41,000 करोड़ रुपए से अधिक का उत्पादन हुआ है और 14,15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
5: वर्ष 2014 में शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण शक्ति में बदल दिया है। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 13.11 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वहीं मोबाइल फोन निर्यात में 171 गुना की अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिससे भारत एक शुद्ध आयातकर्ता से एक शुद्ध निर्यातकर्ता बन गया है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड विजन को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत का मुख्य आधार बताया।
6: सारण और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए सारण का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। सारण में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी।
5: आकाशवाणी से बात करते हुए राजकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष पार्थ गणात्रा ने बताया कि मेक इन इंडिया योजना से राजकोट के MSME क्षेत्र को बड़ा लाभ हुआ है।
7: हाल राजकोट MSME उद्योग काफी सुवर्ण युग से पसार हो रहा है, उसमें कई वजह से उसको प्रोत्साहन मिला है। खास करके सरकार का जो हाल ही का निर्णय है मेक इन इंडिया, उसकी वजह से रेलवे और डिफेंस में भी राजकोट के काफी स्पेयर पार्ट्स जाने शुरू हो चुके हैं।
5: आज गुजरात मेक इन इंडिया पहल के प्रमुख विकास इंजनों में से एक बना है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधान

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उसके अवैध कब्जे वाले भारतीय भूभाग से संबंधित किसी भी व्यवस्था में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में भारत का स्पष्ट मानना है कि पाकिस्तान और चीन के बीच कोई सीमा नहीं है। श्री जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा रहेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें स्वच्छता वाले चिन्हित स्थानों और सार्वजनिक स्थलों का कायाकल्प, स्वच्छ पाठशाला, स्वच्छता के लिए युवा, सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी और स्वच्छता से समृद्धि शामिल हैं। हैदराबाद रियासत ने 17 सितंबर 1948 को आज ही के दिन भारतीय संघ में विलय किया था। इसकी स्मृति में आज हैदराबाद में मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार वर्ष 2022 से आधिकारिक रूप से हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह आयोजित कर रही है। मुख्य कार्यक्रम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि होंगे। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए 2023 के बाद पहली बार अपनी प्रमुख ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। दर में 1/4% की बढ़ोतरी के बाद फेडरल रिजर्व की प्रमुख दर लगभग 3.9% हो गई है। अमेरिका में प्रतिनिधि सभा ने रूस के अधिकारियों और अर्थव्यवस्था को लक्षित करते हुए व्यापक प्रतिबंध लागू करने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक का नाम दक्षिण कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखा गया है। विधेयक के समर्थन में 262 और विरोध में 159 सांसदों ने मतदान किया। विधेयक को पारित होने के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। भारत में चीता संरक्षण कार्यक्रम के 4 वर्ष पूरे होने पर देश में चीतों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक 32 शावकों का जन्म हुआ है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात में भी आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत पहले 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद जया। प्रधानमंत्री की जन्मतिथि पर आज से शुरू होगा सेवा संकल्प अभियान, 1.25 लाख दियों से जगमग होगा कर्तव्य पथ। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ शीर्षक दिया है। राजस्थान पत्रिका ने विशेष कॉलम में लिखा है, मोदी @76, संघर्ष से शिखर तक का सफर।

0: दैनिक जागरण के संपादकीय में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा है, मोदी के शासनकाल की सबसे स्थायी उपलब्धि भारतीय समाज की मुख्य धारा का विस्तार है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 रूपए प्रतिमाह करने के समाचार को आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने खुशखबरी शीर्षक से लिखा है, कैबिनेट में लिया गया फैसला, पेंशन का दायरा बढ़ेगा। 2013 झीरम घाटी हमला, 10 दोषियों को सजाए मौत, पंजाब केसरी के शब्द हैं। पत्र लिखता है, हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत 29 की मौत हुई थी। तृणमूल के 10 बागी विधायकों को अयोग्यता याचिका पर नोटिस जारी, हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान अपने संपादकीय पन्ने पर भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, ब्रिक्स से भारत को मिले अनेक लाभ। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि सामरिक दृष्टि से भारत का महत्व बढ़ा है। भारत आज न केवल ब्रिक्स बल्कि G20, G7, क्वाड, SCO जैसे तमाम वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। जनसत्ता ने देश व्यापार पन्ने पर लिखा है, न्यूजीलैंड की संसद ने भारत के साथ व्यापार समझौते को मंजूरी दी। पत्र लिखता है, इसके अंतर्गत न्यूजीलैंड भारत के 100% निर्यात पर शुल्क मुफ्त पहुंच देगा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। भारत ने तथाकथित पाकिस्तान चीन सीमा संयुक्त आयोग को खारिज किया। अमेरिका फेडरल रिजर्व ने 3 साल में पहली बार ब्याज दरें बढ़ाई और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. BJP to launch month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan today to mark Prime Minister Narendra Modi's birthday. India rejects so-called Pakistan-China Boundary Joint Commission, says Islamabad has no locus standi to enter into arrangements concerning Indian territory under its illegal and forcible occupation. U.S. Federal Reserve raises interest rates for first time in 3 years. U.S. House of Representatives passes package of sanctions targeting Russian officials and key pillars of its economy. And in men's cricket, third and final T20 international between India and Afghanistan to be played in Delhi this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi this morning. Prime Minister will also address the gathering on the occasion. The 3-day conference and exhibition being held from today is being organized on the theme Silicon to Systems Building the Ecosystem. It will bring together global and Indian companies, policy makers, investors, researchers, startups, academic institutions and students from across the semiconductor and electronics value chain. More from our correspondent.
3: The conference will focus on advancing collaboration, investment, innovation and talent development in India. Parallel sessions will cover advancements in the display industry, 6-country roundtables are designed to facilitate collaboration and joint ventures, a forum on women's leadership, among other sessions. Semicon India 2026 will adopt a comprehensive value chain approach, showcasing the journey from semiconductor materials, equipment and chip design to fabrication, advanced packaging, electronics and systems. It will feature more than 600 participating companies and is expected to attract around 50,000 visitors with representatives from 52 countries, more than 400 executives and over 150 speakers. Anupam Mish, Akashwani News, Delhi.
2: Bharatiya Janata Party will launch a month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan beginning

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं फिल्म दिल है तुम्हारा के इस खूबसूरत से गीत के साथ। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने। संगीत नदीम श्रवण का और बोल हैं समीर के।

सुल्तान फिल्म का गीत अभी आपके रेडियो सेट्स पर है। इस गीत को गाया है राहत फतेह अली खान ने। संगीतकार विशाल शेखर और गीतकार इरशाद कामिल।

गाने सुहाने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के संग। अभी आपने राजनीति फिल्म का गीत सुना मोहित चौहान और साथियों की आवाज में। ये रहा कार्यक्रम का अगला नगमा।

0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: बच्चों हमेशा रखो याद, चॉकलेट मिठाई या आइसक्रीम खाने के बाद आगे पीछे ऊपर नीचे दिन में दो बार, सुबह और शाम डेली दो मिनट दो बार। दांतों की सफाई बहुत जरूरी है, खूबसूरत चमचमाते दांत और प्यारी सी मुस्कान सबका दिल जीत लेती है। डेली दो बार ब्रश करने से आपके दांत स्वस्थ रहते हैं और मुंह में बीमारी फैलने वाले जर्म्स और बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
2: गर्भ धारण करने पर माता का पहला आवश्यक चरण नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जरूर करवाएं गर्भवती महिला का पंजीकरण।
3: गर्भ अवस्था की पुष्टि हो जाने पर गर्भवती महिला नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना पंजीकरण तथा जच्चा बच्चा कार्ड जरूर बनवाएं। प्रत्येक गर्भवती महिला को रजिस्ट्रेशन के बाद कम से कम 4 बार जाँच जरूरी है। पहली जाँच पहली माहवारी छूटते ही, दूसरी जाँच गर्भावस्था के 4th से 6th महीने में, तीसरी जाँच गर्भावस्था के 7th से 8th महीने में, चौथी जाँच गर्भावस्था के 9th महीने में।
2: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

0: Sporty look, standard 6 airbags or fuel efficiency up to 24.8 kmpl. Ye hai epic new Maruti Suzuki Swift Petrol. Ab paye powerful Z series engine ke saath, jo har drive ko banaye mazedar aur economical. Aur ab milega total benefits up to ₹35,000. Style, safety aur savings sab ek hi package mein. To der kis baat ki? Apne nazdeeki Maruti Suzuki Arena showroom par aaj hi visit kijiye aur Swift Petrol ghar laaye. Jaldi kijiye kyunki kimaton mein ₹20,000 tak ki badhotri jald hone wali hai. TNC apply.
1: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
2: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
1: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
2: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
1: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
3: बद्रीनाथ की दुल्हनिया, इस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट्स पर, और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और साथियों की।

अरिजीत सिंह के गाए इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने सुहाने अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बज चुके हैं और ये कार्यक्रम है सजीव फोन इन कार्यक्रम गीतांजलि का।

0: कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। जी हाँ श्रोताओं, समय बदलता है, संगीत के अंदाज बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर दौर में अपनी मिठास बनाए रखते हैं। उनकी धुन कानों को सुकून देती है और बोल सीधे दिल तक पहुंचते हैं। जी हाँ, तो आज सुनेंगे ऐसे ही सदाबहार नगमे जिन्हें एक पीढ़ी ने सुना, अगली पीढ़ी ने अपनाया और आज भी लोग बहुत प्यार से सुनते हैं। जी हाँ, विषय है हमारा गाना जो कभी नहीं हुआ हो पुराना। इस विषय पर श्रोता हमसे अपनी बातें साझा कर सकते हैं। नंबर वही 01892224391 और एक कॉलर हमारे साथ हैं, चलिए बात कर लेते हैं उनसे। हेलो हेलो, चलिए कोई बात नहीं, कार्यक्रम की अभी शुरुआत है और कॉलर से श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि जब भी हमें कॉल करें सिग्नल का थोड़ा सा ध्यान रखें। हेलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार।
1: नमस्ते,
0: कौन बात कर रहे हैं?
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में।
1: जी धन्यवाद।
0: तो आज का विषय सुना आपने?
1: विषय मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, लेकिन गाने का जिक्र किया कि पुराने गीत नई पीढ़ी ने अपनावा, थोड़ा सा और डिक्लेयर कर देंगे।
0: चलिए, वो गाना जो कभी नहीं हुआ पुराना, कौन सा गाना आपको ऐसा लगता है?
1: देखिए, हम तो पुराने गाने के बहुत शौकीन हैं,

0: सबसे ज्यादा हमें जिस गाने ने प्रभावित किया है वो गाना है जिंदगी एक सफर है सुहाना
1: जी।
0: जी, ये जी। गाना काफी ज्यादा सीखने समझने का मतलब मौका देता है या दस्तूर देता है और मुझे लगता है कि आने वाले के कई पीढ़ी तक मतलब ये गीत काफी मतलब चलेंगे
1: जी जी,
0: क्योंकि जीवन का जो सफर होता है वो काफी लंबा होता है और उस सफर में तमाम अच्छे भी समय आते हैं, कुछ खराब भी समय आते हैं और हर तरह से हम मतलब संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए ये गीत मुझे काफी ज्यादा पसंद है।
1: तो थोड़ा सा गुनगुनाएंगे इस गीत को?
0: बिल्कुल गुनगुना सकते हैं
1: जी।
0: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: जी चलिए, बहुत बढ़िया। और कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला केंद्र से।
0: बहुत बहुत
1: जी, शुक्रिया जी।

0: जी हाँ, जिंदगी तो एक सुहाना सा सफर है, इसमें कब क्या हो जाए किसे पता, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं, क्या कहते हैं ये। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं बोल रहा हूँ जी, पंजाब के जिला होशियारपुर, तहसील मुकेरिया के गांव मेहतापुर से महेंद्र सिंह राणा।
0: जी क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: देखिए, संगीत जो है हमारे जीवन में बहुत ही आनंद भी लाता है और हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
0: जी
1: जब संगीत बनता है, स्वर लय और ताल के तीनों जब मिल जाते हैं तो आनंद ही कुछ और है।
0: बिल्कुल।
1: देखिए, हमारे कवियों ने कितनी तरह के गाने लिखे हैं, मौसम के ऊपर गाने हैं, पशु पक्षियों के ऊपर गाने हैं,
0: जी
1: वनों के ऊपर गाने हैं, यहाँ तक कि धरती माँ के ऊपर भी गाने बनाए।
0: जी लेकिन आपको कौन सा गाना ऐसा लगता है जो कभी पुराना नहीं हुआ?
1: देखिए, गाना कोई भी हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी बात कही जाए, अपने शब्दों के द्वारा अच्छी तरीके से बात कही जाए तो सभी गाने अच्छे होते हैं।
0: जी
1: जैसे कि उपकार फिल्म का है, मेरे देश की धरती सुनना उगले उगले हीरे मोती।
0: जी
1: मतलब धरती के ऊपर भी मतलब गाने बने, हर चीज के ऊपर गाने बने हुए हैं।
0: कोई एक गाना बताएंगे?
1: जो मर्जी सुनवा दीजिए, गाना अच्छा होना चाहिए, शब्द अच्छे, लिरिक अच्छा होना चाहिए, फिर
0: जी
1: लय और सुर और ताल भी होनी चाहिए।
0: जी हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको कोई एक गाना ऐसा कौन सा लगता है जो कभी पुराना नहीं है और आज भी उसको सुने तो ऐसा लगता है कि बस दिल खुश हो गया। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में, कॉल की इसके लिए शुक्रिया।
1: शुक्रिया जी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार जी।
0: जी कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला कांगड़ा गांव से गोल्डी बात कर रहा हूँ।
0: जी तो बताएं, कौन सा गाना आपको लगता है जो कभी नहीं हुआ पुराना?
1: देखिए मैम, ये मेरे लिए तुलना करना बड़ी मुश्किल की बात है। जो पुराने गाने एक बढ़िया, अगर एक मटर पनीर है तो दूसरा शाही पनीर है, दूसरा शाही पनीर है तो तीसरा चिल्ली चिकन है।
0: जी लेकिन आपको कौन सा पसंद है?
1: मतलब गाने भी अच्छे, क्योंकि पुराने गाने जो भी है, तो चलो आपने अगर बताई है तो मैं बता देता हूँ। जो है ना वो मन की आंखें 1968 में आई है।
0: जी थोड़ा सा गुनगुनाएंगे इस गीत को हमारे श्रोताओं के लिए?
1: गाने तो उसका वो गाना है ना, चना बिया आजा रसिया, हो जाने वाले आजा, तेरी याद सताए खाबों का खरोटा न जावे।
0: जी जी जी।
1: तो देखो आज किस साल हो गए उस गाने को, कोई 50 से ऊपर, तो आज भी उन गानों की खास है जो रिलीज हुए।
0: जी बिल्कुल, और यही संगीत की खासियत है। कुछ गीत आते हैं समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी उतने ही प्यारे लगते हैं। क्या कहते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया सोच आपकी, और कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया। जी धन्यवाद। जी श्रोताओं, कोई गीत हमें बचपन की याद दिलाता है, तो कोई कॉलेज के दिनों को तरोताजा कर देता है। किसी गीत में प्यार की याद होती है, तो किसी में पिछड़ने का दर्द। हेलो, चलिए 0892224391 ये है हमारा फोन नंबर, और इस पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कार्यक्रम है सजीव फोन इन गीतांजलि। हेलो,
2: नमस्कार मैम।
0: जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
2: जाने पहचाने जयकरण जी सरा से।
0: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या कहेंगे आज के विषय पर?
2: देखो जैसे बूटा नहीं पुराना होता, पत्ते हर साल उगाते हैं जी। तो इसी के मतलब साथ में लगता मैं गाना आपको बताऊंगा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा।

0: बूटा बूटा जी, बहुत बढ़िया। और पुराने गीतों की यही खासियत है कि इन्हें जब भी गाएं गुनगुनाएं कुछ अलग ही एहसास ये देते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे?
1: बस मैं यही कहूंगा इस गाने के जो एक एक बोल में इतना दम है कि आप पूछो ही मत।
0: जी बिल्कुल।
1: हाँ जी।
0: चलिए शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ 103.4 MHz आकाशवाणी धर्मशाला पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित अन्य गणमान्यों ने दी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा एक महीने तक चलाएगी राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान। प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा सायर उत्सव। पूजा अर्चना के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मेलों का भी हो रहा आयोजन। प्रदेश में युवाओं के लिए मशरूम खेती बन रही सशक्त आर्थिकी का माध्यम। कांगड़ा जिला में स्थापित हुई 42 मशरूम इकाइयां। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में वर्षा का क्रम जारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सहित गणमान्य लोगों ने राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक उज्ज्वल और सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। वहीं सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण सभी के लिए प्रेरणादायक है। वैष्णव ने प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्र की सेवा जारी रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा आज से एक महीने तक राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनसेवा के प्रति प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को उजागर करना और लोगों, विशेषकर युवाओं को सेवा कार्यों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये अभियान नरेंद्र मोदी के 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के 25 वर्ष पूरे होने का भी प्रतीक है। भाजपा आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है। इस अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता देश भर में 14 लाख से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचेंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। इस बीच प्रदेश में भी भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर एक माह तक सेवा संकल्प अभियान चलाएगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन में शासन के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि आज सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश भर में रक्तदान शिविरों के अलावा शाम को घर घर में आशीर्वाद का दिया जलाकर प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु जीवन की मंगल कामना की जाएगी। बिंदल ने कहा कि एक माह तक सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक व सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य में मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। समेकित बागवानी विकास मिशन यानी MIDH के तहत किसानों और युवाओं को मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस पहल से कांगड़ा जिला में 42 मशरूम उत्पादन इकाइयां बनकर तैयार हो चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: MIDH के तहत किसान और युवाओं को मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। पहले जहां इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम 8 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। इससे कम पूंजी में वैज्ञानिक और नियंत्रित तापमान में मशरूम उत्पादन शुरू करने के इच्छुक किसानों और युवाओं को

0: राहत मिली है। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में योजना के तहत 42 मशरूम उत्पादन इकाइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। खास बात यह है कि कई युवाओं ने नौकरी छोड़कर मशरूम उत्पादन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है। एक एक इकाई से 25 से 50 लोगों तक के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। छोटे और सीमांत किसान, वही महिलाओं और ग्रामीण युवाओं के लिए भी यह स्वरोजगार का नया अवसर बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: प्रदेश में आज सायर उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्वनी माह के पहले दिन यानी संक्रांति को प्रदेश भर में अलग अलग तरीकों से इस उत्सव को मनाया जाता है। बरसात का मौसम बीतने के उपरांत ऋतु परिवर्तन के रूप में ये त्यौहार विशेष महत्ता लिए हुए हैं। इस रोज लोग घरों और स्थानीय मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हैं और क्षेत्र की सुख समृद्धि की मंगल कामना करते हैं। इसी पर्व के उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में मक्की व धान की फसल तथा घास कटाई का कार्य भी शुरू किया जाता है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में मेलों का भी आयोजन होता है। आज अर्की में राज्य स्तरीय सायर मेला आयोजित हो रहा है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह शिमला के निकट मशोबरा में सायर मेले में शामिल होंगे। आज सायर मेले के उपलक्ष्य में मंडी जिला में सभी शैक्षणिक संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: कल मैंने अपना बीपी और शुगर की जांच करवाई और मेरा शुगर बढ़ा हुआ आया है।
3: अच्छा, कहाँ करवाई ये जांच?
2: यही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर। बड़ी सुविधा है, शुगर और बीपी दोनों की जांच हुई और दवा भी आज से चालू हो जाएगी, वो भी बिना किसी पैसे के।
3: क्या मैं भी करा सकती हूँ?
2: बिल्कुल, ये जांच 30 साल से ऊपर सभी लोगों को हर साल में करवानी चाहिए।
3: मैं आज ही जाती हूँ।
4: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री वी सोमनपा और आवास तथा शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने नई दिल्ली में आरंभ किया। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान स्वच्छता के 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 1 अक्टूबर को एक दिन एक घंटा और एक साथ अभियान के तहत देश भर में एक साथ स्वैच्छिक श्रमदान और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से अब सप्ताह में एक बार हर बुधवार को शुगर और कोलेस्ट्रॉल की मुफ्त जांच सुविधा शुरू की गई है। ये सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर, बुजुर्ग और नियमित जांच करवाने वाले मरीजों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे हमीरपुर जिला संवाददाता।
5: रेड क्रॉस सोसाइटी ने आयुर्वेदिक अस्पताल हमीरपुर में हर बुधवार निःशुल्क शुगर और कोलेस्ट्रॉल जांच की सुविधा शुरू की है। बुधवार को करीब 10 मरीजों ने इसका लाभ उठाया। निजी लैब में इन जांचों पर करीब 150 या इससे अधिक खर्च आता है। ऐसे में रेड क्रॉस सोसाइटी के निशुल्क सुविधा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, बुजुर्गों और नियमित जांच करवाने वाले मरीजों के लिए उपयोगी साबित होगी। नियमित जांच से स्वास्थ्य में होने वाले बदलावों का समय पर पता लगाने में भी मदद मिलेगी। आकाशवाणी के लिए हमीरपुर से मैं हरीश नंदा।
1: प्रदेश में अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से वर्षा का क्रम जारी है। लाहौल स्पीति जिला में रोहतांग सहित अन्य ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी भी हुई है, जिससे क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 5 जिलों हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी में भारी वर्षा की संभावना जताई है, जबकि शिमला जिला के कुछ हिस्सों में भी अगले कुछ घंटों में भारी वर्षा की चेतावनी है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हवाले से लिखता है, चिट्टा बेचने वालों के लिए हिमाचल प्रदेश में कोई जगह नहीं। प्रदेश हाईकोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर लिखता है, बिना ठोस वजह से पति से अलग रहना, बच्चों से बात तक ना करना मानसिक क्रूरता। अमर उजाला की एक खबर है, हाईकोर्ट ने एडीएम का फैसला किया।

0: निरस्त सरकार को 2 माह में याचिकाकर्ता को जमीन का पट्टा देने का आदेश। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 76वां जन्मदिन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सहित अन्य गणमान्यों ने दी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा 1 महीने तक चलाएगी राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान। प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है सायर उत्सव। पूजा अर्चना के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मेलों का भी हो रहा आयोजन। प्रदेश में युवाओं के लिए मशरूम खेती बन रही सशक्त आर्थिकी का माध्यम। कांगड़ा जिला में स्थापित हुई 42 मशरूम इकाइयां। और राज्य के अधिकतर हिस्सों में वर्षा का क्रम जारी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 जिलों में भारी बारिश की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं गीतांजलि कार्यक्रम का शेष भाग। जी श्रोताओं, आज कार्यक्रम में बात हो रही है कौन सा ऐसा गीत जो आपको लगता है कभी नहीं हुआ है पुराना, या कौन सा ऐसा गाना जो जब भी आप सुनते हैं आप उतने ही प्यार से इसे सुनते हैं। हेलो जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
4: नमस्कार मैम।
3: जी नमस्कार।
4: नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। हेलो
3: जी,
4: मैं गग्गल से मैम प्रबोध कुमार बोल रहा हूँ।
3: जी बताएं, कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे आज?
4: मैम गाने तो इतने हैं कि कोई याद भी है, कुछ नहीं भी याद। सबसे प्यारा गाना था वो दिल मिलिस्ता होगा, आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, बड़ा ही प्यारा गाना है।
3: अरे इस गीत को गुनगुनाएंगे थोड़ा सा आप? क्योंकि इतना प्यारा ये गाना है।

0: ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। ऐसे ही होगा।
1: चलिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: इनके
1: करके।
0: जीने का राह मैम,
1: जी
0: जीने की राह के गाने बढ़िया थे।
1: जी जी
0: वो सामने में सबका इसका नाम नहीं ले सूंगा,
1: जी
0: वो
1: जी
0: रूठ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, बड़ी मस्तानी है मेरी
1: बिल्कुल
0: बहनों का।
1: बिल्कुल बहुत
0: बड़े बड़े
1: बढ़िया
0: प्यारे गाने मैम।
1: गाने हैं ये जी, और
0: थैंक
1: बहुत ही अच्छा गुनगुनाया आपने। यूं ही जुड़े रहिए हमारे
0: यू मैम।
1: साथ, कार्यक्रम में कॉल किए इसके लिए
0: बाकी मैम
1: शुक्रिया।
0: सैर की शुभकामनाएं, मुबारकें हों,
1: जी आपको भी बहुत सारी
0: हिमाचल का
1: शुभकामनाएं।
0: मेन त्यौहार है।
1: जी आकाशवाणी के धर्मशाला परिवार की ओर से आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं सैर के इस
0: थैंक यू
1: त्योहार
0: मैम।
1: की। जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार। कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से। मैं
1: जी, क्या करते हैं?
0: खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
1: चलिए, तो आज के इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सा ऐसा गाना जो नहीं हुआ आज तक पुराना?
0: ऐसा तो मतलब बहुत सारे गाने हैं, लेकिन मुझे लगता है और मैं जब तक किसी भी आकाशवाणी में सुनता हूँ ना, तो
1: जी,
0: एक पतंगा फिल्म का गाना है, मेरे पिया गए हैं रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। ये जो गाना है ना, उस समय पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं थी, उस समय पर काफी मतलब लोकप्रिय हुआ था, लेकिन अब तक मतलब ये गाना ऐसा ही लोकप्रिय चल रहा है।
1: जी, बहुत बढ़िया। और जब भी सुनते हैं इन गानों को, यादें

0: हो जाती हैं, दिल खुश हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, दिल खुश हो जाता है। और इन गाने की जो लिरिक्स है और जो इनके शब्द हैं, इतने खुले, मतलब गायक ने गाया हुआ है कि आसानी से कोई भी समझ सकता है।
0: जी बिल्कुल
1: जी
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इतने अच्छे विचार साझा करने के लिए, साथ ही साथ वो गीत साझा करने के लिए जो आपको लगता है कभी नहीं हुआ है पुराना।
1: जी बिल्कुल, धन्यवाद, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, नंबर वही जाना पहचाना सा 01892224391।

0: छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल, और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
2: हेलो हेलो जी,
3: मैडम जी नमस्ते, सुप्रभात
2: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी हम यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से बोल रहे हैं।
2: जी तो क्या कहेंगे आज के विषय पर?
3: जी आज का विषय तो आपने बहुत अच्छा चयन किया है क्योंकि हमें वो पुराने दौर में ले गया, और पुराने गीत ऐसे होते हैं मैडम जी कि आपको क्या बताए
2: जी।
3: हर एक गीत में ऐसा आनंद है, एक दर्द है, एक प्यार की उम्मीद है, जैसा कि आपने कहा बिछड़ने का दर्द भी है, वो सारे जो भाव है पुराने गीतों में हुआ करते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक गीत है जो जिंदगी का फलसफा बयां करता है और जो कभी पुराना नहीं होता, जो कि है शोर फिल्म का गीत, 72 में आई थी फिल्म, मुकेश जी की आवाज में और लता मंगेशकर जी की आवाज में गीत है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है।
2: तो इस कहानी को थोड़ा सा गुनगुनाएंगे?
3: जी अवश्य गुनगुना चाहेंगे, और हमेशा हम यह गीत गुनगुनाती भी है मैडम जी, क्योंकि अपना जीवन जो है हर पल हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ याद दिलाता है, तो ऐसे मौके पर यह गीत हमेशा अपने होठों पर कायम आता ही रहता है। तो उनके दो शब्द हम आपको गुनगुना के गुनगुनाते हैं मैडम जी।
2: जी
3: एक प्यार का नगमा है।

0: बस इतना ही।
1: चलिए बहुत बढ़िया, और क्या खूब गुनगुनाया आपने।
0: जी धन्यवाद मैडम जी, बस हम तो ऐसे ही प्रयास करते रहते हैं।
1: चलिए ऐसे प्रयास करते रहना चाहिए, मन भी खुश रहता है और सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए शुक्रिया, यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: जी धन्यवाद,
1: जी धन्यवाद, धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्कार मैम
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं
1: जी? पालमपुर से बोल रहा हूँ, मुकेश मैम भट्टू से।
0: जी मुकेश, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: विषय बहुत बढ़िया मैम। आज पहले पूरे जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, पूरे देश को हमारी तरफ से शहर की बहुत बहुत बधाई।
0: जी आपको भी बधाई
1: जी। सुबह से नए नए पकवान बना रहे हैं हम, लगे हैं चूल्हे के पास, बैठे हैं, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं
0: जी। तो बताएं
1: का
0: जी। हाँ
1: विषय बहुत अच्छा चुना था आपने, बड़ा मतलब पुराने गाने सुनने को मिले और लोगों से गुनगुनाने को भी मिले
0: जी।
1: तो मैं भी चाहता हूँ कि जैसे हमारे एक बारिश का मौसम और उसमें एक समुद्र के किनारे जब हमारे एक क्रांति फिल्म का गाना है, जिंदगी की ना टूटे लड़ी प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी
0: जी।
1: जी मैम
0: चलिए बहुत बढ़िया। और जिंदगी की ये लड़ी यूं ही आगे बढ़ती रहे और हम हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, यही कोशिश हमारी होनी चाहिए और यही दुआ भी।
1: जी ऐसे ही हम मिलते रहें, हर पैर के हर मौसम बदलते रहें, लेकिन हम अपनी आदतें ना बदले, इंसानियत ना भूले हम।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें हैं और विचार आपके कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए शुक्रिया।
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद जी।

0: जाए।
1: हेलो नमस्कार
2: जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
2: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
1: जी आपका जो विषय आपने रखा है जो
2: जी जी
1: जी जी पुराने जो गीत है वो अभी भी सुने जाते हैं।

0: जी
1: जी
0: तो देखिए, नए गीत तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। नए गीत में भी गीत ऐसा सुनना चाहिए ना जो बोल ऐसे हो जो हमें कुछ सिखाता हो या फिर कुछ हमें अंदर से अनुभव कराता हो। तो ऐसा
1: जी
0: गीत जी, तो पुराने गीत जो दौड़ के थे वो हम सबको अभी भी याद आते हैं और हम अभी भी सुनते हैं। तो
1: जी
0: देखिए कुछ गीत
1: ऐसा कौन सा गीत है जो जिसे सुनकर आपको लगता है कि नहीं, ये आज भी पुराना नहीं हुआ है?
0: जी, वो मैं 3-4 गीत मैं सुना देता हूँ। एक है देखिए, अनपढ़ मूवी से आया था जो आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मेरे, लता जी की आवाज में,
1: जी
0: ये मुझे याद आते हैं। तो फिर एक गीत जो कन्याधर मूवी से आया था मोहम्मद रफी जी की आवाज में, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए,
1: जी
0: ये भी गीत। और एक मुकेश जी की आवाज में एक गीत आया था, चल अकेला चल तेरे पीछे छूटा राही, चल
1: जी
0: अकेला चल। ये सब गीत बहुत ही यादगार गीत है जो अभी भी सुने जाते हैं। और सन्यासी मूवी में भी एक गीत आया था लता जी की आवाज में, चल चल सन्यासी मंदिर में, सभी गीत है।
1: चलिए,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: बढ़िया लगा आपसे बात करके, और यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम में। कॉल की इसके लिए शुक्रिया,
0: जी शुक्रिया, नमस्कार।
1: धन्यवाद जी। जी हाँ श्रोताओं, कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम
1: जी। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं?
2: विनोद कुमार बोल रहा था, सोलह पालपुर से।
1: जी स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय पर?
2: मैडम जी, सबसे पहले आज की शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सैर के इस त्योहार की।
2: हाँ जी मैडम जी, आज बहुत अच्छा विषय रखा, पुरानी यादों में चले गया हूँ। तो
1: जी धन्यवाद।
2: हाँ जी, तो मेरे मैडम जी दो गाने, एक आपकी कसम दा है, जरा गुनगुना के सुना देता थोड़ा सा।
1: चलिए बिल्कुल।

0: दूसरे वाला दूसरा मैडम जी है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में तेरे सिवा कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। ये बार बार पुराने गाने मैडम जी बहुत पसंद है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और क्या खूब कहा, क्या खूब गुनगुनाया आपने कार्यक्रम में कॉल की, इसके लिए शुक्रिया। यूं ही जुड़े रहिए आकाशवाणी धर्मशाला के संग।
0: थैंक यू, धन्यवाद।
1: जी, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार मैडम जी, आपको मंडी वालों की शायर बहुत बहुत मुबारकबाद। मंडी में बड़े धूमधाम से आज शायर का त्यौहार मनाया जा रहा है जी।
0: जी, कांगड़ा में भी मनाया जा रहा है शायर का ये त्यौहार।
1: हमारे सरका घाट में तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से मनाते हैं मैडम जी इसको, मंडी सरका घाट।
0: जी जी जी,
1: मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ गोपालपुर सरका घाट से।
0: जी, स्वागत आपका नेगी जी, क्या कहना चाहेंगे विषय पर, जल्दी से कहें।
1: मैडम जी, आज का विषय है आपका
0: जी, ऐसा कोई गीत जो आपको लगता है कि कभी नहीं हुआ है पुराना, ऐसा कोई गाना।
1: ये हिमाचल के जो गाने, हिमाचल से संबंधित जो गाने ना, जैसे ये कौन चित्रकार है बूंद जो बन गई मोती, उसमें एक गाना होता था जिसमें शूटिंग भी शायद धर्मशाला की है जी। ये कौन चित्रकार है
0: जी,
1: तो उसमें पहाड़ों की उपमा, पहाड़ों के देवदार और यहाँ के पेड़ पौधों की और यहाँ के लोगों की खूबसूरती का व्याख्यान किया गया है।
0: चलिए, बहुत
1: और बिल्कुल सही शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से उसको गाया भी गया है और बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जी।
0: चलिए, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। समय हमारे पास बहुत ही कम है, इसलिए शुक्रिया कहना चाहेंगे कार्यक्रम में कॉल की इसके लिए।
1: धन्यवाद, नमस्कार।
0: धन्यवाद जी।

जी श्रोताओ, तो आज के इस कार्यक्रम में उम्मीद है आपने भी अपना पसंदीदा गीत जरूर याद किया होगा। इसी खूबसूरत एहसास के साथ दीजिए हमें अनुमति। बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमें दिया विकास पठानिया ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है डॉक्टर जितेंद्र पाल सिंह। इसी के साथ नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, मीठे मीठे से ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी धर्मशाला के साथ और 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने इसे ट्यून किया है। साथ ही साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे वो ट्यून इन कर सकते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम में हम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, उससे पहले कहेंगे श्रोताओं कि सबसे मीठे बोलिए, प्यार से बोलिए। और इस गीत में भी कुछ ऐसी ही बात हो रही है, ढाई अक्षर प्यार के।

बताना चाहेंगे कि सेमिकॉन इंडिया 2026 सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है बल्कि यशोभूमि में 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में 600 से ज्यादा प्रदर्शक और 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भाग ले रही हैं जो अपनी मौजूदगी से भारत में सेमिकॉन जो परंपरा है जो हमारा प्रयास है उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी मजबूती प्रदान करेंगे। 150 से अधिक

0: एक औपचारिक अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है यहाँ पर, और CDIL
1: Semiconductors plant has been inaugurated, and also the Shuchi Semicon. And this is a virtual inauguration by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
0: जी, और जो उपस्थित जन समूह है इस समय करतल ध्वनि से इस पल का स्वागत करता हुआ, यहाँ पर छवियां दिखाई जा रही हैं अलग अलग इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई, और इस तरह से सेमीकॉन 2026 का उद्घाटन सत्र जो है बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए है, और साथ ही हमें ये बताता हुआ कि सेमीकंडक्टर जो है वो एक तरह से अब बुनियादी उद्योग बन गया है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से लेकर स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र तक लगभग हर बड़ा उद्योग चिप्स पर निर्भर करता है और चिप बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकले उत्पादों पर निर्भर करता है। इस वजह से जितना सेमीकॉन इंडस्ट्री जो है वो मजबूत होगी, उसका विस्तार होगा, उतना ही उससे जुड़े हुए उद्योग भी उभरते रहेंगे और वो भी सशक्त होते रहेंगे। और हम क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में चिप से भला हम कैसे दूर रह सकते हैं, जो कि हमारे हर उपकरण का हिस्सा अब होने जा रही है। हम सिर्फ मोबाइल की चिप एक छोटी सी जानते हैं, लेकिन अब चिप हर उपकरण में शामिल, और यहाँ एक तरह से अभिनंदन किया जा रहा है, आभार प्रकट किया जा रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का।
1: एंड अ मेमेंटो हैज बीन प्रेजेंटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बाय द यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव। एंड एज यू राइटली मेंशन नीलम दैट दिस इज इंडीड अ वॉटरशेड मोमेंट फॉर इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत, बिकॉज द India built chips are really going to play a leading role in the world of semiconductors, and that is what everything is now based on, these small chips which are part of our mobile, our television, even our transportation ecosystem.
0: जी बिल्कुल, और मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, साथ ही निवेश का हब बनाने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का देश को, इसने एक पूरा इस तरह का इकोसिस्टम तैयार किया है, कैसी व्यवस्था तैयार की है जिसमें अब निवेश भी आकर्षित कर रहे हैं हम, लेकिन साथ ही जिन क्षेत्रों में पहले हम सिर्फ आयात करते थे उपकरण, उन क्षेत्रों में अब हम निर्यातक बनकर उभर रहे हैं, अब हम निर्यात भी करते हैं, और ऐसे में सेमीकॉन की एक पूरी व्यवस्था तैयार करने का जो प्रयास है उसमें अब सिर्फ चिप निर्माण नहीं है बल्कि चिप डिजाइन से लेकर पैकेजिंग, टेस्टिंग, मशीनरी का निर्माण करना, कच्चा माल देश से ही प्राप्त करना, और साथ ही कुशल कर्मचारी तैयार करना, ऐसे इंजीनियर्स तैयार करना, और जो स्टार्टअप्स जुड़े हुए हैं इस क्षेत्र से उनको उभरने का अवसर देना, स्टार्टअप से वो यूनिकॉर्न बने और यूनिकॉर्न से वो ऐसे एस्टेब्लिश इंडस्ट्री बने, कैसा उद्योग बने जो निर्यात शुरू करे, ये लक्ष्य लेकर चल रहे हैं साथ ही। और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि हमें छोटा लक्ष्य नहीं रखना है, हमें बड़े लक्ष्य बनाने हैं और उस दिशा में हमें प्रयास भी करना है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में शुरुआती अग्रणी देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखना चाहिए।
1: Yes, you are absolutely right. And as the Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav mentioned, and now the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi.
2: Thank you. केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, जितेंद्र प्रसाद जी, उपस्थित सभी इंडस्ट्री लीडर्स, सीईओस, डेलीगेट्स, और वर्चुअली हमारे साथ सैकड़ों यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के, भारत के भविष्य, ऐसे मेरे नौजवान साथियों, यहाँ उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में आए हुए उत्साहित नौजवानों, देवी और सज्जनों, सेमीकॉन इंडिया का ये पांचवा एडिशन हो रहा है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। विदेश से जो अतिथि आए हैं, मैं उनका भारत में विशेष स्वागत करता हूं। साथियों, आज विश्वकर्मा जयंती का दिवस भी है। मैं सभी देशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। और संयोग देखिए, आज से ही सेमिकॉन इंडिया की शुरुआत हो रही है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है। फ्रेंड्स, विकसित भारत बनाने के लिए हर देशवासी एक कमिटमेंट के साथ जुटा है। अगर हम बीते 15 दिनों की ही देखें, सिर्फ मैं 15

इसमें एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के जरिए इंक्लूसिव फाइनेंस पर चर्चा हुई। इसी दौरान भारत में करीब 3000 किलोमीटर का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह ऑपरेशनल हो गया। ये मैं सितंबर के 10 दिन की बात कर रहा हूं दोस्तों, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। इससे देश में फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, लॉजिस्टिक बेहतर होगा और मैन्युफैक्चरिंग को भी नई ताकत मिलेगी। साथियों, इसी कालखंड में, इसी सितंबर में ही भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है। और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है। यानी एक तरफ भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, दूसरी तरफ दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है। साथियों, भारत की इन उपलब्धियों के बीच सेमिकॉन इंडिया का यह आयोजन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसका पहला एडिशन 2022 में हुआ था और तब से हम हर वर्ष मिलते हैं, लेकिन हर वर्ष हमारी चर्चा का विषय बदलता गया है। जब पहला एडिशन हुआ था तब हमने पॉलिसी पर बात की थी, इसके बाद के एडिशन में बात आगे बढ़ी, अगले एडिशन में हम प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करने लगे, फाइल पर साइन से लेकर शिलान्यास की बातें होने लगी। पिछले साल हमने पायलट लाइन्स और टेस्ट चीफ पर चर्चा शुरू की, कैसे भारत की यूनिट से पहले सैंपल निकलने शुरू हुए इस पर बात की, और इस साल हम कॉमर्शियल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब भारत के प्लांट से निकलकर हमारी चिप्स देश और दुनिया के कस्टमर तक पहुंचना शुरू हुई है। और अभी अभी मोहाली और सूरत में 2 और प्लांट्स में कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूं। फ्रेंड, किसी भी देश के लिए इतने कम समय में यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। ये सेक्टर ऐसा नहीं है कि फैक्ट्री लगाई और काम पूरा।

हो गया। इसमें टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बनाने में दशकों लगते हैं। दुनिया में जहां भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बने हैं वहां ये पूरा इकोसिस्टम दशकों की मेहनत के बाद तैयार हुई है, लेकिन भारत ने आपके सहयोग से चिप डिजाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल इकोसिस्टम, टेस्टिंग कैपेबिलिटी हो, इन सभी पर एक साथ काम किया और सफलता हासिल करके दिखाई है। हमारी इस यात्रा में बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स, आप सभी इंडस्ट्री लीडर्स रहे हैं। आप भारत की सफलता के पिलर्स हैं, आप हमारी इस जर्नी के पार्टनर्स हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा फेज शुरू कर दिया है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चलते हुए हमने इस सेक्टर में और भी रिफॉर्म्स किए हैं। अब इंटरनेशनल कंपनीज भी हमारे स्टार्टअप के साथ इंडियन डिजाइन कंपनीज और ओसीआई ओन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। यानी पॉलिसीज हो, फंड्स हो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, आपके प्रोजेक्ट की सफलता के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हर कदम भारत सरकार उठा रही है। साथियों, हमारा प्रयास है कि भारत में फैबलेस कंपनीज की ग्रोथ हो और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज का क्रिएशन भी भारत में ही हो। अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स बनाने हो, सिलिकॉन फोटोनिक्स को इकोसिस्टम का हिस्सा बनाना हो, एआई एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये सब जरूरी है और इस दिशा में हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए जो फाउंडेशन चाहिए वो तैयारी हो चुकी है। सप्लाई चेन की मजबूती पर भी भारत का बहुत अधिक फोकस है। इसके लिए अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। यहां जो इक्विपमेंट कंपनीज के लीडर्स हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाने में पीछे मत रहिएगा। केमिकल, गैसेस और मटेरियल्स के लिए, उसके लीडर्स के लिए भी भारत में सुनहरा अवसर उनका इंतजार कर रहा है।

हम चाहते हैं कि पूरा इकोसिस्टम एक साथ ग्रो करे। इसके लिए डिमांड पाइपलाइन भी तैयार है। अभी तक 12 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिल चुका है और नेक्स्ट फेज में ये दायरा और बढ़ेगा। साथियों, भारत में आप सभी के लिए एक और एडवांटेज यूथ का है, टैलेंटेड स्किल्ड मैनपावर का है। आज हमारे पास इंजीनियरिंग टैलेंट का बहुत बड़ा पूल है। भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और भारत हर साल लाखों इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है। एक बार मुझे अमेरिका की एक कंपनी के सज्जन मिलने आए थे, तो बोले हमारे यहां अगर इंजीनियर्स के लिए भर्ती करना चाहें, उनको बुलाए हैं, तो एक कमरे में आ जाए, इतने लोग आते हैं। और बोले हिंदुस्तान में बुलाए तो फुटबॉल का मैदान भी छोटा पड़ जाता है। ये ताकत है भारत की। और साथियों, चीप डिजाइनिंग के लिए तो बहुत बड़े पैमाने पर स्किलिंग का काम चल रहा है। अभी मुझे यहां आने से पहले यहीं पर कैंपस में इंडस्ट्री से जुड़े कुछ युवा साथियों से मैंने मुलाकात भी की है, सारे स्टूडेंट्स से। इन स्टूडेंट्स ने मुझे अपनी डिजाइन की गई चिप्स उपहार में दी है। हमारी सरकार 1,00,000 इंजीनियरिंग छात्रों को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए ट्रेन करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और अभी आपको बताया गया, इसमें से 70,000 से ज्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दी भी दे चुके हैं हम लोग। इतना बड़ा टैलेंट पूल आप सभी के लिए भी एक तरह से गोल्ड माइन से कम नहीं है। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मैं आज युवाओं से भी आह्वान करूंगा, जो यंग टैलेंट्स भारत में रिसर्च कर रहे हैं वे आगे आएं, जो युवा विदेशों में रिसर्च कर रहे हैं वे भी भारत में एडवांस टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट से जुड़े। मैं इंडस्ट्री लीडर से आग्रह करता हूं, आप देश में R&D को लीड करें। इसमें इंडस्ट्री का भी फायदा है और भारत की युवा शक्ति को भी इससे ताकत मिलेगी। साथियों, आगे बढ़ती हुई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आप सभी उनसे परिचित हैं। सालों तक आपकी इंडस्ट्री में लोग ट्रांजिस्टर की साइज की बात करते थे। जैसे जैसे ट्रांजिस्टर छोटे हुए, कंप्यूटिंग उतनी ही फास्ट और एफिशिएंट होती गई। आज भी ये सवाल महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से इस इंडस्ट्री के सामने कुछ नए सवाल भी खड़े हुए हैं। बीते 2 वर्षों में ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की ग्रोथ 20% से ज्यादा रही है और इस ग्रोथ में बहुत बड़ा AI से पैदा हुई डिमांड का है। यानी आज अगर आप AI पर काम कर रहे हैं तो चुनौतियां सिर्फ ये नहीं है कि चिप के अंदर क्या है, बल्कि चुनौती ये भी है कि इसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मेमोरी को प्रोसेसर के

0: करीब लगाना हो, कई सारी चिप्स को इस तरह जोड़ना हो कि वे मिलकर एक ही सिस्टम की तरह काम करें, बिना किसी डिले के बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यहां से वहां पहुंचाना हो, हीट और पावर को मैनेज करना हो, ऐसी अनेक चुनौतियां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने है। इन चुनौतियों के बीच दुनिया को मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई और भरोसेमंद, और ये मैं बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं, नई और भरोसेमंद लोकेशंस की भी जरूरत सबसे ज्यादा हो रही है। और भारत, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारत इसके लिए खुद को लगातार तैयार कर रहा है। साथियों, आज की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सामने एक और बड़ा विषय एनर्जी सिक्योरिटी का भी है। एआई के लिए जो चिप बन रही हैं, उनका इस्तेमाल एआई डेटा सेंटर्स में हो रहा है। इन डेटा सेंटर्स में हजारों हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे जैसे एआई का विस्तार होगा, कंप्यूटिंग पावर की जरूरत भी उसी गति से बढ़ेगी, और कंप्यूटिंग पावर जितनी बढ़ेगी, बिजली की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। इसलिए पावर सेक्टर में निवेश भी बहुत जरूरी है। हमारे प्लांट जहां हैं, वहां पर समय पर बिजली मिले, जरूरत के समय जरूरत की मात्रा में मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत आज पावर सेक्टर में भी बहुत बड़ा निवेश कर रहा है। बीते दशक में हमारी इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 2 गीगावाट से बढ़कर 160 गीगावाट से ज्यादा हो गई है, 2 से 160। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोला गया है। हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर भी काम कर रहे हैं। बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। फ्रेंड्स, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। कुछ वर्ष पहले ही हमारे संविधान को 75 साल हुए हैं। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है, तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है। और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है, तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती है। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना है। भारत की एस्पिरेंस आपके सामने है, और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। एक बार फिर आप सभी को इस आयोजन के लिए मेरी ढेर और शुभकामनाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi was addressing

0: the inaugural session of Semicon India 2026, and the Honourable Prime Minister received a standing ovation from the people and the delegates who are assembled at Yashobhumi. The Honourable Prime Minister in his speech mentioned that the month of September started on a very positive note for India, with the recording of 7.8% growth rate in the first quarter of 2026. The Prime Minister also mentioned that India is committed to inclusive financial freedom of its citizens. This month also saw the completion of 3,000 kilometers of dedicated freight corridor. Japanese credit agency have upgraded India's sovereign credit rating, and now the world trusts India's success story. He called upon the global giants of the semiconductor industry to partner with OCI companies, as they will be equal partners of the journey towards a Viksit Bharat. The Honorable Prime Minister also mentioned that India has consistently reiterated its position on resilient global supply chains. The Prime Minister said that there are huge opportunities available in India for chemical, gases and materials industry, as India also has a huge talent pool of science, technology, engineering and mathematics. The Honourable Prime Minister, Sri Narendra Modi, called upon the youth of India to come forward in research and development in semiconductor and showcase their Yuva Shakti. The global semiconductor market grew by 20% in the last decade due to AI, and India is now ready to offer new and trusted locations for the industry. And India is also ready to take on the emerging responsibilities. The Prime Minister mentioned that more than 160 gigawatt of solar power has been achieved by India. India is also using nuclear energy, and it has been open to private players. India is consistently now working on small modular reactors. India is the mother of democracy, and we celebrated very recently the 75 years of our constitution. The Prime Minister said that weaponization of supply chains should not be allowed, and he called upon the semiconductor industry to play a constructive role in global growth and development towards world peace.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित किया, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत भी किया, विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी, और साथ ही सितंबर के माह में जो अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हुए हैं भारत में, उनका उल्लेख किया, जिसमें ब्रिक्स सम्मेलन का उल्लेख था, समावेशी वित्त का उल्लेख आपने किया, ग्लोबल फिनटेक सम्मेलन का उल्लेख किया, और ये कहा कि देश पर दुनिया के देशों का भरोसा अब बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ऐसे में भारत की बनाई हुई चिप जो है वो दुनिया तक पहुंच रही हैं। वैसे भी प्रधानमंत्री जी देश को प्रेरित करते रहे हैं मेक इन इंडिया का उल्लेख करते हुए, फिर मेड फॉर द वर्ल्ड का उल्लेख आपने किया, वोकल फॉर लोकल हमें कहा तो लोकल टू ग्लोबल भी कहा, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हुए अपने लोकतंत्र के मूल्यों को हम बचाए रखें, लेकिन साथ ही आधुनिकता का हाथ भी थामें और इस तरह से विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करें। ले संकल्प सृजन का मन में उम्मीदों से हो भरपूर, धुनके पक्के उस राही से मंजिल है फिर कितनी दूर। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते रहे हैं, और इसी तरह का प्रेरणा देने वाला आज का ये आयोजन यशोभूमि में जो शुरू हुआ, आज इसका उद्घाटन हुआ है, और अगले तीन दिनों तक ये आयोजन चलेगा। आप आयोजन के उद्घाटन सत्र का विवरण आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे। लाइव प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी अनुपम हरियाणवी के साथ मैं नीलम मलकानिया, अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण से अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2026 के उद्घाटन सत्र का सजीव विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय।

0: प्रदर्शनी में 6 देशों जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के पवेलियन, भारत से 12 राज्य सरकारों के पवेलियन और एक स्टार्टअप।
1: हम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 12:03 होने को है। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

सैनिक साथियों कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका और सभी को जय हिंद। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस गीत के साथ, चक दे इंडिया फिल्म से ये गीत है।

जी बिल्कुल, हमारे इंडिया की आन बान शान हमारे सैनिक साथी। और हमारे सैनिक साथियों के लिए अब पेश है मेरे ब्रदर की दुल्हन फिल्म से ये गीत, जिसे गाया है नेहा भसीन ने।

सैनिकों के लिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर और साथ ही साथ प्रसार भारती की ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी आप हमें सुन रहे हैं। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सुखबीर और साथियों ने इसे गाया है, धूम 2 फिल्म का ये गीत है। बात हो रही है दिल ना लगाने की इस गीत में, लेकिन हमारे सैनिक साथियों ने दिल लगाया है अपने देश के साथ और देश के सरहद पर हर वक्त तैनात खड़े रहते हैं और आने वाले किसी भी खतरे से कभी घबराते नहीं, हर टाइम एकदम चौकन्ना रहते हैं। और हमारी एक छोटी सी कोशिश होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने सैनिक साथियों को कुछ पल मस्ती के देने के, और इस गीत के साथ अब सैनिक साथियों से उम्मीद करते हैं कि वो इस गीत को एंजॉय करेंगे। धूम 2 फिल्म का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर।

सैनिक साथियों, अब एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। टशन फिल्म का ये सुनिधि चौहान का गाया हुआ ट्रैक इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। आकाशवाणी धर्मशाला से प्रोग्राम है सैनिकों के लिए। जिंदगी बहुत कम मौके देती है हमें एंजॉय करने के और खुश रहने के, तो जब भी मौका मिले उसे चुरा लीजिए, जाने मत दीजिए।

सैनिकों के लिए ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। और सैनिक साथियों, कार्यक्रम में अब आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं। ये चलते चलते ये गीत सुनिए। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में फिर किसी रोज़।

जी हाँ, सैनिकों के लिए कार्यक्रम अभी आपने सुना आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और ट्यून किया है आपने 103.4 मेगाहर्ट्ज़ और दोपहर के 12:30 अब वक्त प्यारी बहनों के कार्यक्रम मिंजरा का। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम मिंजरा।

मिंजरा कार्यक्रम सुनने वालियां बहना जो नमस्ते कने सारियां जो राम राम। मैनू तुसों जो सैरी दियां बड़ियां बड़ियां मुबारकां। मैनू हर साल ये त्यौहार जिहड़ा सा संक्रांति यानी कि संक्रांति दे दिन जिहड़ा सा मनाया जांदा कने मैनू असां सब जाणदे हां कि भी बरसाती हुंदियां बड़ियां भारी बरखा कने नुकसान भी बड़े हुंदे ने कने कुती कुती बाड़ा नदी नाले भी जिहड़े सा पई जांदे ने जान माल दा भी जिहड़ा सा काफ़ी नुकसान हुंदा है माणुआं ते लईकरी पशु पक्षियां सारे जो इसका खमियाजा जिहड़ा सा भुगतना पौंदा है कुती बदल फटदे कने घर डई जांदे कने फिरी जल ही असां तिना परिस्थितियां ते निकली करी बाहर आई जांदे ना तां खुशियां कने ये संक्रांति दा त्यौहार असां मनांदे हां। असां इस बरसाती ते बच की निकली गए न इस वास्ते ये त्यौहार जिहड़े सा मनांदे तां ब्याहों ब्यागा ब्यागा उठी कने आटा तलियां रोटियां वास्ते जिहड़ा सा बनाई रखदियां ने भैणां कने मिठे गुगू जिस जो असां कांगड़ी बोली च मिठड़ू भी बोलदे हन कने कई जगह संचोलू भी बोलदे हन जिहड़े सांचे कने बणदे हन ना तां भैणो अलग अलग हन पर स्वाद जिहड़ा सा इक ही हुंदा कने इक कन्ने इस कन्ने भी पतरोड़े जरूर बणदे न खट्टियां भिंडियां कद्दू दही भल्ले होर भी देसी सब्जियां जिहड़ी इस मौसमे च हुंदियां सा जरूर बणदियां हन। बहणो इन्हां दिनां च खोड़ां दी भी जिहड़ी सा फसल हुंदी है कने बाजारां च भी जिहड़े सा खोड़ वधिया मिली जांदे ने कने खोड़ जिहड़े सा खेलना भी असां सारे जिहड़े सा पसंद करदे ने। बहणो सैरी ते इक दिन पहले यानी कि मसांते जो दूजा भी जिहड़ी सा पूजा पाठ भी जिहड़ी सा कीती जांदी है कने समगरी जिहड़ी सा पहले इकट्ठी कर लैंदे ने दिने ही इस विच भाई छिल्ली होनी है ककड़ी होनी है अनार होना खट्टा होना है यानी जिसे अह गलगल बोलते कद्दू दूड़ा पेठा अखरोट ये सारिया चीज़ा असा रखी करी मिठिया रोटियां कन्ने पूजा जड़ी सै की जाती धूप टिक्का लगाई ने सिक्का भी चढ़ाते हैं बड़े प्रकृति की चीज़ों की पूजा है जिन्हें कने असा सारे की जिंदगी जड़ी सै चलती है। कई जगह धाना दियां बालियां भी रखदे ने जिथों जिथों धान होंदे ने तो बड़ो पूजा करने का तरीका जिहड़ा सा अपना अपना है। कई जगह संक्रांति दे दिने ब्यागा चार बजे उठी कने हाथ मूँह धोई कने पूजा की जाती है कने कई जगह जिहड़े सा मसांते दे दिने राती पूजा जिहड़ा सा करी लैंदे ने अपने अपने इलाके दियां गल्लां ने बणो कने इस त्यौहारे जो घरां दियां बेटियां दियां दियाणी भी जरूर अपने मायके जिहड़ा सा आउंदियां ने अपने पेके आउंदियां ने सुख नंद लैणे कने पिछले परिवार जो अपना आशीर्वाद भी दे के जांदे ने कि भी असां दा मायका जिहड़ा सा रस्से बसे वधिया तरीके कन्ने कन्ने इस दिन खोड़ बनने दा भी बैणो रिवाज है। ये त्यौहार जिहड़ा बैणो रितु परिवर्तन यानी कि शरद रितु दे आगमन दा प्रतीक है। तो बैणो गल्लां होर बड़ियां हन पर हुण सुणांदे ने प्यारा दिया लोक गीत।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
4: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
3: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
4: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
3: जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
5: लोकगीत कने विज्ञापन ते बाद भेणों असा कार्यक्रम च एक बारी फिरी हाजिर हैं। कने इसते पहले जड़ी गल होआ कर दी थी, सह होआ दी थी सैरी दे त्योहारे दी। पहले दियां गल्लां गल करिए तां भी संगरांदी दे दिहाड़े जड़े सह 4 बजे उठी कने पूजा पाठ कने फिरी तलियां रोटियां जड़ी सह या मिठियां रोटियां वास्ते आटा जड़ सह गुनने रखते थे। कने भई 8-9 बजे जड़ी सह रोटियां बनाई रखनियां। देवी देवतियां दी पितरां दी भी जड़ी सह पूजा होंदी थी, चढ़ाया जांदा था। कने ग्रां च भी जड़ी सह 2 रोटियां 3 रोटियां या 4 रोटियां जरूर बंडनियां होंदियां थी, बड़ा शुभ जड़ा सा मन्या जांदा था। कन्ने भी रोटियां इतनी इकट्ठियां हो जांदियां थी कि भी हफ्ता भर से चली पौंदियां थी, खराब भी नहीं लगदियां थी। कहे कि भी शुद्ध कणका दियां रोटियां, तेल भी शुद्ध होंदे थे, कन्ने से पची भी जांदियां थी। कन्ने हुण तां भैणो 21 दिने ते दूजे दिने ये तलियां रोटियां खाई लैन तां सह पचा भी नहीं करदियां। कहीं कि वे शुद्ध चीज़ां जड़ियां से नहीं मिला करदियां। कन्ने बीमार होने ते भी डरे थे असां से तलियां रोटियां जड़ी से नहीं खा करदे। तो भैणों हुण शारीरिक काम भी जड़े से घटी गए होने, कन्ने सब डरदे कि भी असां बीमार ना पई जान। तो भैणों अलग अलग ज़िलियां च भी सैर मनाने का जड़ा सा तरीका अलग अलग है। असां दे प्रदेश हिमाचल की समृद्ध संस्कृति है, कई तरह के मेले उत्सव त्यौहार इत्थों मनाए जाते हैं, ये असां जो एक दूजे कने जोड़ी ने रखते हैं। भैन इत्थों साल भर कोई ना कोई त्यौहार जड़ा सा चलिया रहिंदा। हुण तां भैणों मौसम बदलो ही गया ना, तां सै सैरी दियां संगरांदी ते बाद छलियां बढ़ना जड़े सै शुरू करी दिंदे हे पहले, कने खड़ैतरां दा घा भी जड़ा सा बढ़ना शुरू करी दिंदे। तां भैणों पहले सोलन अर्की च इक प्रसिद्ध भैंसिया दा प्रतियोगिता भी

इस प्यारे दे लोकगीत बाद कार्यक्रम च असा एक बारी फिरी ते हाजिर हैं। कनिज ते पहले जड़ी गल हुआ करती थी सह हुआ करती थी विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की। मैडो अज विश्व रोगी सुरक्षा दिवस इस गल्ला दी याद करांदा है कि भी सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा एक सांझा जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा त्रुटियां जो घट करी सकता है कने सारे वास्ते स्वास्थ्य परिणाम जो सुधार करी सकता है। तो बिना 2026 का नारा है जीवन वास्ते सुरक्षित दिखवाल। विषय रहना गैर संक्रामक रोगों लई सुरक्षित दिखवाल। ये अभियान हृदय रोग स्ट्रोक मधुमेह कैंसर कने पुरानी सांस संबंधी बीमारियों की रोकथाम निदान कने उपचार करने

लंबे समय तक प्रबंधन के दौरान रोगी सुरक्षा च सुधार पर केंद्रित है। तो मैडम इस दिवस की शुरुआत जड़ी से मई 2019 च विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा 72वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई थी। भी 2026 दे 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और सुरक्षा माह का उद्देश्य इसका थीम सुरक्षा बधाने वास्ते लोगों को शामिल करना है, शिक्षित करना है, कने सशक्त बनाना है। सुरक्षा गतिविधियों च हर कर्मचारी कने श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। सुरक्षा नियम जोखिम कने सही प्रणाली के बारे च जागरूक करना है। कर्मचारियों जो असुरक्षित स्थितियां जो रोकना कने सही निर्णय लेने का अधिकार कने आत्मविश्वास देना है। तो बड़ो हर दिन जड़ा सा मनाने का कुछ ना कुछ मतलब होंदा है, कने अस अपनी जिम्मेदारी अपने कर्तव्य भूली ना जान, कने जागरूक रहन, इन्हां गल्लां पर ध्यान देन। तो बणो स्वच्छता असां सारियां वास्ते बड़ी जरूरी है। अजकल असां दिखा करदे न कि नवी नवी बीमारियां असां जो लगी पो करदियां न, कने बीमारियां दा जिहड़ी इसे लाइलाज भी होई आ करदियां न अगर असां लापरवाही करा दें। तो बणो बोलदे भई जान है तो जान है, शरीर स्वस्थ है हर गल खरी लगदी है। कने कोई भी बीमारी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, फिर कोई काम करने जो जड़ सा मन भी नहीं करता। कने इस करी अपने सेहता का ध्यान रखना जड़ सा बड़ा जरूरी है। तो बड़े कार्यक्रम च हूँ जड़ी सा असा गल करनी है गुजिया बनाइया जांदियां कियां। भई मैडम कोई भी त्यौहार होए मिठी चीज़ जरूर बनती, कने गुजिया यानी कि प्राकड़ियाँ जिसे हाँ स्थानीय बोली असा बोलते हैं, ये भी घट घट समय च बनने वाली मिठाई है जी झट बन जाती। समग्री लैनी है मैदा 2 कप, कने मोण वास्ते घी लैना, कने 4 वड्डे चम्मच हल्का पिघलिया घी पिघलाई लैना, कने पानी लैना, कने आटे गुनने वास्ते जेड़ी असा अंदर भरावन भरदे न खोआ लैना 200 ग्राम, सूजी लैनी, कने 2-3 वड्डे चम्मच कद्दूकस कीता सुखा नारियल लैना, का 2-3 चम्मच जैसे कट्टे मेवे काजू बादाम किसमस अपने हिसाबे कने पाई सकते। इस कने चिरौंजी 2-3 चम्मच बड़े, कने इलायची पाउडर, चीनी जड़ी से पी लैनी, कने घी लैना, कने जड़े मेवे सूजी पहले वास्ते से भुनने वास्ते तलने वास्ते से घी असा लैना, 1 वड्डा बर्तन लैना, तो इस बिच आटा या मैदा लैना, कने से पिघले जड़ा से पिघलाया घी है तिस बिच से मिलाना। जाली मैदा मुठिए च बंधना लगी पोए ना तो थोड़ा पानी पानी जड़े से पाते रहना, कने से आटा सख्त आटा जड़ा से गुन्नी लेना, 15-20 मिनट से कपड़े कने ढकी के रखना, कने फिर 1 कढ़ाई या पैन च घी गर्म करना, तिस बिच खोया हल्की अग्गी जड़ा से हाँ रंग बदलाने तक भुनना, कने फिर ठंडा होना देना, कने सूजी भी हल्की भुनी लैनी, कने फिर इसे ठंडा होने देनी, कने तिस बिच नारियल कट्टे मेवे इलायची पाउडर कने बूरा पीसी चीनी मिलाई देनी। तो बड़े गुन्ने आटे की छोटी छोटिया लोइया जड़ी से बनानियां, कने से बेली लैनी, तो ज़्यादा पतला भी आटा जड़ा से नहीं करना है बेलते टाइम, कने ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। कने हूँ तिस जो जी गुजिया अह बना करते हैं जो सांचा होंगे तिस जो थोड़े अंदर घी लगाई लेना, कने से आटा जड़ा से हाँ लोइया बनाई ने सह बेली लैनी है, बेलियां जड़ियाँ लोइयां सह तिस सांचे च पाई लैन, तिस बिच स्टफिंग करी लैनी यानी कि तिस जो हाँ प्रेस करना किनारियां ते आटा निकली ना जाए, कने सारियां गुजियां बनाई रखनी, कने 1 कढ़ाई च घी या तेल गर्म करना, कने हल्की अग्गी च सह सुनहरियां तली लैनियाँ, दोनों तरफ वधिया तली लैनी, कने बणो सारियां प्राकड़ियां बारी बारी इं तली लैनियाँ, कने सह फिर ठंडा होना देनी है। कने असां फिर सह चाहन तो भी चाशनी वाली गुजियां भी बनाई सकते हैं, पर सह बड़िया मिठिया हो जाती हैं, तो अजकल ज़्यादा मिठा खाना हाँ पसंद नहीं करा करते हैं। तो मैं इं प्राकड़ियों का आनंद सारे ले सकते हैं कोई भी त्यौहार हो, एक झट बनने वाली चीज़ है। तो कार्यक्रम च हूँ एक होर लोग ये सुनाते हैं, तो सुना प्यार दिया लोक गीत आओ सुनो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। आपसे कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हमारी परंपरा में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन की शक्ति का प्रतीक माना गया है। एक तरफ हमारी सदियों पुरानी निर्माण की परंपरा और दूसरी तरफ 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और विजन, यही आत्मनिर्भर भारत की, विकसित भारत की हमारी प्रेरणा भी है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते 1 दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कई दशकों से सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करना चाहता था, लेकिन ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
3: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और पांचवा स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। छठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
1: इस कार्यक्रम में 600 से अधिक प्रदर्शक, 300 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना को आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। योजना के अंतर्गत अब तक 30 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी मिलने पर चलाए गए संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुसूची एच, H1 और X की औषधियों पर नियामक निगरानी को मजबूत करने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इन औषधियों को खरीदने के लिए ग्राहकों को वैध पर्चे की आवश्यकता होती है। प्रस्तावित संशोधन इन औषधियों की अनधिकृत पहुंच और बिक्री से संबंधित खामियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, केरला, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated Semicon India 2026 at Yashobhoomi in New Delhi. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, on one side, India's economy is growing, and on the other side, global trust in India is also growing. He said, despite the challenging global environment, India recorded a growth rate of 7.8%. Prime Minister said, at the same time, Japan's credit rating agency also upgraded India's sovereign rating. Mr. Modi said every citizen of the country is working with a commitment to build a developed India. The Prime Minister said India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and it is opening new opportunities for innovation, investment and growth.
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने transmission network को भी expand किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
4: ऑन द ओकेजन यूनियन मिनिस्टर of electronics and IT, Ashwini Vaishnav said, India had wanted to establish a semiconductor industry for several decades, but it was possible only under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. He said the foundation has now been laid and the next step is to build the industry through Semicon 2.0. The BJP's month-long nationwide Seva Sankalp Abhiyan has begun from today to mark the completion of 25 years of Prime Minister Narendra Modi's public life and service. As part of the Seva Sankalp Abhiyan, which will continue till the 17th of next month, the first day of the campaign is being observed as Seva Divas, under which

ना तो परवाना और ना दीवाना मैं किसी महफिल का। सुनी सुनी राहें थामती हैं बाहें गम किसे मंजिल का। ना तो परवाना

0: बात एक रात की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। हमारे सवाल का सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती वो रिश्ता है जहां बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, बस एक दूसरे का होना ही दिल को सुकून दे जाता है। और जब दोस्ती में प्यार की मिठास घुल जाए तो रिश्ता और भी अपना सा लगने लगता है। कुछ रिश्ते नाम से नहीं दिल से बनते हैं और वही सबसे खूबसूरत होते हैं। बहुत ही अच्छी बात हमारे साथी ने कही, दोस्ती का रिश्ता कुछ इसी तरह का होता है। हमारे एक साथी और हैं, वो कह रही हैं, दुनिया में हम अकेले आते हैं, परिवार मिलता है, फिर नाते रिश्तेदार मिलते हैं, दोस्ती यारी बनती है, मिलने वाले कुछ अजनबी हमारे सबसे करीबी और परिवार जैसे बन जाते हैं। सच्चा दोस्त सुख दुख में साथ निभाता है और जीवन को खुशियों से भर देता है। कुछ रिश्ते जीवन भर के लिए हम सफर बन जाते हैं तो कुछ प्रेम और स्मृतियों के रूप में हमेशा दिल में रहते हैं। बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथी लिख रहे हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं कि दोस्ती के बारे में कह रहे हैं कि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो तन्हाई और महफिल के बीच ताउम्र झूलता रहता है। जन्म के साथ जो परिवार मिलता है वो बुनियाद बनता है, लेकिन इंसान की असली पहचान और आज़ादी उसके दोस्तों के बीच खुलकर सामने आती है। दोस्त वाकई हर गम की शाम को दिवाली बनाने का हुनर रखते हैं। वहाँ औपचारिकताएं नहीं, बेतकल्लुफी और सच्चा सहारा होता है। लेकिन दोस्त अगर आपको छेड़ने पर आ जाए या उलाहने देने लगें तो कुछ अलग ही हाल होता है। कुछ ऐसा ही गीत आपको सुनवा रहे हैं और आप हमें बताइए, क्या कभी आपको दोस्तों से ऐसे ताने उलाहने मिले हैं? कौन सी फिल्म का गीत है ये भी बताइएगा।
1: फिरते थे जो बड़े ही सिकंदर बने हुए, बैठे हैं उनके दर पे

फिर सुबह होगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में। और इस तरह के ताने उलाने क्या आपको आपके दोस्त देते हैं, कभी मिला है ऐसा ताना हमें भी बताइए। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मानव जीवन की यात्रा एक कोरे कागज की तरह शुरू होती है। हर इंसान इस दुनिया में अकेले आता है, नितांत निश्चल और शांत। जन्म लेते ही परिवार मिलता है, जहाँ निस्वार्थ और सुरक्षात्मक प्रेम मिलता है। वो प्रेम की ऐसी बुनियाद है जो इस विश्वास को परिभाषित करती है कि इस अजनबी दुनिया में हम अकेले नहीं है। वक्त आगे बढ़ता है, बचपन से युवावस्था में कदम रखते ही यारी दोस्ती से जुड़कर प्रेम की पहचान होती है। फिर आज़ादी का दौर अल्हड़पन रहता है। यहाँ जिंदगी के सफर में कभी कभी हम अकेलेपन की ज़रूरत भी होती है। ये कोई सज़ा नहीं बल्कि स्वयं से प्रेम को समझने के लिए आवश्यक है। और जब हम थोड़े थोड़े परिपक्व होते हैं तो ज़िंदगी में हम सफर का आना, प्रेम और ज़िंदगी को नए रिश्तों से जोड़ना एक ऐसी भावना को जागृत कर देता है जिससे ज़िंदगी करीब करीब मुकम्मल हो जाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वास्तविकता तो यही है कि आदमी दुनिया में अकेला आता है और रिश्तों में रहता है, फिर सच्चाई समझ लेता है। उसके बाद देखा है अकेले में जो सुकून है या यारों के साथ जो सुकून है, कुछ भी ऐसा ही, और अंत में अकेला चला जाता है, ऐसा इनका कहना है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि ना हम किसी प्यार के शिकार हैं, ना किसी राह में लाचार हैं, हम तो बस दिलदार तरानों और खूबसूरत नगमों के यार हैं। ज़िंदगी के हर मोड़ को मुस्कुराहट से जीना और गीतों की महफिल से खुशियां बांटना ही अपना अंदाज है। शिकारी हो या शिकार, हम तो बस दोस्ती और मोहब्बत के इस हसीन सफ़र के हमराही हैं। क्या कहने आपकी बात के। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि आज जीवन के सफ़र में रिश्ते कभी स्थायी नहीं होते, हर मोड़ पर बदलते हैं। इस इबारत में भी बदलते रिश्तों की ओर इशारा है। शुरू में परिवार से जुड़ते हैं, फिर यार दोस्त हमारे साथी बन जाते हैं, फिर कभी कभी हमारा मन अकेले रहने की जिद करता है, कोई हसीना अचानक हमारे जीवन के दरवाजे पर दस्तक देती है और हम रिश्तेदार दोस्त सबको भूलकर उस हसीना के दीवाने हो जाते हैं, दुनियादारी तक भूल जाते हैं, ऐसा ये कह रहे हैं। हमारे और एक साथी कह रहे हैं कि बात ऐसी है कि दोस्त अपनी जगह होती है, दोस्ती और प्यार अपनी जगह होता है और परिवार एक तरफ होता है, लेकिन आज के दौर में अपने प्यार को ज़्यादा अहमियत देते हैं, ऐसा इनका कहना है। वही हमारे और साथी का कहना है क्या, ये हम बताते हैं आपको। हमारे साथी कह रहे हैं कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत है सच्चाई, परिवार सबसे बड़ी दौलत और सच्चाई है परिवार। एक खुशहाल जीवन और इस जीवन में कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो सोने पे सुहागा। सब रिश्ते अपनी अहमियत रखते हैं। अकेले आने के बाद हर रिश्ता हमारे जीवन में अपने आप ही बनने लगता है। बात महत्वपूर्ण तब हो जाती है जब हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और विश्वास से निभाया जाए, न कि झूठ, धोखा, लालच, बेईमानी से निभाते जाएं, क्योंकि इसका परिणाम ही जिंदगी में जहर घोलने लगता है और जिंदगी को नरक कर देता है, ऐसा इनका कहना है। तो बड़े ही गंभीर भी बातें आ रही है, थोड़ी हल्की फुल्की बातें भी हो जाए तो हमें बताइए कुछ कि क्या आप और आपके दोस्त जब मिलते हैं तो कुछ ताने उलाने का दौर चलता है या नहीं, और दोस्ती पर कौन सी फिल्म आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी।

दोस्ताना फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत इस गीत में था और यही हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी सही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं रोज़ फेसबुक पेज पर टेक्स्ट पढ़ने आता हूं और सोचता हूं कि आज यूनुस जी आएंगे, मगर अफसोस मैं निराश हो जाता हूं। ऐसा नहीं कि आप सब लोग कार्यक्रम अच्छा नहीं करते, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस बार इंतज़ार बहुत लंबा हो गया है। भाई आप की ये इंतज़ार जो है जल्द ही ख़त्म होगा, ऐसे हमारा मानना है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दोस्ती में आदमी बेतकल्लुफ़ रहता है, हर बंधन से मुक्त, जिसमें ऊँच नीच छोटा बड़ा अमीर गरीब की दीवार नहीं होती, होता है तो बस आपसी प्यार और इतना सा लिहाज कि जब दोस्त ये दोस्त कभी रूठ ना जाए। पुरुष के मामले में यही दोस्त हम सफ़र की एडिटिंग का शिकार हो जाते हैं, ये बहुत फ़ोन करता है, इसे और काम नहीं, क्या ये तुम्हारे ऑफिस में है क्या, वगैरह वगैरह।

पर भी अच्छे दोस्त बुरा नहीं मानते और दोस्ती बनी रहती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये संसार के सफर पर मानव आने के बाद पहली बार परिवार से मिलता है, फिर सहपाठी, स्कूल कॉलेज के दोस्त होते हैं, अच्छे हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, जीवन भर याद रहते हैं, जिंदा दिली से जीते हैं, फिर अचानक जीवन में अजनबी के आने से उनके साथ फिर एक नया परिवार बना लेते हैं। परिवार और दोस्तों दोनों का साथ सामाजिक दायित्व निभाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों का साथ हमें कुछ पलों के लिए खिलखिलाने और मुस्कुराने का अवसर प्रदान करता है। परिवार दोस्तों के साथ मिलकर भरपूर जिए और खूबसूरत पल बिताएं, तनाव मुक्त रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत यारी दोस्ती की ज़्यादा बातें करती नज़र आ रही है। कभी समुंदर तो कभी आसमान है दोस्ती, जैसे आज़ाद परिंदों की जान है दोस्ती। कभी मुसीबत में फंसे दोस्त को भी बचा लेती है दोस्ती, खुशियों का पिटारा है दोस्ती, प्यार भरे रिश्तों का नाम है दोस्ती। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रिश्तों की दुनिया में दोस्ती और प्यार दोनों ही जिंदगी के खूबसूरत रंग है। यारों के साथ हंसी बेफिक्री होती है और प्यार के साथ दिल कुछ ज्यादा ही खामोश होकर धड़कने लगता है। दोस्त चाहे जितना छेड़ें, हम सफर आए तो दुनिया सिमट जाती है और कभी किसी अजनबी की एक मुस्कान उस सिमटी दुनिया में फिर से हलचल मचा देती है। शायद जिंदगी भी इसी उलझन का नाम है, कभी यारी के नाम, कभी प्यार के नाम। तो बस इस बात पर एक गीत याद आ गया जो हम आपको सुनवाने वाले हैं। ये बताइएगा कि ये गीत किसकी आवाज़ में है।

मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजें। बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे साथियों ने, और हमारे साथी बहुत सी बातें तो लिख रहे हैं। उदित जी, अनुराधा जी, हमारे एक और साथी ने ये जवाब दिया। हमारे साथी ने ये भी बताया कि अनु मलिक का संगीत इस फिल्म के गीत में। हमारे एक साथी का कहना है कि दोस्ती का सबसे बड़ा सबूत तो सुरीला सफ़र है। यहाँ हम सभी कभी नहीं मिले, फिर एक दूसरे के विचारों को लाइक करते हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि नमक और दाल की दोस्ती अटूट, शक्कर और चाय की दोस्ती अटूट, नमक और दाल की दोस्ती अटूट, सूख

सुख और पानीपुरी की दोस्ती अटूट, सुखर गानों की दोस्ती भी अटूट, सुख का हजारों लाखों से दोस्ती अटूट, सोचो अगर सुख दोस्ती नहीं करे तो क्या होगा। ये भी सोचने की बात है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आते हैं अकेले, अकेले ही छोड़ जाते हैं संसार, बीच सफर में मिलता है परिवार और यार दोस्तों का प्यार, फिर बनते हैं किसी मन चाहे हम सफर के प्यार के शिकार, देखते रहते हैं रिश्तों के बदलते रंगों का आकार, उलझनों में ही चलती रहती है ये जिंदगी निराकार। क्या बात कही आपने। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम हैं यारों के यार, करते हैं धर्म पत्नी से प्यार, शिकार करते हैं अनीति का, निज धर्म पर चलना सिखलाते अपने माता पिता के संस्कार, इस दुनिया में हम अकेले ही आते हैं लेकिन अपने अच्छे संस्कारों से बनाते हैं हम अपना अच्छा परिवार, हम चाहते हैं कि हम अकेले रहें तो कभी चाहते हैं यार दोस्तों का साथ, तो यारों दोस्तों के लिए मेरे दोस्तों दीजिए उन्हें भाई जैसा प्यार। हाँ, प्यार से तौबा मत करना, प्यार बढ़ाता भाईचारा, लेकिन किसी ने सच कहा है प्यार दिलों का मेला है, ऐसा इन्होंने गीतों के साथ और आगे अपनी बात कही है। तो जब बात यारों दोस्तों के साथ प्यार पर आ गई है तो एक गीत आपको सुनवा ही देते हैं और आपको ये बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है, आवाज़ तो आप पहचान ही लेंगे, हमें ये बताइए लिखा किसने है।

0: अजनबी फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
2: मैं निकला ओ गडले,
1: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
3: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
4: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
5: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें आज बात हो रही है अकेलेपन की भी, साथ में यारी दोस्तों की भी और हम सफर की भी। हमारे साथी कहने की कल रात ही उन्होंने अपनी पत्नी को बताया अपने उन 3 दोस्तों के बारे में जो नॉन स्टॉप बातें किया करते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल के दिनों में ही सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त हुए, परंतु हायर एजुकेशन कॉलेज के समय मुझे स्वयं मेहनत करके कमाना और पढ़ाई के खर्चे निकालना पड़ा और इस वजह से समय के अभाव के कारण दोस्तों से मिलना नहीं होता था। फिर मेडिकल प्रमोशन ऑफिसर जॉब लगा, फिर शादी की और बच्चों की जिम्मेदारी में व्यस्त रहा और अभी भी हूँ। हाँ, मेरे स्कूल के समय से आज तक और आगे भी मेरा सच्चा प्यारा दोस्त और साथी रहा है रेडियो और विविध भारती, विविध भारती परिवार और इन दिनों फेसबुक के विविध भारती के श्रोता साथी भी। हमारे एक और साथी ने भी कहा है कि उनके जो विविध भारती के जो श्रोता साथी हैं उनके दोस्त हैं और एक अलग तरह की दोस्ती पेज में हमें नज़र भी आती है आप सभी के कमेंट्स के जरिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दोस्ती फिल्म उनकी दोस्ती पर आधारित जो फिल्में हैं उनमें सबसे पसंदीदा फिल्म है। ऐसे बहुत से लोगों ने दोस्ती फिल्म को ही चुना। हमारे एक साथी दोस्ताना फिल्म का नाम भी लिखते हैं। एक और साथी कह रहे हैं कि हम सीनियर लेडीज़ का एक ग्रुप है और हम रोज़ शाम को मिलते हैं 1 घंटे आधे घंटे के लिए और बहुत सारे जो भी उत्सव त्यौहार जो भी होते हैं वो सब हम आपस में मिलके मनाते हैं और कभी कभी नाश्ते वगैरह के लिए भी वो बाहर जाते हैं, फिल्म देखने चले जाते हैं। लेकिन कोविड आने के बाद से ये दौर थोड़ा ख़त्म हो गया उनका और वो उस वक्त को अब भी मिस करती हैं। हमारे और साथी हैं वो कह रहे कि दोस्ती पर आधारित सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्ती उन्हें अच्छी लगी, खुदगर्ज याराना और दोस्ती का नाम भी हमारे एक साथी ने लिखा। वही हमारे एक साथी कह रहे कि व्हाट्सएप में मेरे स्कूल के फ्रेंड्स का एक कॉलेज फ्रेंड का भी ग्रुप है, समय समय पर छोटी छोटी टूर्स भी हम करते रहते हैं, साथ में मिलते रहते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिए जलते हैं तो अंधेरों में उजाला भर जाता है, मन में उम्मीद और जीवन में नई रोशनी आती। एक छोटा सा दीपक भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए। एक साथी कह रही हैं कि प्रेम ही ऐसी चीज़ है जो दुनिया से थोड़ी देर के लिए अलग थलग कर देता है। हम योजना तो बहुत बनाते हैं मगर अंत में वही होता है जो ईश्वर की मर्जी होती है। जन्म लेते ही हमें मिलता है प्यारा परिवार, फिर यार दोस्त, फिर एक प्यारा सा हमसफर। ये जीवन के क्रय हैं। एक दिन आपको समझ आ जाता है कि हम जो भी पात्र जी रहे हैं वो भी एक कहानी है और कहानी के लेखक हैं ईश्वर। तो इस ज़िंदगी में जो रिश्ता मिले उसका शुक्राना कीजिए और जो ना मिला उसके लिए उदास मत होइए। जो हो रहा है एक पटकथा का हिस्सा है और आप एक छोटे से रोल में हैं, तो बस उस रोल को निभाते रहिए और खुश रहिए। नमक हराम फिल्म का जो गीत हमने सुनाया दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बहुत से साथियों ने कहा कि उनकी लिस्ट में वो गीत शामिल था। और भी हमारे साथी हैं वो भी कह रहे हैं कि उनके लिस्ट के 90 नंबर का जो गीत था वो चल चुका है। एक और साथी कह रहे हैं कि प्यार यार और परिवार में छुपा है सारे संसार का सार। संबंधों की सामंजस्यता के अभाव में इंसान एकाकी और अकेला

लेपन का शिकार हो जाता है। अभिरुचि के समानांतर भाव की तलाश में इंसान कभी यार, कभी प्यार तो कभी परिवार में जीवन गुजार देता है। अंततोगत्वा उत्तरार्ध में परिवार से ही संपूर्ण संतुष्टि मिलती है, ये हमारे साथी का कहना है। और एक साथी कह रहे हैं कि स्कूल टाइम से आज तक दोस्ती चल रही है, 60 साल से मोबाइल पर लगातार हम बातें कर रहे हैं। भाई इतना समय तो शायद मोबाइल को आए हुए भी नहीं हुआ, लेकिन इनकी दोस्ती बरकरार है, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि समय, संजोग और स्थल के बदलाव से नए दोस्त तो बनने स्वाभाविक हैं और उनमें से कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हैं, पर मैं पुराने और संयोगों के कारण छूटे पुराने दोस्तों को भूला नहीं हूँ। कल की मन में और कभी कभी सपनों में भी याद आते हैं, कुछ इस दुनिया से चले गए पर मेरे सपनों में तो कभी कभी आते जाते रहते हैं। ये आपका लगाव ही है अपने दोस्तों के साथ, जो आपको वो नज़र आते रहते हैं, और इस तरह की दोस्ती तो बिल्कुल बनी रहे तो अच्छा है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कुछ बात, लेकिन ये बात हम आपको बताएंगे एक गीत के बाद। तो ये गीत हमने चुना है एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम आपको हमें बताना है, और ये भी बताइएगा कि इस गीत को लिखा किसने।

चलते चलते फिल्म का गीत आप सुन रहे थे अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत। हमारे साथियों ने कुछ जवाब दिया हो तो हम तक पहुंचा नहीं अब तक। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कॉकटेल, कॉकटेल 2, इन फिल्मों में मौज मस्ती, फ्रेंडशिप, लव, सब कुछ है। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी दोस्ती तो बड़ी अच्छी है और उनके जो गेट टुगेदर होते हैं उसके बारे में बहुत सी बातें उन्होंने लिखी है कि 100 से 150 लोग मिलते हैं, 1978 का उनका बैच है और बड़ा ही आनंद उन्हें आता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि संसार में यदि आपके पास एक सच्चा दोस्त है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होती है, हर दुख सुख में वो बिना बुलाए हाजिर रहेगा, बस एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। लेकिन हमारे एक साथी का कहना है कि यारों के साथ दिमाग फ्रेश होता है और प्यार के साथ दिमाग का दही होता है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल आसानी से मित्रता हो गई मेरी सबसे अच्छी मित्र से, बस कक्षा में आते ही हम दोनों तुरंत ही बातें करने लगी, यूं तो आगे पीछे की सीट थी फिर भी दिन भर बातें करती थी, अगली कक्षा में हम दोनों एक ही सीट पर बैठने लगे, फिर हम अलग हो गए क्योंकि हम नए घर में आ गए। तो अब भी आपकी उनसे बातें होती हैं या नहीं ये हमें बताइए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज भी एक कॉलेज मित्र के यहाँ हम चार मित्र जा रहे हैं, वो उद्योगपति है और विश्वकर्मा पूजा पर हमें आमंत्रित किया है, तो यारी दोस्ती में मूल्य उत्तरार्ध में ही, यारी दोस्ती का मूल्य उत्तरार्ध में ही महसूस होता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि प्रेम सिर्फ इंसान से नहीं पशु पक्षी से करो, वो आपको दोगुना देंगे, यानी कि दोगुना प्रेम देंगे। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दोस्त कम बनाते हैं पर जिसे बना लेते हैं उसे कभी नहीं भूलते, हमारी किसी से दुश्मनी भी नहीं है, बात सबसे करते हैं पर दोस्ती सबसे नहीं, पर जो दोस्त हैं वो बड़े ही प्यारे हैं, इतने कि अभी जब हमारे घर का काम चल रहा था तो उन्होंने कई बार हमारे लिए खाना भी बनाया और साथ आकर भी खाया। हम बहुत किस्मत वाले हैं जिसे परिवार के साथ इतने अच्छे और सच्चे दोस्त मिले हैं, और तो और स्कूल के भी कुछ दोस्त फिर से मिल गए हैं, पर हाँ बस दुख उस बात का है कि जिसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही साथ छोड़कर चले गए, ये तो खुद नहीं भगवान ने बुला लिया, शायद उन्हें कुछ अच्छे इंसानों की ज़रूरत होती है, ऐसा इन्होंने कहा। तो ये भाई अब जीवन की रीत है यही हम कह सकते हैं, लेकिन आपके पास इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कितनी अच्छी बातें हैं। वही हमारे साथी ने जो अपनी दोस्त से पहली पहली मुलाकात याद की उस पर एक गीत आपको सुनवाते हैं, आपको बताना है कि इस गीत में संगीत किसका, फिल्म किस, फिल्म का नाम भी।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का गीत आपने सुना, राहुल देव बर्मन का संगीत, आनंद बख्शी के बोल, किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी कह रहे हैं, मैं कभी अकेली नहीं रह पाई, पैदा होने के बाद हमेशा बहुत बड़े परिवार में रही, माता पिता दोनों का परिवार बड़ा और संयुक्त था, शादी भी बड़े घर में हुई, 3 बच्चे उनके शादी के बाद परिवार, अकेले रहने का मौका ही नहीं मिला। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भी तौबा तुम्हारे ये इशारे, इस गीत में से कौन सा शब्द इबारत में है कृपया बताएं। तो हम आपको बता दें कि तौबा शब्द ही हमने इबारत में शामिल किया हुआ है। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि अकेले हैं तो क्या गम है, ये गीत उन्होंने बताया। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अकेले आए हैं तो अकेले जाएंगे तय है, मगर मोबाइल ने तो हमें अभी से अकेला कर दिया। वहीं हमने एक साथी को कहा था, जो वो कह रही थी कि 60 साल से वो बातें कर रही हैं फ़ोन पर, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल पर बातें होती हैं, तो हमने कहा था तब से तो मोबाइल नहीं आया था, और उन्होंने कहा कि वे लैंडलाइन तो आ गया था। तो बिल्कुल सही बात, हम अपनी बात लेते हैं वापस, और अच्छा है आप अपने दोस्तों से इसी तरह से जुड़े रहें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए दोस्तों का जीवन में आना एक नई ताजगी और नए दृष्टिकोण लेकर आता है, लेकिन पुराने दोस्तों के साथ जो दिल का जुड़ाव होता है उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। नए रिश्ते जहाँ जिंदगी को नया रंग देते हैं, पुराने रिश्ते हमारी जड़ों और पहचान को संभाले रखते हैं। एक और साथी कह रही कि अगर सच्ची भावना तो कभी भी दोस्ती टूटती नहीं है न रिश्ते, तो इसलिए मन में कभी कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। मेरी बदकिस्मती है कि मेरे सारे दोस्त स्कूल कॉलेज के मोबाइल नहीं थे, इसलिए आज वो दोस्त गुम हैं। हज़ारों बार फ़ोन फेसबुक पर तलाश करते पर निराशा हाथ लगती है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में बिछड़े हुए दोस्त से मिलना यादगार होता है, ऐसा इनके साथ हुआ। 8वीं में सांची में थे, पिता का ट्रांसफ़र भोपाल हो गया, लेकिन 2025 में जब सांची गए तो कई दोस्तों को ढूंढने का प्रयास किया, उसमें से एक मिला और पुरानी बातें हुई, बड़ा आनंद आया। और अब आपको आनंद आएगा जब हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज़ किसकी है।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी पैसे पर। पैसा जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार बन गया है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, हमें सुरक्षा देता है और बेहतर जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन जब पैसे को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाने लगता है, तब जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है। आज अनेक लोग सफलता का मापदंड केवल धन संपत्ति को मानने लगे हैं। किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र, ज्ञान या संस्कारों से नहीं, बल्कि उसके बैंक बैलेंस, महंगी गाड़ी और आलीशान घर से आंका जाने लगा है। इस सोच ने समाज में प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। पैसे के पीछे अंधी दौड़ में कई लोग अपने परिवार, स्वास्थ्य और अपने रिश्तों की उपेक्षा कर देते हैं। दिन रात धन कमाने की चिंता में वे अपने माता पिता, जीवन साथी, बच्चों और मित्रों को भी महत्व नहीं देती।

बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैदा करता तुझे तो कभी न कर सकता मेरे यार। डॉक्टर लौट जाता भी न मिलती अगर तुम आके पोटे के अंदर पड़ा ही रह जाता हर बार। जो किया जिसने पैदा वो ईश्वर है ना मैया। द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे

अत्यधिक धन लालसा कभी कभी व्यक्ति को अनैतिक रास्तों की ओर भी ले जाती है। गलत काम के पीछे अक्सर अधिक से अधिक पैसा कमाने की चाह ही होती है। ऐसा धन क्षणिक सुख तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति और आत्मसम्मान नहीं दे सकता। ये भी सत्य है कि पैसा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कठिन हो जाती है। इसलिए धन कमाना गलत नहीं है, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम से कमाया गया धन सम्मान का विषय है। समस्या तब शुरू होती है जब पैसा जीवन का उद्देश्य बन जाता है, साधन नहीं। वास्तविक समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण रिश्तों, संतोष, नैतिक मूल्यों और मानवता में भी होती है। पैसा जीवन को सुविधाजनक बना सकता है, लेकिन खुशियों, विश्वास और अपनत्व का स्थान नहीं ले सकता। पैसे को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना वह वास्तव में योग्य है। पैसा जीवन का आवश्यक साधन है, परंतु जीवन का सर्वोच्च मूल्य नहीं। धन का सम्मान करें, उसका सदुपयोग करें, लेकिन अपने संस्कारों, रिश्तों और मानवीय मूल्यों को उससे कभी कम न आंके। पैसे से हम भले ही दुनिया की हर चीज़

और मानवीय मूल्यों को उससे कभी कम न आंके। पैसे से हम भले ही दुनिया की हर चीज़ खरीद सकते हैं, पर पैसे से प्यार, अपनापन, स्नेह नहीं खरीदा जा सकता, और पैसे का हमें गुरूर भी नहीं करना चाहिए।

जब पैसे का दुरुपयोग होने लगता है, तब वही पैसा अनेक समस्याओं का कारण बन जाता है। इसलिए धन कमाना जितना आवश्यक है, उससे कहीं अधिक आवश्यक है उसका सही और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करना। आज के समय में अनेक लोग अपने आय का बड़ा हिस्सा दिखावे, फैशन, अनावश्यक खरीदारी, महंगे गैजेट्स, पार्टियों और विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर देते हैं। कई बार लोग केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी आर्थिक क्षमता से अधिक खर्च कर बैठते हैं। ये प्रवृत्ति धीरे धीरे आर्थिक असंतुलन और मानसिक तनाव को जन्म देती है। सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने भी पैसे के दुरुपयोग को बढ़ावा दिया है। दूसरों की जीवन शैली देखकर लोग बिना आवश्यकता के नई नई वस्तुएं खरीदने लगते हैं। कई बार वस्तुएं केवल इसलिए खरीदी जाती है कि वे प्रचलन में हैं, जबकि उनकी वास्तविक आवश्यकता नहीं होती है।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। भारत ने अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को समर्थन देने पर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। और क्रिकेट में भारत आज नई दिल्ली में अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि परिसर में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शुभारंभ किया।

0: तीन दिवसीय ये सम्मेलन भारत में सहयोग, निवेश, नवाचार और प्रतिभाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि एक ओर हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ रहा है।
1: दुनिया का भारत पर भरोसा भी बढ़ता जा रहा है। साथियों, इसी भरोसे की एक और बड़ी तस्वीर 3 दिन पहले खत्म हुई ब्रिक्स समिट में दिखाई दी है। भारत ने इस समिट की सफलतापूर्वक मेजबानी की। सबकी सहमति से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का एडॉप्ट होना भारत पर विश्व के भरोसे का एक और बड़ा प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है। उन्होंने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा गंतव्य बनने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहा है।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है। उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग $8 बिलियन का था, जबकि सेकंड फेज का $13.5 बिलियन तक का हमने तय किया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत में निर्मित चिप अब देश के भीतर और दुनिया भर में उपलब्ध हैं। श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा अगला पड़ाव सेमीकंडक्टर के दूसरे चरण में के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जो 6 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है।
2: सेमिकॉन का दूसरा चरण 6 स्तंभों पर सेमीकंडक्टर उद्योग का निर्माण करेगा। पहला स्तंभ डिजाइन है, दूसरा मशीनें और सामग्री, तीसरा स्तंभ अधिक डिस्प्ले, मेमोरी, सिलिकॉन, कंपाउंड और लॉजिक फैब्स, चौथा अधिक उन्नत पैकेजिंग इकाइयों पर और 5वां स्तंभ अनुसंधान तथा विकास पर केंद्रित है। 6ठा स्तंभ प्रतिभा से संबंधित है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के उद्देश्य से 200 स्टार्टअप और कंपनियों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए हैं। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं अनुच्छेद 370 के संबंध में।
1: जम्मू कश्मीर में सही मायने में

0: भारत का संविधान लागू हुआ है और ये सब कुछ साथियों इसलिए हो रहा है क्योंकि सबको बांटने वाली आर्टिकल 370 की दीवार अब गिर चुकी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये विचार जम्मू कश्मीर की संवैधानिक तारीख के अब तक के सबसे बड़े फैसले को दर्शाती है।

0: हाँ, फेस्टिवल्स, दिन रात के हमारे टूर्नामेंट्स जो होते हैं, ये सब चीजें खुशहाल कश्मीर देखने को हमें आर्टिकल 370 के हटने से नजर में आया।
1: अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा केंद्रीय सरकार हर संभव कदम उठा रही है, लेकिन जरूरी है कि यहाँ की आवाम भी इन अवसरों का पूरा फायदा उठाए। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इशफाक शाह।
2: गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन और उनके 25 वर्ष की जनसेवा के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। गुजरात का वडनगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह नगर है। श्री शाह ने जनसेवा का संदेश फैलाने के लिए वडनगर से वाराणसी तक साइकिल रैली को रवाना किया। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत से सर्वथा स्पष्ट होता है।
3: हमने जो कल्पना रखी है 2047 में पूर्ण विकसित भारत की, वो कल्पना की पूर्ति के लिए अनेक ऐसे युवा चाहिए, अनेक ऐसे किशोर चाहिए, अनेक ऐसे बालक चाहिए जो आने वाली 3 पीढ़ी तक नरेंद्र मोदी के रास्ते पर अपने जीवन को आगे बढ़ाकर भारत प्रथम के मंत्र को सफलता के साथ करे।
2: प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इस अवसर पर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से गुजरात के वडनगर के लिए बाइक रैली रवाना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सोशल मीडिया संदेश में महिलाओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
4: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूं। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
2: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन और विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी घोषणा की। इस योजना में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रूपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री को जन्मदिन के अवसर पर देश विदेश से शुभकामनाएं मिल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को सशक्त बनाने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भारत में रूसी दूतावास ने इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का संदेश साझा किया। इस बीच नई दिल्ली स्थित कई दूतावासों और विदेशी राजनयिकों ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से श्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की। जापान के राजदूत ओनो केइची ने विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन पर मिल रही इन शुभकामनाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रत्येक आशीर्वाद देश की जनता की सेवा करने के उनके संकल्प को अधिक दृढ़ बनाता है। पीएम विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में आज ही के दिन इस योजना की शुरुआत की थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये योजना कारीगरों और शिल्पकारों को व्यापक पैकेज प्रदान करती है।
5: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब तक 30 लाख से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक काम और हुनर से जुड़े विश्वकर्माओं को आगे बढ़ने में मदद करना है। इसके तहत उन्हें आधुनिक औजार, प्रशिक्षण, आसान शर्तों पर ऋण और बाजार से जुड़ने का अवसर दिया जाता है, ताकि वे अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। अब तक करीब 24,50,000 विश्वकर्माओं को बुनियादी कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वहीं इस योजना

के तहत 6 लाख से अधिक विश्वकर्माओं को 1 लाख रुपए तक का ऋण महज 5% की दर पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्व

उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा 18 लाख से ज्यादा आधुनिक टूल किट भी इंडिया पोस्ट के माध्यम से विश्वकर्माओं के घर पहुंचाए जा चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना पारंपरिक हुनर को आधुनिक साधनों से जोड़कर विश्वकर्माओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार।

0: और प्रियजनों को ना खोए।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2026 का उद्घाटन किया। कहा, भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खोल रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार ने सेमीकंडक्टर की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भारत में चिप डिजाइन करने के लिए 200 स्टार्टअप और कंपनियों को समर्थन देने का लक्ष्य रखा। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का एक माह का राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान शुरू। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के आज 3 वर्ष पूरे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में पतिता फिल्म का गीत आपने सुना। शंकर जयकिशन का संगीत और बोल हसरत जयपुरी के। आज गीतकार हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम उनकी कलम से निकले गीतों से सजा है। कार्यक्रम में अगला गीत मुकेश की आवाज में छोटी बहन फिल्म का ये गीत सुनिए। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा, शंकर जयकिशन का संगीत।

आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: गिरा दिया। झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म, शेखर। मेरे पास वक्त नहीं फजूल बातों के लिए, मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी

0: कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। हसरत जयपुरी की पुण्यतिथि पर उनकी कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: हसरत जयपुरी के शब्द आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत में ओपी नैयर का संगीत। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं हसरत जयपुरी की ये रचना मोहम्मद रफी की आवाज में, झुक गया आसमान फिल्म के इस गीत में संगीत शंकर जयकिशन का।
1: कौन है जो सब

झुक गया आसमान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

ठीक नहीं। राजकुमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आज गीतकार हसरत जयपुरी की कलम से निकले गीत आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में चोरी चोरी फिल्म का ये गीत सुनते हैं, हसरत जयपुरी की कलम, शंकर जयकिशन का संगीत।

चोरी चोरी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में आपने सुना। हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज़ पगला कहीं का फिल्म से ये गीत सुनिए, जिसे लिखा हसरत जयपुरी ने, शंकर जयकिशन का संगीत। इस गीत के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बावजूद भारत ने 7.8% की विकास दर हासिल की है।
1: भारत की क्वार्टरली जीडीपी रिपोर्ट आई और इस चैलेंजिंग पीरियड में भी भारत ने 7.8% ग्रोथ हासिल करके दिखाई है और इसी दरमियान जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में सुधार किया है, अपग्रेड किया है और ये भी 3 दशक के बाद, करीब 35 साल के बाद हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास

शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। जिला भाजपा अध्यक्ष केशव चौहान ने प्रधानमंत्री के 25 वर्षों के सेवा और संकल्प काल को भारत का स्वर्णिम काल करार दिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी

0: बागवानी विकास मिशन यानी एमआईडीएच के तहत किसानों और युवाओं को मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस पहल से कांगड़ा जिला में 42 मशरूम उत्पादन इकाइयां बनकर तैयार हो चुकी हैं। पेश है ये रिपोर्ट।
1: एमआईडीएच के तहत किसान और युवाओं को मशरूम उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के

वहीं मंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला योजना व जिला स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक में भी विभिन्न विकास योजनाओं और पूर्व में लिए गए

0: हुसैन खां और गुरु हनुमान प्रसाद जी से जयपुर घराने की नृत्य की बारीकियां सीखी। गोविंद राज पिल्लई और महालिंगम पिल्लई से उन्होंने भरतनाट्यम भी सीखा। वो कभी स्कूल नहीं गई, घर पर ही ट्यूशन लेकर अपनी पढ़ाई करती थी।
1: और उन्हें हमारे देश के और विदेश के नेताओं के सामने भी नृत्य प्रस्तुति का अवसर मिला। 1971 में उन्होंने मुंबई में नृत्य कला केंद्र की स्थापना की। इस नृत्य संस्था से उन्होंने अपने कई शिष्य तैयार किए। उनकी प्रमुख शिष्याओं में मुक्ता जोशी, अदिति भागवत, नंदिता पुरी, अनुना गुहा, ये बहुत सारे नाम शामिल हैं
0: जी। और रोशन कुमारी ने फिल्मों में भी कथक को जीवित रखा। एक अभिनेत्री के रूप में बिमल रॉय की फिल्म परिणीता, फिर सोहराब मोदी की मिर्जा गालिब, बसंत बहार जो बंगाली फिल्म बनी थी उसमें, और सत्यजीत रे की जलसागर।
1: और उनके उत्कृष्ट नृत्य प्रदर्शन और नृत्य कला के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें बहुत सारे सम्मानित पुरस्कार से भी सम्मानित करवाया। 1963 में उन्हें मिला नृत्य शिरोमणि पुरस्कार, 1975 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 1977 में नृत्य विलास सम्मान उन्हें मिला, 1984 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 1990 में महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, 2005 में अखिल भारतीय भूलिका पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया
0: जी। और रोशन कुमारी की नृत्य शैली की यह विशेषता थी कि इसमें जयपुर घराने की तेज लयकारी, चक्कर पखवाज की थाप के साथ भरतनाट्यम जैसे अभिनय की गहराई का संगम, ये दोनों दिखते हैं। उस दौर में उनका कृष्ण लीला पर नृत्य करना लोगों को अटपटा सा लगता था ममता जी, लेकिन उसके बावजूद तब उनके पिता ने हर रूढ़ी को तोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया।
1: और उनकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि कला में पहचान केवल प्रतिभा से नहीं मिलती, प्रतिभा को साधना, अनुशासन और समर्पण से निखारना पड़ता है। जब घुंघरुओं की आवाज़ के साथ ताल मिलती है, जब एक कदम से लय जन्म लेती है और एक भाव पूरी कहानी कह देता है, तब समझ में आता है कि कथक सिर्फ नृत्य नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की धड़कन है। तो ये थी कथक नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में जानकारी। हमारे बहुत सारे श्रोता भी टिप्पणी में कुछ लिख रहे हैं, लेकिन एक गाना सुन लेते हैं जिसमें नृत्य का ही एक स्वरूप देखने को हमें मिलेगा, उसके बाद उनकी टिप्पणियां भी शामिल करते हैं
0: जी। बिल्कुल,

0: दीपा जी, ये लेकिन फिल्म का गाना था आशा भोसले की आवाज़ में, और बहुत ही खूबसूरती से हेमा मालिनी नृत्य करती नज़र आ रहे हैं। हम बात कर रहे थे नृत्यांगना रोशन कुमारी के बारे में, जानकारी दी थी इस गाने से पहले, और उन्हीं के बातचीत के बाद ख़ास तौर से हमने ये गाना चुना था। और गुलजार साहब के बोल थे, सत्यशील देश पांडे का इसमें संगीत था, और हेमा मालिनी ने ये नृत्य किया। और ये तो सभी को पता ही होगा कि हेमा मालिनी तो नृत्य में कितनी पारंगत हैं और कितने तरह के नृत्य उन्हें आते हैं और कुशलता से पर्दे पर वो दिखाती हैं, और अलग से वो क्लासेस भी लेती रही हैं
1: जी।
0: और बहुत सारी जानकारियां उनके बारे में हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल
1: अब हम चलेंगे विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर, और एक बात और कहना चाहेंगे बस यहाँ पे, कि अगर नृत्य करते रहेंगे तो हमें शायद इस तरह के रोग से मुक्ति बहुत बहुत हमें मिलती रहेगी। फिलहाल ये बात,
0: क्योंकि एक तरह की एक्सरसाइज भी हो जाती है नृत्य से।
1: जी, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर साल 17 सितंबर को मनाया जाता है। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव के तहत शुरू किया था। इसका मुख्य सिद्धांत था फर्स्ट डू नो हार्म, यानी चिकित्सा का पहला नियम है कोई नुकसान न पहुंचाना। और WHO के अनुसार दुनिया में हर 10 में से एक मरीज को स्वास्थ्य सेवा के दौरान किसी न किसी तरीके का जो भी नुकसान होता है उसमें से लगभग 50% नुकसान को रोका जा सकता है। और

0: या सांस फूलने वाले कोई पुराने रोग होते हैं। दुनिया में करीब 74% जो मृत्यु है इन्हीं बीमारियों से होती है।
1: WHO ने इस थीम को इसलिए भी चुना है क्योंकि मरीजों को सालों साल लगातार इलाज, दवाइयाँ और जांच की ज़रूरत पड़ती है और बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनमें नुकसान की संभावना भी बढ़ जाती है, जैसे कि कई बार गलत निदान या फिर देर से निदान होना, इलाज करवाना, और दवाइयों में कई बार चूक हो जाती है। अस्पताल में जो संक्रमण की संभावना होती है वो बढ़ जाती है। कई बीमारियाँ एक साथ होने से इलाज में दिक्कतें भी पैदा हो जाती हैं
0: जी।
1: तो इस वर्ष आज के दिन के मुख्य लक्ष्य को रखा गया है कि मरीजों को सिर्फ मरीज नहीं बल्कि साझेदार बनाना है ताकि वो खुद अपनी सुरक्षा में हिस्सा ले सकें। और सरकार भी स्वास्थ्य नीतियों में रोगी सुरक्षा के तहत शामिल किया है अपनी नीतियों को और सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षित निदान और सुरक्षित दवा उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। ये आज इसका उद्देश्य है
0: जी। और देश में रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर ये भी जरूरी है कि डॉक्टर का पर्चा साफ साफ समझना सीखना चाहिए, दवा का नाम, खुराक, एक्सपायरी ये सब देखना बिल्कुल ना भूलें और अपनी बीमारी का पूरा इतिहास डॉक्टर को बताना जरूरी है, तभी सही इलाज संभव है। और इलाज के बाद फॉलोअप को कभी भी हमें नजर

0: बुखार और ये सब सिम्टम हो रहा है, वही दवा आप रिपीट कर लेते हैं। ज़रा सोचिए कि साल भर पहले जो बीमारी जिस वजह से आपको फीवर बुखार आया था, ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वही कारण हो, कुछ
1: जी
0: और कारण
1: जी
0: हो सकता है। उसमें बहुत सारी बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया और दुनिया भर की जो बीमारियां फैली हुई हैं, वो डेंगू जैसी बीमारी, तो पता चला वही दवा आप रिपीट कर रहे हैं, खा रहे हैं,
1: जी
0: बुखार की दवा खाए जा रहे हैं। तो बेहतर ये होता है कि आप अपनी सुरक्षा खुद करें, डॉक्टर से संपर्क कर लें पहले।
1: जी
0: और फिलहाल हम ये गाना सुनवा दें।
1: चलिए सुनते हैं।

0: तो देखिए स्वास्थ्य का रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे रामा रामा हम ये गीत के तौर पे गाएं तो ठीक है, ऐसा नहीं हो कि तबीयत के कारण या किसी और वजह से हम इस तरह से ईश्वर का नाम लेते रहें।
1: और हमारे बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और किस तरह से ध्यान रखना चाहिए ये हमारे श्रोताओं ने नहीं बताया। दरअसल अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना बस इतना ही है कि हम तो यही कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखने के लिए नियमित रूप से टहलना अपने जीवन में शामिल कर लीजिए, नियमित रूप से कसरत को शामिल कर लीजिए, और राजनृत्य की बातें की थोड़ा बहुत मूवमेंट, कुछ आजकल तो इस तरह के एक्सरसाइज भी बताई जाती हैं जिसमें नृत्य की भावभंगिमाएं शामिल हैं, जिसमें पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, हाथ की, पैर की, आंखों की और चेहरे की, बाकायदा ट्रेनर आपको सिखा देते हैं, और एक

0: नया चलन ये भी चला है, हालांकि ये पुराना है लेकिन आजकल ज्यादा चलन में
1: आजकल
0: वो है
1: ज्यादा हो गया
0: कि जिम जाना नियमित रूप से
1: जी, जी।
0: तो आप जिम जाके भी अपने को फिट फाट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। फिलहाल हम एक संदेश सुनवा रहे हैं।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
3: मैं निकला ओ गडले
2: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट जीवन की कहानी।
4: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
5: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
6: चिट्ठी ना कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
7: सखी सहेली कार्यक्रम में अब ले रहे एक ब्रेक छोटा सा।

0: विविध भारती से श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। और दीपा जी कहाँ
1: जी,
0: सोशल मीडिया में उलझी हुई है ना?
1: सोशल मीडिया में उलझे नहीं है, हम तो ढूंढ रहे हैं हमारे सभी श्रोताओं के संदेश।
0: तो ये जो मोबाइल नाम का यंत्र है ना, इसी में मिलता है सब।
1: देखिए हर चीज के लिए ममता जी ये बुरा नहीं है, कुछ कुछ काम की बातें भी तो होती है ना। देखिए और अपने जो श्रोताओं से है ये जुड़ने का, बिल्कुल जो सखी सहेली के वक्त जुड़ने का एकदम उस वक्त लगता है कि हम फोन न हटाएं, अपने तो, पास रखें, ज्यादा से ज्यादा संदेश
0: तो
1: हम
0: वो
1: तक।
0: सोशल मीडिया वाले ज्ञान के कौन कौन से मोती हैं जरा देख लेते हैं हम भी।
1: जी।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सोशल मीडिया आज हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ये हमें लोगों से जोड़ने और विचारों के आदान प्रदान का अवसर देता है, लेकिन इसके कारण हमारे व्यवहार में भी बदलाव आया है। हमें सोशल मीडिया का उपयोग संयम, शिष्टाचार और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणी, अफवाह या गलत जानकारी साझा करने से बचना चाहिए। सही संतुलन के साथ सोशल मीडिया हमारे ज्ञान, संवाद और सकारात्मक सोच का माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा। देखिए कि बदला तो है, दिनचर्या देखिए बदली तो

0: है कि हमारी सुबह केवल सूरज की पहली किरण के साथ नहीं होती, हम मोबाइल की स्क्रीन से भी होती है, और आंख खुलते ही फोन देखना, संदेश पढ़ना, सोशल मीडिया पे आए नए पोस्ट देखना, और फिर दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में फोन की तरफ लौटना, जैसे हमारी ये जिंदगी की रोजमर्रा की आदत नहीं बन गई, आपको नहीं लगता ममता जी?
1: बिल्कुल लगता है। एक और बदलाव हमारे व्यवहार में आ चुका है कि किसी ने अपनी पोस्ट डाली है तो ये देखना कि वो लाइक मिले कि नहीं, कमेंट लिखे कि नहीं लिखे, आमने सामने शायद हम जिस बात को बड़ी ही शालीनता से कहें वही स्क्रीन के पीछे बैठकर बहुत ही कठोर शब्दों में कह जाते हैं, और कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हम जब व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिखते हैं तो कई बार बहुत सरलता से कोई बात लिखी जाती है, लेकिन पता चलता है कि उस बात का गलत मतलब निकाल लिया गया,
0: और फिर उस पर बड़ी लंबी सी बातचीत होने लग जाती है। कोई एक सोशल मीडिया का फ्रेंड कुछ एक बात लिखता है, उस पर फिर जवाब आते हैं, और वो बात बहुत लंबे आगे तक खींच के चली जाती है। लेकिन पहले देखिए ये है कि क्या हम सोशल मीडिया पर जो इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों, ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने लगा है?
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि हम फोन उठाते हैं, सोचते हैं कि बस 5 मिनट फोन देखेंगे। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपकी ओर से बोल रही हूँ।
0: चलिए किसी के भी ओर से हो भाई, एक बात उठना चाहिए।
1: हम तो श्रोताओं की ओर से भी ये बात कह रहे हैं
0: जी।
1: क्योंकि माफ कीजिएगा, क्योंकि सभी की ये लत है कि फोन उठाया और एक वीडियो देखा, एक फोटो देखा, उससे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और अगर मोबाइल की गैलरी में चले गए तब तो तस्वीरों से जुड़ी हुई बातें जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि वो 5 मिनट कब आधे घंटे में तब्दील हो गया।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हम ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमें तो बिल्कुल समय के हिसाब से चलना होता है और समय का मिलान करते हैं हमारे श्रोता, लेकिन श्रोता बताएं कि वो कितना ख्याल रखते हैं। क्या वो कभी ऐसा करते हैं कि 5 मिनट के लिए बैठे और आधे घंटे बीत गए और कहीं जाना था और बैठे रह गए कि पता चला घर में बहन, पत्नी या माँ ने कहा कि ज़रा सब्जी दूध ले आना, और आप मोबाइल के स्क्रीन पे ही बैठे रह गए। या फिर उल्टा भी कर लीजिए इसको कि पति ने पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा या कोई और काम आपस में बंटवारा हुआ कि हम ये करना, और बैठे रह गए। तो ये कोई एक वर्ग नहीं है, ये बच्चे, बुजुर्ग, घर में पति पत्नी, भाई बहन, सब लोग इसी में लगे हुए हैं,
0: सब शामिल हैं। और देखिए ना, ये चमकती सी जो दुनिया है इसमें ऐसा लगता है कि हाँ भाई इसको भी जवाब दे दे, हम इन्हें भी जवाब दे दे, अरे हमारे इस मित्र का ये संदेश आया था हम उसे भी जवाब दे दे, या हमने जो डाला था पोस्ट उस पर कितने लाइक्स आए वो देख लें, और अब बहुत सारे कमेंट्स भी आ गए हैं तो उसका जवाब अभी के अभी देना बहुत जरूरी है, फिर झगड़े हो जाते हैं।
1: और अभी आप जब सोशल मीडिया पे देख रही थी संदेश, तो मैंने 2-3 बार आपको आवाज दी यहीं बैठे बैठे, तो आप डूबी हुई थी, लेकिन ठीक है, वो अच्छी बात है कि श्रोताओं की टिप्पणियों में आप डूबी हुई थी।
0: जी बिल्कुल, उसमें डूबे हुए थे।
1: कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सोशल मीडिया में आप उलझ जाते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, ठीक है उसमें बहुत कुछ है, आपके मोबाइल के अंतर में कंप्यूटर के स्क्रीन पर बहुत कुछ है, जानकारियां भी बहुत सारी हैं, किताबें हैं, बहुत सारे पन्ने हैं जिससे आप पढ़ सकते हैं, कहानी कविताएं भी पढ़ सकते हैं
0: जी।
1: लेकिन सिर्फ बैठ के एक दूसरे को जवाब देते रहे, चैट करते रहे, हंसते रहे, इमोजी भेजते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है। कई बार आप ऐसा होता है कि कोई जरूरी काम भूल जाते हैं। आपको बताऊं दीपा
0: जी
1: कि अभी कल ही एक जो फिल्म है हनुमान अंश, उसके उस फिल्म के डायरेक्टर आए थे और विशाल चतुर्वेदी
0: जी,
1: तो उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो पता चला कि वो कागज़ और कलम से लिखते हैं, तो मैंने ये सवाल पूछा कि आज डिजिटल युग में आप कागज़ कलम से ये इतनी बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख डाली, ऐसा उनके बारे में सुना था
0: जी।
1: तो उन्होंने बताया कि दरअसल हुआ ये कि मोबाइल साथ में रहता था और कंप्यूटर साथ में है, तो कितना भी हम मोबाइल को म्यूट कर लें लेकिन थोड़ी थोड़ी देर पे स्क्रीन पर कुछ न कुछ चमकता रहता है, कोई न कोई संदेश, फिर लगता है कि ये ज़रूरी तो नहीं होगा मोबाइल उठा के देखते रहना। तो मैंने क्या किया, मतलब ये उन्होंने कहा विशाल जी ने, कि मैंने क्या किया कि मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, बंद करके पैक करके रख दिया, और एक हमारे स्टूडियो में गुफानुमा एक बना हुआ है कमरा जैसा, वहां पे मैं चला गया और कागज कलम लेके, तो 15 दिन तक मैं स्क्रिप्ट लिखता रहा और 15 दिन तक मैं सोशल मीडिया से दूर रहा, मतलब मोबाइल से
0: जी।
1: तो ये बड़ी अचरज की बात है, आज के युग में आप 15 दिन तक, लोग 15 घंटे नहीं रह सकते, मुझे तो लगता है 15 मिनट भी नहीं रह सकते बिना मोबाइल के।
0: बिल्कुल। और आज के युग में अगर 15 दिन तक कोई दिखे नहीं, अगर कोई जैसे ये मीडिया से जुड़े कोई व्यक्तित्व है, अगर

0: वो ना दिखाई दे और कुछ जवाब ना दे या कुछ प्रतिक्रिया ना दे तो ऐसा लगता है इन्हें क्या हो गया या क्या बात है भाई, या तो ऐसा लगने लग जाता है अहंकार तो नहीं आ गया या यूं लगता है हमसे नाराजगी तो नहीं है, और फिर वो पर्सनल मैसेज पे जाकर ऐसा क्यों ऐसा करो। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कई बार कुछ अच्छी सी पोस्ट लिखते हैं ना तो या उन्हें लगता है कि हमने बहुत अच्छी सी बात लिखी है तो
1: जवाब नहीं दिया,
0: जवाब नहीं दिया, मैसेज पर्सनल डालते हैं कि जवाब नहीं दिया, उस पर जवाब दो। देखो हमें ना कोई फला मतलब किसी तीसरे को हमें कुछ ये बताना है या सुनाना है इसलिए तुम यहाँ पर जवाब दो, तो इस तरह की भी बातें होने लग जाती।
1: और तो और फेसबुक पर और इंस्टा पर कुछ लोग पोस्ट डालते हैं और टैग कर देते हैं, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर पर्सनल मैसेज भेजते हैं कि अरे मैंने तो ये लिखा, अच्छा उसका फिर लिंक भेजते हैं, लिंक पर भी आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर मैसेज करते हैं, मैसेज भी नहीं देखा तो फोन करते हैं कि अरे मैंने ये पोस्ट डाली थी आपने तो देखी ही नहीं।
0: तो इस तरह के व्यवहारों में हम बहुत सारे अंतर देखते हैं। अभी हम क्या देखें या सुने,
1: सुनते हैं ये गाना।

0: ओरे ताल मिले नदी के जल में, अब आजकल तो शब्द मिले भाषा, भाषा मिले जाके मोबाइल के स्क्रीन पर, यही हाल हो रहा है। और हम बात कर रहे थे यही
1: जी,
0: मतलब सोशल मीडिया,
1: सोशल मीडिया तो ये इस्तेमाल करने के वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए ममता जी, जैसे कि दूसरी तरफ भी एक इंसान ही बैठा हुआ है तो उसकी भावनाएं और उसकी संवेदनाएं भी हैं, तो इसका थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि हम कभी बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं या उन्होंने क्या किस तात्पर्य में ये बात कही है, ये भी हमें समझ के ही अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पे देनी चाहिए।
0: दीपा जी, हम अभी तक तो सोशल मीडिया की नकारात्मक बातें ही कर रहे थे, कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं
1: जी,
0: कि एक समय था जब ये माध्यम नहीं था तो

0: बहुत सारी जानकारियों से हम अनभिज्ञ रह जाते थे, पता नहीं होता था। जैसे किसी फिल्म की चर्चा सिर्फ अखबार में हम पढ़ पाते थे। एक समय तो ऐसा था कि रिक्शे पर, आपको याद होगा, वो भोपू लगा के प्रचार होता था रिक्शे पर बैठ के, फिर अखबार में आने लगा तो हम अखबार के पन्ने पे ढूंढते थे कि कौन सी फिल्म लगी है कहाँ पर, किस टॉकीज में। फिर अब इतना आसान हो गया है कि आपको फिल्मों की जानकारी मिल जाती है, थिएटर नाटकों की जानकारी मिल जाती है, किताबें जो आती हैं, हम पहले किताबें सिर्फ नाम से ही जानते थे कि फला साहित्यकार, फला लेखक, कवि, उनकी कोई किताब आई है, तो जब हम प्रकाशक से जुड़े होते थे तो हम वो किताबें मंगवा लेते थे
1: जी।
0: तो या फिर अखबार या पत्रिकाओं में उनका नाम, मतलब जो नए लेखक, उभरते हुए लेखक होते थे अनजान, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती थी। अब ये है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम नवोदित कवियों को, नवोदित लेखकों को जान पाते हैं, उनकी किताबों की जानकारी मिलती है और उनकी किताबों की चर्चा होती है। और ऑनलाइन व्यवस्था हो गई है जहाँ पर किताबों के बारे में चर्चा हो जाती है, फिल्मों के बारे में लोग चर्चाएं कर लेते हैं, और बहुत सारे माध्यम, विज्ञान है, मतलब बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें सोशल मीडिया पर उपलब्ध होती है। लेकिन उसकी एवज में इतना सारा वक्त खा लेता है सोशल मीडिया, वो बहुत दुखद है।
1: वो हमें हमेशा एक अपने आप पर ही, ये यूं कहना चाहिए कि थोड़ा सा खुद पर नियंत्रण चाहिए कि हमें कितनी देर बैठना है। अगर या तो समय हम इसके करने कि हाँ भाई आज हम आधा घंटे का वक्त है या एक घंटे का वक्त है या दोपहर में आराम का वक्त है, खासतौर पे महिलाओं के लिए, या जब सारे घर का काम हो जाता है, या आपका दफ्तर से अगर लौट रहे हैं या व्यापार से वापस आ रहे हैं, तो चलिए ठीक है, आपने थोड़ी सी देर आधा घंटा देख लिया, वहाँ तक ठीक है, लेकिन हम उसी में डूबे रहें ऐसा ना हो। ज्ञान भी बेशक ये अच्छी बात है कि आज हमारे हाथों में ही है, हम चाहें जितना ज्ञान बटोर सकते हैं और चाहें तो वो कड़वे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर रहता है।
0: गानों के बारे में भी जानकारी हमें मिलती है इंस्टाग्राम पर, जैसे कोई फिल्म रिलीज होती है इंस्टाग्राम पर रीलें बनने लगती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो बहुत सारे गाने, नए गाने हम नहीं जान पाते हैं, तो वो देख के भी पता चल जाता
1: जी,
0: है। एक तो माध्यम है रेडियो और विविध भारती से तो हर तरह के गाने प्रसारित ही होते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया से भी मिल जाती है
1: जी। ये एक संदेश आया है ममता जी, कह रहे हैं कि हमारा व्यवहार हमेशा सोशल मीडिया पर शिष्ट, जिम्मेदार और सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी खबर या पोस्ट को शेयर करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर कर लेनी चाहिए ताकि हम गलत जानकारी ना फैला सकें। और साथ में ये भी लिखते हैं कि हमेशा ये अपमानजनक बात या कुछ ऐसी पोस्ट जिसमें एक घृणा बढ़े, इस तरह की बात बिल्कुल ना करें, या किसी की व्यक्तिगत जानकारी, तस्वीरें या वीडियो उसके अनुमति के बिना हमें साझा नहीं करनी चाहिए, और सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताने से भी बचना चाहिए और इसे अपने वास्तविक जीवन पर हावी नहीं होने देना चाहिए।
0: बिल्कुल, कई बार लोग इसका ध्यान नहीं रखते हैं और किसी की तस्वीर लेकर अपनी प्रोफाइल पे लगा लेते हैं, तो आप देखो तो पता चलता है कि, और उसे जब भी कोई संदेश कहीं भेजा तो पता चला कि तस्वीर तो आपकी है और वो व्यक्ति कोई अनजान है
1: जी।
0: तो ये भी गलत है, ये सब गलत आदतें हैं और इनसे बचना चाहिए। और ज़िंदगी उन पलों का नाम नहीं जिन्हें हम सिर्फ कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डालते हैं, ज़िंदगी तो उन पलों का भी नाम है जिन्हें हम बिना कैमरे के, बिना पोस्ट किए, बिना लाइक किए, उम्मीद के जीते रहते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपके घर की हर बात सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाए, कुछ बातें निजी भी रखनी चाहिए।
1: बिल्कुल, और एक संदेश ये कह रहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि सोशल मीडिया आज के युग में कई फायदे हमें दे रहा है, जैसे इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के बारे में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बिजनेस हो या प्रसारण, परंतु कुछ लोगों की ये फितरत होती है कि हर अच्छी चीज़ को बुराई में परिवर्तित कर देते हैं, ये उन्हें गलत लगता है। एक और संदेश ये कहता है कि सोशल मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक मंच, इस मंच का उपयोग करते वक्त बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, जो हर वक्त एक उपभोक्ता की फर्ज बनता है कि इस मंच पर ऐसी कोई पोस्ट न डालें जो समाज के लिए हानिकारक हो, 100 बार सोच विचार कर सत्यता की जांच के बाद ही हमें पोस्ट करना चाहिए।
0: एक हमारी सखी हैं जो लिख रही हैं कि हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं कि बस थोड़ा देखते हैं और इतनी देर तक उसमें सोशल मीडिया में खो जाते हैं, पर लाइक नहीं देखते, बस कुछ अच्छी बातें ही देखते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि फिर सोशल मीडिया के साथ तो उसकी व्यवहार कुशलता और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ हम अपने हिडन आई की निगाह में काम कर रहे होते हैं जिसे हम नहीं जानते, यही नहीं बल्कि हमारा व्यवहार भी

0: छुप जाता है कि हम क्या कर रहे हैं।
1: एक चीज़ और थी जो कि हमें अब ज़रूर बात करनी चाहिए, जैसे हम लिख देते हैं सोशल मीडिया पर कि जो इंग्लिश में लिखा जा लिख दिया जाता है ना, गोइंग फॉर अ वेकेशन, और हम उसमें तारीखें भी डाल देते हैं ममता जी कि हम इतने दिन से इतने दिन तक कहीं हम बाहर जा रहे हैं। अब अगर किसी का ध्येय ही कुछ अलग है, गलत है, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप इतने तारीख से इतने तारीख तक घर में नहीं है, तो शायद आपके अनुपस्थिति का वो फायदा
0: सुरक्षा की दृष्टि से,
1: सुरक्षा की दृष्टि से
0: ठीक नहीं है,
1: ये ठीक नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने तारीख को जा रहे हैं, इस तरह की बात हमें कभी भी साझा नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। एक हमारी सखी जिन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर हम रोज न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कुछ अपने होते हैं कुछ बिल्कुल अनजान। हमारी एक छोटी सी टिप्पणी, एक प्यारा सा शब्द, किसी का हौसला बढ़ाती बात उसके दिन को खूबसूरत बना सकती है। इसलिए यहाँ भी कोशिश करें कि हमारे शब्दों में सम्मान हो, बातों में मिठास हो और दिल में किसी के लिए बुरे भाव ना हो। बिल्कुल सही बात है कि ये ज़रूर है कि कोई उदास है, दुखी है, तो आपकी एक टिप्पणी, आपका एक संदेश उसके दिल को, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट होठों पर ला सकता है।
1: जी, और एक हमारी सखी लिख रही हैं कि ये वरदान तो बन सकता है, लेकिन इसका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शायद हमें ये मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी के हिसाब से भारी हमें नुकसान पहुंचा सकता है।
0: जी, और अब एक सुनते हैं गाना। ये
1: जी,

देखिए त्योहारों का जो वक्त ये चल रहा है इन दिनों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आसपास और अपने पर्यावरण का ध्यान रखें। और ये लोगों ने कई सारे संदेश भी भेजे हैं ममता जी। ये पहला संदेश कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आजकल गणेश उत्सव हर गाँव हर शहर में मनाया जा रहा है। गणेश जी की मूर्ति POP के बजाय मिट्टी से बननी चाहिए। विसर्जन के वक्त नदी तालाब जैसे खुले जल स्रोत की बजाय घर के बनाए कृत्रिम कुंड या टंकी में करें। होली के दिनों में

0: रासायनिक रंगों की बजाय प्राकृतिक हर्बल रंगों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और दिवाली पर बहुत प्रदूषण वाले फैलाने वाले पटाखे से बचना चाहिए। रोशनी के लिए तेल के दिए या मोमबत्ती का उपयोग कर सकते हैं।
1: और हमारी एक सखी हैं जिन्होंने ये बात लिखी है कि हम में से कितनों को ध्यान रहता है कि पूजा पंडाल में मिलने वाला प्लास्टिक की प्लेट में प्रसाद हमारे पर्यावरण के लिए कितना नुकसानदेह है। एक एक प्लेट करके कितने लाख प्लेट हो जाते हैं, इसका अंदाजा लगाया है किसी ने? होली के एक दिन पहले पेड़ों को काटकर अग्निदाह करना कितना उचित है? गणेश जी के आगमन के बाद और दुर्गा उत्सव में कितने पंडाल में मिट्टी की मूर्ति बैठी है, इसका तो अनुमान लगाना ही बहुत कठिन है। काश इंसान सोच पाते, जब एक पेड़ कटता है तब सिर्फ एक लकड़ी का लट्ठा नहीं गिरता, तब छिन जाता है पक्षियों से उनके घोंसले और हरे पत्ते की ताजगी भी। कहा जाता है कि हमें तो याद है कि बचपन में नानी दादी कहती थी कि जो पेड़ कटता है तो पेड़ कटते वक्त छाल से जो लिक्विड निकलता है ना, रसायन निकलता है, जिसको कि बचपन में इसी नानी दादी यही भाषा बोलती थी, वो देखो दूध निकल रहा है, ये दूध नहीं उसके आंसू हैं, पेड़ के आंसू।
0: जी,
1: तो ये अब कहाँ तक ये ठीक है, एक मिथ के रूप में हम मानते हैं जो भी वैज्ञानिक कारण है, लेकिन पेड़ को जब काटते हुए हम देखते हैं तो सचमुच बहुत तकलीफ होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और एक और ये संदेश कहता है कि हमें पटाखों, प्लास्टिक और अत्यधिक कचरे से बचते हुए प्राकृतिक और पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने चाहिए। स्वच्छ और हरित वातावरण के लिए त्योहारों को पर्यावरण से रक्षित इस तरह से बनाया जाए और हमारी खुशियों को और सार्थक इसी तरह से बन सकते हैं। एक और संदेश ये कह रहा है कि आजकल घरों पंडालों में प्लास्टिक के फूल और तरह तरह के सजावट के सामानों से अपने घर की और पूजा पंडालों की सजावट हम करते हैं और यह कचरा पर्यावरण के लिए और हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा है कि सजावट भी आप प्राकृतिक फूलों से करें, प्राकृतिक चीज़ों से करें, जैसे कि आम के या अशोक के पत्ते, प्राकृतिक बंधनवार, वो ही उसका ही इस्तेमाल करें और लाइटों की जगह छोटी छोटी मोमबत्तियाँ और दियों से हम घर को सजा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और जो पूजा सामग्री होती है, फूल माला जैसी जैविक सामग्री से खाद बनाई जा सकती है और बाकी सामग्री को अलग करके उचित तरीके से उसे निस्तारित कर लें। त्योहारों में जो कचरा होता है उसे कम करें और खुशी का मंत्र ज़्यादा अपनाएं, तो ये आपके लिए त्योहार उत्सव बना रहेगा, वरना फिर आपको एक समय ऐसा आएगा कि आपको दुख देने लगेगा।
0: जी बिल्कुल।
1: और अब बोलिए कि हमारे श्रोताओं को क्या खुशी दे सकता है
0: एक गीत को।
2: बिल्कुल कर लो।

0: बड़े गजब की बात।
1: ममता जी देखिए, सोशल मीडिया का एक फायदा भी है, हम यहाँ पर बातें करते हैं और तुरंत हमारे जो श्रोता हैं
2: प्रतिक्रिया
1: देते हैं और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, हमें भी पेड़ों को काटना बहुत दुख देता है, ये जो आपने बात अभी कही हमें बहुत दिल को भाई है, बहुत अच्छा लगा है।
2: तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी दिल को बहुत भाई
1: जी
2: कि आपने हमारी बात को ध्यान से सुना और त्वरित प्रतिक्रिया दी। और इसी तरह सोशल मीडिया के जो फायदे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए, सोशल मीडिया के नुकसान को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और फिलहाल हमें अपनी बातचीत को समेट लेना चाहिए
1: जी।
2: देखिए घड़ी की ओर, बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बताएं या गाना सुनवाएं, लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
2: सखी सहरी कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
3: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आप करते हैं हमें फोन और अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो देखते हैं कि आज पहले नंबर पर हमारे कौन श्रोता हैं जो बात करना चाह रहे हैं। कुछ श्रोताओं ने आज गणेशोत्सव पर बात की है, कुछ श्रोताओं ने अभियंता दिवस के बारे में अपनी जानकारी दी है, अपनी बात साझा की है। तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला फोन कॉल्स का। ये है आज का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, बुल्ढाणा महाराष्ट्र का।
0: जी बताइए दीपक जी, अपने बारे में जरा जानकारी दीजिए और बुल्ढाणा कहाँ पर महाराष्ट्र के किस इलाके में पड़ता है?
1: जी बुल्ढाणा विदर्भ में पड़ता है मैडम, अकोला बुल्ढाणा जालना जिला के बाजू में।
0: जी जी, तो अपने उस गाँव की कुछ खासियत बताइए ना।
1: जी हमारा खेड़ा गाँव है मैडम, छोटा सा, खेती किसानी करते हैं हम। साल किसान के बहुत हाल चल रहे, बारिश नहीं, इधर फसल आने के पहले बारिश गई है।
0: ओ, बारिश नहीं हो रही है और बहुत जगह पे तो बहुत ज्यादा असंतुलित बारिश हो रही है, बाढ़ आई हुई है।
1: जी हमारे तो, इधर नहीं मैडम, बारिश फसल नुकसान में इस साल।
0: ओ, तो कौन कौन सी फसल होती है आपके यहाँ?
1: या सोयाबीन होती है, मक्का, कपास होती है।
0: ओ, तो सबके लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है ना?
1: सबके लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, साल पानी बहुत कम गिरा।
0: जी जी,
1: इस साल परेशान है बहुत हम किसान।
0: हम शुभकामनाएं कर सकते हैं, शुभकामनाएं कर रहे हैं कि आपके तरफ क्या पूरे देश में संतुलित बारिश हो जाए ताकि फसलों को नुकसान ना पहुंचे। और क्या करते हैं फिर, खेती किसानी करते हैं तो अभी बाग वाग भी है आपके यहाँ?
1: नहीं, बाग नहीं लगाते मैडम, हम यही पारंपरिक पीक लगाते हैं, सोयाबीन, कपास।
0: अच्छा,
1: बाद में गेहूं हरभरा लगाते हैं।
0: जी जी, तो वैसे हर साल कैसे पैदावार होती है, हर साल अच्छी पैदावार हो जाती है?

0: दो दो फसल आ जाती है हर साल, जो भी आता है वो पहले सोयाबीन भी आती है
1: जी जी।
0: 19 से अच्छी बारिश रही इस साल तक,
1: तो बारिश अगर नहीं हुई है तो ट्यूबवेल वगैरह जो आधुनिक तकनीक है उससे पानी की व्यवस्था तो आपको करनी पड़ेगी ना, तो है वो सब तकनीक आपके?
0: ट्यूबवेल है तरफ, कुएं भी है हमारी तरफ, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण उसमें भी पानी आ रहा है।
1: बिल्कुल, उतना इफरात में पानी तो नहीं मिल पाएगा।
0: जी, जमीन की लेवल नीचे गई पानी की।
1: जी अच्छा बताइए, आप आज गाना कौन सा सुनना चाहते हैं?
0: गणेश उत्सव त्योहार चल रहा है, इसी अवसर पर मैं गाना सुनना चाहूंगा, हमसे बढ़कर कौन मूल का, देवा ओ देवा गणपति देवा।
1: जी जी, तो महाराष्ट्र में तो गणेशोत्सव की बड़ी धूम होती है, तो आपके घर में भी गणपति आते हैं या आपके घर के आसपास?
0: आते।
1: अच्छा,
0: नहीं आते हमारे गांव में, घर पर तो होता है गणपति, हर एक घर में होता है,
1: और इसी के बहाने लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं ना?
0: जी जी बिल्कुल
1: जी। तो चलिए फिर, आपका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमें फोन किया। अब आपकी पसंद का गाना सुनते हैं ये।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम जी, नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं और कहां से?
1: मैम तहसील ईसागढ़, जिला अशोक नगर, मध्य प्रदेश से विनोद नारायण कुशवा बोल रहा हूँ मैम।
0: जी विनोद कुमार जी, बताइए क्या हाल है मध्य प्रदेश का और आपका क्या हाल है?
1: बस राम जी की कृपा और आपका आशीर्वाद मैडम, बढ़िया है हालचाल। आज मैम हमारी बरसों बाद कॉल लगी है, कोरोना के बाद से आज कॉल लगाए मैम।
0: अच्छा, कोरोना के समय तो हेलो फरमाइश था ही नहीं, बंद हो गया था। आज
1: नहीं
0: अभी
1: नहीं
0: तो
1: और पहले भी आता था ना मैम अपना प्रोग्राम।
0: जी, तो चलिए आज लग गया है, तो बताइए अपने बारे में, बताइए क्या काम काज है आपका?
1: जी मैम हम खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने अभी गेहूं, मक्का और सोयाबीन लगा है और धान भी लगाई हुई है।
0: तो फसल अच्छी है?
1: जी जी बढ़िया है मैम, अभी तो अब आगे देखते हैं कैसे होगी, अभी तो फिलहाल में बढ़िया है, टॉप 10।
0: जी, तो बढ़िया। आपका गांव भरा पूरा गांव है, लोग कैसे हैं वहाँ के?
1: जी बहुत अच्छे है मैम। मैं थोड़ा हमारे अशोकनगर जिले के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा।
0: बिल्कुल दीजिए।
1: हमारे अशोकनगर जिले में एक गांव है करीला धाम, वहाँ पे रंग पंचमी के दिन बहुत ही बड़ा विशाल मेला लगता है जो कि अपने पूरे इंडिया में फेमस है और बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। वहाँ पे जानकी माता जी का मंदिर है और मतलब एक ही दिन में मैम 25 से 30 लाख श्रद्धालु दर्शन करके जाते हैं और अपनी मन मांगी दुआ पूरी होती है।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया बात बताई आपने, अच्छी जानकारी दी है। जो लोग सुन रहे होंगे आपकी बात तो वहाँ जाना चाहेंगे तो जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मैम, वो मेले तो बहुत लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य का मेला होता है ना वो हमारे अशोकनगर में लगता है जो कि पूरे अपने इंडिया में फेमस है। मेले तो मैम एक से बढ़ एक लगते हैं लेकिन जो राय नृत्य के लिए जाना जाता है ना वो सिर्फ अपने करीला धाम अशोकनगर MP में ही लगता है।
0: जी, तो मेले में और क्या क्या होता है? मेले में तो बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खरीदारी के लिए लोग जाते हैं, मेल जोल के लिए जाते हैं, तो आप मेला देखने किस लिए जाते हैं? हाँ
1: जी मैम हम भी जाते हैं, हमारे लोकल में तो हम कभी भी चले जाते हैं लेकिन जो मेले के समय में जाते हैं वो एक अलग ही बात होती है। और वहाँ की मेम जो अपन पूड़ी निकालते हैं ना, कढ़ाई होती है, तो ऐसी मान्यता है कि वहाँ से हम कढ़ाई लेकर आते हैं तो अब तेल कम जलता है हमें।
0: अच्छा ओके, और क्या क्या चीजें मिलती हैं कढ़ाई के अलावा? और क्या क्या चीजें मिलती हैं भाई? हमारे जो बचपन का मेला था ना, उसमें हमको तो बहुत सारी चीजें मिलती थी, खिलौने मिलते थे, किताबें मिलती थी, गुड़िया गुड्डे मिलते थे, और सबसे बड़ी बात वो जो बुड्ढी के बाल होते हैं ना, जिसको गुलाबी रंग का होता है, वो बहुत सॉफ्ट सा होता है, वो मिलता था, वो खाने हम जाया करते थे। तो आप बताइए अपने मेले का कुछ दिलचस्प अनुभव।
1: जी मैम मेले का अनुभव ये होता है कि जैसे हम पूरी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ जाते हैं तो किसी को टिक्की खानी होती है, किसी को चाट खाना होता है, किसी को कुछ गुड्डे गुड़िया खिलौने छोटे बच्चों के लिए लेना होता है,
0: तो
1: ये
0: टिक्की चाट,
1: बचपन की याद।
0: हाँ टिक्की और चाट अकेले खाते हैं कि अपने घर वालों को ले जाते हैं साथ में, उनको भी खिलाते हैं, दोस्तों मित्रों को
1: नहीं
0: भी खिलाते हैं?
1: मित्रों को भी खिलाते हैं, दोस्तों को भी, सभी बैठकर मिलकर एक साथ में खाते हैं तो वो आनंद ही कुछ अलग होता है मैम। ऐसे जब साथ में खाते हैं ना तो बचपन की यादें और भी ताजा हो जाती हैं।
0: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम फिल्म का नाम है अग्निपथ, श्री गणेशा देवा, श्री गणेशा देवा।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत कर रहे हैं खत्म और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो मैम
0: जी, आपका शुभ नाम और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम दोनों दोस्त है, परवनी से सतीश सावे मेरा नाम है और दोस्त का नाम वनरंग मोरे।
0: जी बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
2: फिल्म का नाम है लावारिस।
0: जी जी
2: तो ऐसे वैसे।
0: अच्छा, ये गाना सुनना चाहते हैं जी। अपने बारे में कुछ बताइए और अपने दोस्त जो जिनका नाम लिया उनके बारे में भी बताइए। कैसी है दोस्ती आपकी? कभी दोस्तों के बीच पटपट नहीं होती है?
1: हमारी पक्की है।
0: पक्की है? अच्छा, कैसे पक्की की दोस्ती? कुछ तकरार नहीं होती कभी?
1: हमारी दोस्ती हमारी 10 साल से है।
0: अच्छा,
2: विविध भारती की दोस्ती वैसा हमारी दोस्ती है।
0: जी जी, अच्छा,
2: जैसा रेडियो मित्र है वैसा हमारा मित्र है।
0: जी, और कुछ कहना चाहते हैं?
2: धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमें फोन किया।
2: पापा के शुभकामनाएं आपको, सबको जो श्रोता सुनने वाले उनको भी।
0: जी जी, आपको भी
2: विसर्जन विसर्जन के दिन अच्छा देखभाल करो, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है उनके ध्यान दीजिए क्योंकि आजू बाजू में गाड़े आते हैं।
0: विसर्जन पर ध्यान देने की बात जो कही आपने, बड़ी सही बात कही है कि उस समय एक जो निजी स्तर पर सोच होती है वो आपको ठीक रखनी चाहिए कि मान लीजिए विसर्जन हो रहा है तो उसमें बच्चों का ख्याल रखें और कोई बीमार मरीज है तो एम्बुलेंस है जा रहा है तो उसको रास्ता दीजिए, वो अपनी भीड़ से निकाल देना चाहिए ताकि कई बार जान को खतरा होता है तो उनकी जान बच जाए, है ना।
2: और बारिश तो नहीं गई गई लंबे बॉडी की तरफ जाना पड़ता है, वहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बच्चे छोटे छोटे बच्चे गणपति के साथ में ले जाओ मत, बड़े बड़े को एक दो अंदर उतर सकते हैं पानी में।
0: जी जी बिल्कुल। और अब सरकार की ओर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है कि आपको सीधे पानी में नहीं उतारते हैं, वो बाकायदा जगह जगह कुछ ऐसे गड्ढे भी बनवा देते हैं और वहीं एक सीमा तक जाने देते हैं, सीधे आपको पानी में उतरने नहीं देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना।
2: धन्यवाद धन्यवाद।

0: देखिए मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ, जिला बड़गाम में हमारा गांव पड़ता है। मैडम जी, आज जब से दोबारा हेल्थ फरमेश स्टार्ट हुआ था, आपके साथ दूसरी बार बात कर रहा हूँ ममता जी।
1: जी बहुत शुक्रिया, आपका शुभ नाम क्या है?
0: जी नहीं मलिक, मेरा शुभ नाम है, सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूँ।
1: तो सबसे पहले तो बड़गांव के बारे में आप जानकारी दीजिए। कश्मीर खूबसूरत वादियों की जगह है, जन्नत का सा नज़ारा है, तो हमारे श्रोताओं को बताइए बड़गांव के बारे में, वो कैसी जगह है, कहाँ पर?
0: सेंट्रल कश्मीर में, ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये सेंट्रल कश्मीर में पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा, कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे बड़गांव में ही मौजूद है। हमारा जो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर, वो भी हमारे बड़गांव में भी मौजूद है। और हमारा गांव सूफी शायर के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। और अच्छी बात यह है कि ये सेंटर श्रीनगर से मलाल चौक जो हमारे कैपिटल है वहां से मात्र 15 किलोमीटर दूर है।
1: जी,
0: और
1: अच्छा।
0: बड़गाम इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें बड़े बड़े गांव है, इसलिए इसका नाम बड़गाम रखा था।
1: अच्छा, क्या बात है भाई। तो वहाँ पहाड़ों के बारे में बताइए, कैसी पहाड़ियाँ हैं, बर्फ वगैरह गिरती है क्या?
0: बिल्कुल गिरती है। जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं टूरिस्ट पॉइंट के आसपास रहता हूँ, दूध पत्थरी एक मशहूर जगह है, उसी के आसपास रहते हैं। जंगल के किनारे है, बड़े बड़े पहाड़ है और बर्फ भी गिरती है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है जिस एरिया में मैं रहता हूँ।
1: जी जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर?
0: जी मैं बिजनेस करता हूँ, जैसे दीवारों पर पेंट वेंट लगाते हैं, सीपी के जो आइटम होते हैं जैसे बीप कॉक शावर होते हैं, वही बिजनेस में करता हूँ। अपने ही गांव में 2-4 शॉप है हमारे पास और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारा जो कारोबार बहुत अच्छा जा रहा है।
1: क्या बात है, बहुत बहुत दुआएं इस बात के लिए।
0: इसके अलावा क्रिकेट, और बचपन से लेकर अभी तक क्रिकेट खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट देखना मुझे बहुत अच्छा है, मूवी देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बचपन के शौक है।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये तो शौक बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो तो अपने मोबाइल के गेम में ही गुम रहना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर के स्क्रीन पर, वो खेलना नहीं चाहते, उनको बोला जाए तो भी नहीं जाते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं ये खेल वगैरह, इसकी कोई कोशिश करते हैं आप?
0: बिल्कुल करते हैं, क्योंकि आजकल पहले जमाने में नहीं, आजकल स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स टीचर अलग मिलते हैं और सरकार ने भी कदम उठाया तो बहुत अच्छा, इसमें हमारे बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा हो, क्योंकि जो आजकल जो नशीली दवा होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, इससे हमारे बच्चे दूर रहते हैं।
1: जी, और दूसरी बात ये कि यहाँ आपके इलाके में तो खुली वादियां हैं, खुली जगह है, वहाँ खेलने के लिए जगह भी मिलती होगी?
0: बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
1: तो कभी बर्फ गिरी हो और आप क्रिकेट खेलते रहे हो, ऐसा कोई अनुभव है?
0: बचपन में हमने खेला है, तो 2-4 बार हमने खेला है।
1: बारिश हो रही है,
0: बर्फ गिरी थी, हमने क्या किया, यहाँ बर्फ जमती है, बहुत ज्यादा जमती है, और उस पर पिच लगाना बहुत आसान होते हैं। फिर हम टेनिस बॉल उससे सबसे ज्यादा खेलते हैं उस बर्फ पे। बस उसमें क्या करते हैं, बर्फ को छोटे छोटे बॉल बनाते हैं और एक दूसरे पर
1: फेंकते हैं,
0: बहुत ज्यादा होती है।
1: क्या बात है, ये तो आप बचपन की बात बता रहे हैं। जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक, वो तो अभी जब जाते हैं घूमने के लिए तो वो बड़े भी खेलते हैं ऐसे बर्फ का गोले बना के एक दूसरे पर फेंकते, वही तो खेल का आनंद होता है बर्फीली वादियों में, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, मैंने देखा है 2-4 बार।
1: और अब तो उसे वीडियो बनाने के लिए भी ये किया जाता है, खेले चाहे ना खेले लेकिन वीडियो जरूर बनाते हैं लोग। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
0: क्योंकि मैं कश्मीर में रहता हूँ तो मैंने गाना भी वही चुना है। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, संजय कपूर वाली एक मूवी आई थी सिर्फ तुम, उदित नारायण की खूबसूरत आवाज, गाने के बोले पंची स्वर में गाते हैं, बावरे गुनगुनाते हैं।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश ममता दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मैं डिस्ट्रिक्ट चौराहे सुनारी असम से भाईकन मुंडा बात कर रहा हूँ।
0: भाईकन मुंडा
1: जी मैम।
0: अच्छा, कौन सी जगह?
1: चौराहे डिस्ट्रिक्ट सुनारी असम।
0: जी जी, जरा उस जगह के बारे में बताइए, आप जहाँ से बोल रहे हैं।
1: जी मैम, यहाँ तो मौसम अभी सुहाना है, अभी तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, धान खेती का ये अभी है ना, और चाय बागान है।
0: चाय बागान देखने में बड़ा अच्छा लगता है दूर दूर से, लेकिन उसकी सुना है कि उसकी पत्तियां काटने में बहुत टाइम लगता है, तो आपने ये काम किया है कभी?
1: हाँ हाँ, मैं चाय पत्ती का पहले चाय पत्ती को तोड़ के उसको फैक्ट्री मतलब कारखाने में उसको लेके जाता है, फिर इसको प्रोसेस रहता है मैम वो चाय पत्ती बनाने का।
0: जी
1: तो
0: जी,
1: उसमें मशीन में डाला जाता है।
0: हाँ,
1: फिर इसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर चाय पत्ती बन के रेडी होता है, फिर इसको पैकिंग किया जाता है, ऐसा है।
0: और लोग फिर चाय का स्वाद लेते हैं, और
1: जी जी मैम,
0: स्वाद लेते हैं, तलब भी होती है। वहाँ का एक नृत्य बहुत मशहूर है, आपको पता है कौन सा?
1: यहाँ तो बिहू। हाँ मैम, बिहू बिहू तो यहाँ का मतलब बिहू ही तो असम का जातीय उत्सव बोलते हैं ना हम लोग।
0: जी, तो कौन से उत्सव पे ये नृत्य किया जाता है?
1: मैम देखिए, यहाँ तो बिहू नृत्य, बिहू जो है वो बैसाख महीने में ये होता है मैम, पहला बैसाख से ये महीने भर चलता है।
0: जी जी, तो आप बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मैम, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, उसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। और मैम आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही, पहली बार कॉल लगा है मेरा, बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आज कॉल लगा है तो बहुत खुशी हो रही।
0: बहुत खुशी हमें भी हो रही है। अब बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं आपको कि आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपके पसंद का ये गाना चोरी।

0: हेलो।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
0: जी बेमेतरा छत्तीसगढ़ की हसीन वादियों से योगेश जांगड़े बोल रहे हैं।
1: जी भाई, छत्तीसगढ़ की हसीन वादियाँ मतलब कैसी हैं वहाँ पर? क्या पहाड़ी इलाका है क्या ये? वो तो
0: जो बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र है ये वनांचल क्षेत्र है,
1: जी जी अच्छा
0: तो पर्वत पहाड़ तो मतलब काफी है, जंगल है, घना जंगल कह सकते हैं। और जब वहाँ घूमने भी जाना होता है तो वो रास्ते में ही इतना मजा आ जाता है कि क्या कहें।
1: बहुत बढ़िया। तो आप वहाँ के जंगलों के बारे में जरा कुछ बताइए।
0: काफी घना जंगल है और वहाँ जाते हैं तो जो चित्रकूट और तीरथगढ़ का जो जलप्रपात है वो काफी मनोरम है और रास्ते काफी मतलब जैसे सर्पाकार नहीं होते
1: अच्छा
0: उसी तरह से काफी मतलब मुश्किल भी है ऐसा कह सकते हैं,
1: जी जी
0: लेकिन आनंद भी बहुत आता है।
1: छाया दिखती होगी और वो जो
0: जी
1: एक समय ऐसा लगता है कि अब रास्ता बंद हो रहा है लेकिन पता चला कि
0: जी
1: वहाँ से एक रास्ता खुल जाता है। तो
0: जी
1: जंगलों में जाते हुए जो इस तरह से दिखाई पड़ते हैं रास्ते, वो बड़े लुभावने और सुहावने लगते हैं। एक
0: जी
1: वहाँ सतपुड़ा के घने जंगल कितनी दूर है वहाँ से
0: बहुत
1: जंगल?
0: दूर है हमारे यहाँ से।
1: अच्छा, सतपुड़ा
0: हाँ
1: के घने
0: जी
1: जंगल पर एक भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भी है जो बिल्कुल
0: जी
1: वो दृश्य पैदा करते हैं। वो जैसे सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल, याद है आपको ये
0: जी
1: कविता?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से तो कविताएं हमने पढ़ी भी हैं और अभी तो आज ये हिंदी दिवस भी मनाए हैं तो काफी अच्छा लगता है संगीत से जुड़ना, कविताओं से जुड़ना।
1: आगे की पंक्तियां कुछ
0: जी
1: याद है भवानी प्रसाद मिश्र की इस कविता के? झाड़
0: नहीं
1: ऊंचे,
0: वैसे तो याद
1: इस
0: नहीं
1: तरह से
0: होगी।
1: कुछ है, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख भींचे, घास चुप है, काश
0: जी
1: चुप है, मूक शाल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें। ऐसे पूरे लगता है कि हवा जंगल में आ रही है, हवा को भी आने की आने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है, मतलब पूरा जंगल का दृश्य उपस्थित किया है। तो
0: बिल्कुल
1: मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों को इस तरह की कविताएं बतानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, उन कविताओं के बारे में
0: बिल्कुल
1: बताना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: जब खास तौर से जब ऐसे जंगल की ओर, जंगल की सैर के लिए जाते हैं तो, है ना? एक बात और कहनी थी कि ये जो
0: जी।
1: जंगल है, जंगल की खूबसूरती है, इसको बचाए
0: हाँ
1: रखने के लिए हम सबको क्या कुछ करना चाहिए?
0: देखिए, जंगल तो हमारे राष्ट्रीय संपत्ति है और जो हमारा मानव जीवन ही नहीं मतलब जो हमारा पूरा पृथ्वी जगत कह सकते हैं जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे सारी चीजें आती हैं, तो बचाने के लिए तो यही है कि जंगलों के कटाव को रोके और जो बहुत ज्यादा हम अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए जंगलों का जो काटने का काम कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इनको बचाना जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और नए पौधे रोपने चाहिए, ये नहीं कि बाप
0: बिल्कुल
1: दादा ने
0: बिल्कुल
1: जो लगा दिए हैं, जो पेड़ आम के पेड़ लगा दिए हैं, बस वही आम खा रहे हैं, वही जामुन खा

0: नए पेड़ भी लगाने चाहिए ताकि जंगल की संपदा हमेशा बनी रहे, हरी भरी बनी रहे, है ना
1: बचपन बचपन में हमने लगभग 20 पेड़ लगाए थे तालाब के किनारे किनारे,
0: जी?
1: और वो पेड़ तो आज बहुत वृहद हो गए हैं, लगभग 20 से 25 साल के।
0: जी बहुत बढ़िया। और रोज नहीं तो किसी खास मौके पर एक एक पेड़ रोपते रहें तो कितने सारे हो जाएंगे। और क्या काम काज है आपका?
1: हमारा प्रमुख रूप से खेती बाड़ी का काम है।
0: अच्छा, तो कौन सी फसल उपजती है वहाँ पर?
1: अभी तो धान बहुत आयत है और छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा भी कहा गया है।
0: बिल्कुल। और वहाँ के चावल बड़े खुशबूदार होते हैं, बड़े सॉफ्ट
1: जी जी
0: और मिठास होती है उनमें। कौन कौन
1: जी
0: से चावल पैदा होते हैं?
1: बासमती, ये जो मिठास की अब बात की है वो है, और हमारे इलाके में सरना और महमाया ये दो किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं।
0: जी। तो अब बताइए आपको गाना कौन सा सुनवाया जाए?
1: फिल्म कलाकार से सुनवा देंगे, नीले नीले अंबर पर चांद जो आए।
0: बहुत बढ़िया बातचीत कही आपने। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, मैं हेलो फरमाइश से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हेलो फरमाइश में ही आपका फोन लगा है, बताइए आप
1: जी
0: कौन बोल
1: बहुत,
0: रही।
1: मैं नेहा तिवारी छतरपुर से बोल रही हूँ,
0: जी बताइए
1: और
0: नेहा जी।
1: बहुत मशक्कत के बाद मुझे आपका फोन लगा है
0: जी
1: विविध
0: जी
1: भारती में।
0: जी बहुत शुक्रिया कि आपका फ़ोन लगा और स्वागत है इस प्रोग्राम में। बताइए, आप छतरपुर से बोल रही ना?
1: जी जी जी जी छतरपुर से बोल रही हूँ।
0: छतरपुर के बारे में बताइए और नेहा जी अपने बारे में बताइए।
1: जी मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से,
0: जी
1: और छतरपुर हमारा बहुत ही जो एक विरासत है चंदेला राजाओं के द्वारा बनाई गई खजुराहो, वो करीब मेरे छतरपुर से 50 किलोमीटर दूर है, जो कि विश्व प्रसिद्ध संरक्षित स्मारक है। और उसके निर्माण में भी बहुत सारे कारीगर इंजीनियर ने योगदान दिया है।
0: देखिए नेहा जी, आप इंजीनियर हैं पेशे से और ये बात बता रहे हैं कि बहुत सारे इंजीनियर्स का योगदान है इस जगह के बारे में। तो जो हम बात कर रहे हैं ना, जिन ध्वनि तरंगों के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपसे, यहाँ भी इंजीनियर का

0: बहुत बड़ा योगदान है। हम तो ये कहेंगे कि अगर इंजीनियर का योगदान नहीं रहे तो ये जहाँ रेडियो जो चैनल है, जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो फिर कैसे होगा। आप चूंकि पेशे से इंजीनियर हैं तो आप कुछ बोलेंगे, आप कुछ कहेंगे।
1: हम जो देश के महान इंजीनियर और भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के जन्मदिन की याद में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है और यह भारत रत्न उनके मेहनत को सम्मानित करने के लिए यह दिन तय किया गया था।
0: जी जी,
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी ने कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध और बाढ़ सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य किए।
0: जी जी,
1: और श्री विश्वेश्वरैया जी के बारे में क्या कहें, उनकी इतनी उपलब्धियां इस आधुनिक भारत को है, इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा जाता है।
0: नेहा जी, हमें बताइए कि अब जो जमाना है, बिल्कुल तकनीक का ही जमाना कहा जाता है इसे, और जो नई पीढ़ी आ रही है तकनीक से ही जुड़ी हुई है, तो तकनीक का जो उपयोग भी होता है, सदुपयोग कई बार दुरुपयोग भी होता है, इस पर आप कुछ कहेंगे कुछ।
1: जी, किसी भी चीज के सदुपयोग और दुरुपयोग को ही आप वरदान या अभिशाप कह सकते हैं। तकनीक के क्षेत्र में भी यही है। तकनीक का इस्तेमाल यदि हम अच्छी बातों के लिए, जैसे हम मसलन आजकल की युवा पीढ़ी यूट्यूब रील्स इत्यादि कई चीजों में उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और कई बार उन्हीं चीजों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। तो यही है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। विज्ञान अभिशाप और वरदान इसी रूप में है, इसी तरह से तकनीक भी अभिशाप और वरदान इसी रूप में है।
0: अच्छा नेहा जी, ये बताइए कि चूंकि आप इंजीनियर हैं तो आपने, और आकाशवाणी में इंजीनियर हैं, तो क्या नई तकनीक आपने लाई है, मतलब आपको क्या लगता है कि इन दिनों नई तकनीक क्या क्या आई है, कुछ परिवर्तन के बारे में बताइए ना।
1: जी, जब मैंने इस विभाग में अपनी सेवाएं देने शुरू की थी तब एक बहुत ही सारी चीजें मैकेनिकल हुआ करती थी, रिकॉर्डिंग से लेके एडिटिंग से लेके, और मैकेनिकल हुआ करती थी जो कि काफी वक्त और गुणवत्ता में भी उतनी उत्कृष्ट होने में काफी समय लेती थी। पर नई तकनीक की वजह से हार्ड डिस्क कंप्यूटर सिस्टम में रिकॉर्डिंग होने की वजह से, और अभी तो हमारे पास AI है, अभी हमारे पास प्रसारण में भी हमारे पास अपना वेब ऐप है और हमारे पास न्यूज ऑन एयर ऐप है, तो इन सब गुणवत्ता बढ़ने से तकनीक में करीब करीब मैं बता रही हूँ कि 360 डिग्री जो हुआ है, परिवर्तन हुआ है।
0: जी, बहुत बढ़िया बात कही। अब बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाया जाए।
1: जी, मैं एक इंजीनियर हूँ और मुझे इंजीनियर से जुड़ा एक गाना बेहद पसंद है, जब आओ लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल।
0: क्या बात है,
1: थिंग इडियट का गाना है और मुझे बेहद पसंद है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें फोन किया। अब हम बातचीत को दे रहे हैं विराम और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होटो को करके गोल,

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश दीदी, आपको प्यार भरा नमस्कार। ममता दीदी को प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी विविध भारती परिवार की ओर से। बताइए आपका नाम क्या है?
1: जी मैं अशोक कुमार प्रजापति करौता लोहता वाराणसी से।
0: जी अशोक प्रजापति जी, बताइए क्या हाल है, वाराणसी का क्या हाल है?
1: वाराणसी का हाल चाल दीदी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है।
0: वो जो बनारस में गंगा आरती होती है शाम को, उसके बारे में बताइए जरा।
1: जी हाँ, गंगा आरती के बारे में आपने कहा तो दफा सुमे घाट पर हमारे कनमदे आरती कनमदे होता है 7 बजे से।
0: हाँ।
1: आरती बहुत बढ़िया होता है और दुकानदार और हम लोग समय से पहुंच जाते हैं वहाँ पर और देखने के लिए तो हम लोग जगदे करते हैं मैम, और बहुत बढ़िया ढंग से होता है और हाथ जोड़ के सभी लोग खड़ा रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं।
0: भाई उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और वहाँ बनारस की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है जब गंगा जी में जैसे सूरज बिल्कुल उगता है पानी में से, ऐसा दृश्य होता है। तो वो दृश्य हमने तो नहीं देखा लेकिन लोग बताते हैं, आपने देखा है कभी?
1: जी नहीं कहना, हमने देखा नहीं है, हम तो जाते हैं देखे हैं, ये बात नहीं है समय से।
0: हाँ
1: तो सच बात है कि हम लोग जब जाते हैं, जैसे विश्वनाथ जी गए और गंगा जी घूमने गए और समय के हिसाब से अगर आरती के समय से हम लोग जाते हैं तो जैसे तर्तीवार हो गया तो तब ठीक है, पहुंच गया, बड़ा बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं।
0: सही बात है, बनारस की चाट बड़ी मशहूर है, बनारस का पान बड़ा मशहूर है, अब हम ही सब बता देंगे, आपको कुछ बताएंगे?
1: जी बनारस के तो आपने पान के बारे में ये बात कही है ममता दीदी, की हकीकत सच बात है कि हर व्यक्ति के मुंह में जो उम्र हो जाती है, छोटे बच्चे तो नहीं 18 साल से चालू कर लेते हैं पान खाना, और जो और पान भी खाएंगे और काम धंधा में अपना व्यस्त रहेंगे।
0: और वहाँ की गलियाँ पतली पतली सकरी सकरी गलियाँ।
1: हाँ ये तो पतली पतली जो गलियां है, जैसे कि कचौड़ी गली में है।
0: हाँ।
1: और जैसे कि बहुत दूर से कचौड़ी गली में हिलते ही मतलब खोआ मंडी में जैसे एक अजीब सा महक आती है कि हमने कचौड़ी गली आ गया।
0: अच्छा कचौड़ी गली का नाम लिए, सुनिए कचौड़ी गली का नाम लिए, कचौड़ी गली का एक लोकगीत में भी आ गया है वो कचौड़ी गली, याद है क्या वो गनवा आपको?
1: जी जी जी
0: याद है तो सुनाइए जरा।
1: जी नहीं हम गा सकते,
0: नहीं गा सकते,
1: नहीं नहीं गाना तो देखिए कचौड़ी पर जो आपने बात कहा है कि हाँ। गाना आ गया तो हमने सुना नहीं है दीदी, देखिए बात जो हकीकत है।
0: हाँ।
1: तो कचौड़ी गली जो हम लोग के बाप दादे से सब बहुत सदियों से ये है का नाम है, हम लोग की पैदाइश नहीं हुई थी तब भी कचौड़ी गली हम लोग जब जानकार हुआ तो हम लोग भी जब बनारस जाने लगे तो बाऊ जी से पूछने लगे पिताजी से कि ये कचौड़ी गली कौन सा होता है, कल कचौड़ी हुआ मैसूर है, कचौड़ी इतना अच्छा बनता है स्वाद, हो सकता है शायद विश्वनाथ जी के दुआ है कि कनमरे जय संकट मोचन का भगवान श्री राम जी का जो भी है, सचमुच है कि कचौड़ी ऐसा नहीं बन पाता,
0: कहीं नहीं मिल पाता, वो स्वाद नहीं मिल पाता, और जो बनाते हैं उनके हाथ की भी प्रशंसा की जानी चाहिए कि जो
1: हाँ।
0: मनोयोग से बनाते होंगे वो एक अलग तरह का स्वाद होता है और फिर वो जगह प्रसिद्ध हो जाती है। तो अलग तरह की बात है कि कचौड़ी के नाम से वो गली मशहूर हो गई है, और छोटे शहरों की ये खासियत है कि पान वाली गली और कचौड़ी गली और जो खस्ता दमालू वाली गली, इस तरह से नाम जो मशहूर हो जाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। किसी
1: हाँ।
0: व्यक्ति के नाम से मशहूर होते हैं, किसी महापुरुष के नाम से जगह वो मशहूर हो जाती है, वो जगह उसकी एक अलग तरह की खासियत होती है ना। और कौन कौन से घाट वहाँ के मशहूर हैं?
1: हाँ तो जी जैसे कि दशाश्वमेध घाट से 80 घाट, इतना घाटे सब एक एक घाट जुड़ा हुआ है, सब हम लोग जब जाते हैं ना हम लोग को खुद नहीं पता चलता कि ये घाट तो हमने 10 मीटर चले फिर 10 मीटर चले फिर 20 मीटर, सब घाट ही घाट घाट ही घाट, तो इसीलिए 180 घाट उसको माना जाता है।
0: जी जी
1: 180 घाट सब जुड़ा हुआ है
0: बिल्कुल। अच्छा बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी गाना जरूर सुनना चाहते हैं

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, ममता जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी बताइए, उज्जैन के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बताना चाहेंगे, उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है
0: जी,
1: जो बिल्कुल शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। और बताना चाहेंगे, यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। सिंहस्थ का मेला भी 2028 में लगाया जाएगा यहाँ पर।
0: अच्छा, और आपका क्या
1: जी
0: काम
1: हाँ,
0: काज है?
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ ममता जी, और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अरे वाह, गायक है, भजन गायक, तो कुछ गा के सुनाइए।
1: हाँ जी हाँ, उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, हमारे 8 लोगों का ग्रुप है, उसमें हम 4 लोग आने वाले हैं। दो हारमोनियम बजाते हैं, ढोलक और एक तबला बजाते हैं।
0: तो आप हारमोनियम बजा के गा
1: हाँ
0: लेते
1: जी,
0: हैं कि सिर्फ गाते हैं? हारमोनियम कोई और संगत करता है।
1: मैं गाने का काम करता हूँ
0: तो ये
1: जी।
0: कुछ गाने के लिए सीखा आपने कि बस ऐसे गाते गाते शुरू हो गए?
1: हाँ बस, कहीं सीखा तो नहीं ममता जी, बस मोबाइल पे या ऐसे जो रिकॉर्ड होते हैं ना, उनको सुन सुन के मतलब सीखे हैं हम 2019 में, जब कोरोना टाइम आया था उस समय पर।
0: अच्छी बात
1: हाँ
0: है।
1: जी, हमारे गुरु जी है, वो हमें सिखाते हैं। निर्गुणी भजन की प्रस्तुति भी हम देते हैं ज्यादातर, और भजन कीर्तन का प्रोग्राम भी करते हैं।
0: जी, बड़ा बढ़िया लगता है भाई। अब तो जैसे समय लोगों के पास कम होने लगा है, कीर्तन वाला तो जैसे युग ही खत्म हो रहा है, बहुत कम बचे हैं लोग जो कीर्तन गाते हैं। नहीं तो बाकायदा कीर्तन गाने के लिए बुलाया जाता था लोगों को घरों पर भी।
1: हाँ बिल्कुल, ऐसा तो हमारे इधर भी ममता जी ऐसा ही है। किसी बच्चे का बर्थडे हुआ या कोई धार्मिक फंक्शन होता है ना प्रोग्राम, उन लोग उनके मतलब यहाँ पर हमें बुलाया जाता है।
0: अच्छा।
1: और हर मंगलवार, और तो ऐसा जो मंगलवार के दिन तो हमारा प्रोग्राम फिक्स होता है हमारे मंदिर पर।
0: तो किन
1: जी
0: कवियों की रचनाएं आप गाते हैं ज्यादातर जो भजन गाते हैं?
1: ज्यादातर तो हाँ बिल्कुल बताना चाहेंगे, ज्यादातर तो हम प्रहलाद सिंह टिपानिया जी के भजन गाते हैं, निर्गुणी भजन। और एक और भजन आते हैं यूट्यूब पर राजू दास जी के, उनके भी मतलब हमने भजन काफी गाए हुए हैं।
0: जी, प्रहलाद सिंह टिपाणिया तो जब गाते हैं तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। तो अब जरा
1: हाँ जी
0: अपने
1: बिल्कुल
0: अपने हुनर के बारे में बताइए, आप जरा गा कर सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी।

0: तारे तू। जी ममता जी,
1: जी बहुत बढ़िया आपने गाया, और हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे, भाई जिनके पास ये कला होती है वो बड़े खुश रहते हैं जब आपका मन थोड़ा बहुत दुखी

0: यो उदास हो तो आप गाकर खुद को हील कर सकते हैं, खुद को आप खुश कर सकते हैं ना। तो
1: जी
0: अब
1: बिल्कुल
0: कौन
1: मुग्धा जी,
0: सा?
1: और बताना चाहूंगा मैं,
0: हाँ
1: उससे पहले बताना चाहूंगा मैं मोबाइल ऐप पे विविध भारती के कार्यक्रम सुनता हूँ और सखी सहेली हेलो फरमाइश पिटारा के तहत आने वाले सभी कार्यक्रम को सुनता हूँ और बड़े ध्यान से सुनकर मतलब कुछ ऐसे बातें होती है ना उन्हें नोट भी करता हूँ।
0: जी, बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। फिलहाल बताइए अभी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जी फिल्म का नाम है इतिहास और गाने के बोले जुदा अपने दिलबर से होने लगी है।
0: धन्यवाद, आपने हमें फोन किया और इतनी सारी बातचीत की। अब बातचीत को दे रहे हैं विराम, आपको सुनवा रहे हैं ये।

दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमें कृपया अगली बार 2 महीने बाद फोन करें। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से। रिकॉर्डिंग के लिए हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2867-0288, दूसरा टेलीफोन नंबर है 4002466। मुंबई का STD कोड है 022, और जब भी आप फोन नंबर डायल करें उससे पहले मुंबई का STD कोड 022

0: जरूर डायल करें। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सौरभ घारू, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो, फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए।

0: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 5 बजने को है अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का सामना करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने कहा कि एक ओर भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत पर वैश्विक भरोसा भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज थिम्फू में भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति और समृद्धि के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री ने श्री तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ई वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान को सहयोग कर रहा है। भारत ने आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने

पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ठिकानों और अमेरिका में 11 सितंबर के आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार अलकायदा के बीच सीधा संबंध बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से 11 सितंबर के हमलों के पीड़ितों को याद करने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंकरोधी अभियान में 2 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7:30 बजे से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाए हुए है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: डॉक्टर साहब, मीनू बिटिया को अक्सर चक्कर आते रहते हैं, थकान भी बहुत लगती है, इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे ही रहते हैं, देखो ना कैसी पीली पड़ गई है।
1: इसे एनीमिया है, इसके शरीर में आयरन की बहुत कमी है। इसे पूरा करने के लिए चुकंदर, टमाटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियों को लोहे की कढ़ाई में बनाकर खिलाओ, और अभी कुछ दिनों के लिए आयरन की टैबलेट भी खिला सकती हो।
0: जी डॉक्टर साहब,
1: सिर्फ इसे नहीं, सभी को एनीमिया से बचने के लिए ख्याल रखना चाहिए।
2: नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन।

0: नई सोच, नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस, शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
2: शुद्ध आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्मी भजन।

अभी आप सुन रहे थे भजन आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:25 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम युवा मंच।

युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के युवा मंच कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ नर्मदा शर्मा। तो आप जानते हैं आज है गुरुवार यानी थर्सडे। तो आज के दिन हम बात करते हैं विज्ञान जगत पर और साथ ही आपको सुनवाते हैं रोजगार समाचार भी। तो ये सब तो हम आपको सुनवाते ही हैं, साथ में होता है आपका मनोरंजन मधुर से गीतों के साथ। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

0: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल। और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
1: सावधान, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, नेवला या किसी भी जानवर के काटने को कभी हल्के में न लें। रेबीज का वायरस जानवर की लार से फैलता है और समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है।
2: घाव को तुरंत बहते पानी के नीचे साबुन से झाग बनाकर पूरे 15 मिनट तक धोए, फिर एंटीसेप्टिक या स्पिरिट लगाएं। इससे रेबीज का वायरस नष्ट हो जाता है।
1: फिर बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल जाएं। रेबीज से बचाव का टीका सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है।
2: रेबीज जानलेवा है लेकिन समय पर टीकाकरण से बचाव संभव है।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: तो युवा साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से युवा मंच कार्यक्रम में। और आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश में रोजगार और भर्ती से जुड़े कुछ समाचारों पर। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती की। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने के बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने आवेदन किया है। ये भर्ती प्रदेश के युवाओं के लिए सुरक्षा सेवाओं में करियर बनाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। शिक्षक क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HP TET नवंबर 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 3 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकते हैं और लेट फीस के साथ आवेदन की सुविधा 8 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा का आयोजन 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2026 के बीच किया जाएगा। प्रदेश में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए ये एक महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में प्रशासनिक, वित्तीय और अन्य सेवाओं से संबंधित भर्तियों की प्रक्रियाएँ भी समय समय पर जारी

की जा रही हैं, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से भर्ती विज्ञापन, परीक्षा कार्यक्रम और परिणाम संबंधी सूचनाएं देखते रहें। तो और भी बात करेंगे इस विषय पर, एक ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं एक गीत।

0: कि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवा मंच। हम बात कर रहे हैं रोजगार समाचार पर। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट भर्ती 2026 के लिए क्लर्क, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, चपरासी, चौकीदार आदि के 388 पदों पर भर्ती निकली है। 10वीं 12वीं पास और स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जल शक्ति विभाग की बात करें, जूनियर ड्राफ्ट्समैन सिविल के 7 पद जॉब ट्रेनी आधार पर भरे जा रहे हैं। चयनित उम्मीदवारों को 15,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

स्वागत है आपका युवा साथियों, एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं रोजगार समाचारों पर। स्वास्थ्य विभाग प्रदेश में 194 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति तैनाती की गई है, जिसमें 76 जॉब ट्रेनी भी शामिल है। कैबिनेट स्तर पर भर्ती स्वीकृतियां, स्वास्थ्य शिक्षा और अन्य विभागों में बड़ी संख्या में पद भरने के निर्णय लिए गए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं, तो युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रक्रिया जारी है, तो आप भी वेबसाइट पर जाकर ये आवेदन आप देख सकते हैं और भर सकते हैं।

तो युवा साथियों, युवा मंच कार्यक्रम में अब समय हो रहा है हमारे खास सेगमेंट का, विज्ञान जगत के बारे में जानने का। तो नासा से स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक बेहद विशाल और नया क्रेटर यानी गड्ढा खोज निकाला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये क्रेटर रोम के मशहूर कोलोसियम स्टेडियम से भी बड़ा है और इसकी चौड़ाई लगभग 728 फुट है। ये खोज चांद के इतिहास को समझने में हमारे वैज्ञानिकों की बहुत मदद करने वाली है। बात करते हैं पर्यावरण और हमारी सेहत की। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सोलर पावर्ड सिस्टम तैयार कर लिया है जो समंदर के खारे पानी को पीने लायक मीठे पानी में बदल देगा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस तकनीक में हानिकारक केमिकल या लिक्विड वेस्ट नहीं निकलता, बल्कि बचा हुआ नमक सीधे ठोस रूप में बाहर आ जाता है। डायनासोर प्रेमियों के लिए एक चौंकाने वाली खबर हम आपको बताते हैं। तंजानिया में मिले 240 मिलियन साल पुराने एक जीव के जीवाश्म ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस नई खोज के बाद अब वैज्ञानिक डायनासोर के शुरुआती समय की टाइमलाइन को फिर से समझ रहे हैं, यानी हमारी किताबों में जो इतिहास दर्ज किया था वह शायद थोड़ा बदलने वाला है। ब्रह्मांड की एक और दिलचस्प थ्योरी सामने आई है। नए शोध से ये पता चला है कि कभी हमारे पड़ोसी ग्रह वीनस यानी शुक्र के पास भी अपना एक चांद हुआ करता था, लेकिन वीनस की बहुत धीमी जो गति है यानी स्लो रोटेशन के कारण वह चांद धीरे धीरे ग्रह के करीब आता गया और

पर अंततः वीनस ने उसे अपने अंदर ही समाहित कर लिया था। एक गर्व की खबर, हमारे देश से भारत में सेमिकॉन इंडिया 2026 का शानदार आयोजन हो रहा है और इस क्षेत्र में देश तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। गुजरात अकेले ही भारत के 12 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से 6 की मेजबानी करने के लिए तैयार है। ये तकनीक हमारे स्मार्टफोन से लेकर इसरो के स्पेस मिशन तक को स्वदेशी ताकत देगी। तो चलिए अब सुनते हैं एक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा मंच, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। आइए सुनते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

तो श्रोताओ, शाम 6:05 पर आप सुनेंगे सुरमई सांझ में सदाबहार गीत। मौजा ग्राइंड कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:30। विविध संगीत का कार्यक्रम सबरस आपको सुनवाया जाएगा रात्रि 8:00। एक ही कलाकार शीर्षक में अभिनेत्री शबाना आजमी पर फिल्म आए कुछ चुनिंदा गीत आपको सुनवाए जाएंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे फिल्मी और गैर फिल्मी गजलें, कार्यक्रम रहेगा रंगे गजल। हिमाचली गीत व लोकगीत आप सुनेंगे रात्रि 10:00 और रात्रि 10:30 पर पुरानी फिल्मों से गीत, कार्यक्रम रहेगा चित्रपट संगीत। आकाशवाणी शिमला से शाम 6:00 और 7:45 पर प्रादेशिक समाचार और रात्रि 7:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी आकाशवाणी के शिमला केंद्र से ही रिले किया जाएगा। आकाशवाणी दिल्ली से शाम 7:00 हिंदी में समाचार, 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, रात्रि 9:00 News@9, रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही रिले किए जाएंगे। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के 6:00 को है, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते को लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है और इसका श्रेय प्रदेश की जनता और कांग्रेस सरकार को जाता है। हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के रैल में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत प्रदेश को बिना अतिरिक्त निवेश किए करीब 1500 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किशाऊ परियोजना को लेकर 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई और वर्तमान राज्य सरकार ने हिमाचल के हितों को सुरक्षित करना सुनिश्चित किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों और विधायकों पर प्रदेश के हितों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी पैरवी नहीं करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश विकास के मामले में 4 दशक पीछे चला गया है और विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिया जा रहा है और इसके बावजूद भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रतिशोध की भावना से काम करने और भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और पंचायती राज चुनाव में जनता ने सरकार को उसकी नाकामी का आईना दिखा दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया।
1: हिमाचल प्रदेश इन 4 वर्षों में एक तरह से 4 दशक पीछे चला गया, विकास कार्य पर पूर्ण विराम है। हैरानी हमको इस बात को लेकर के है कि ऋण तो लिया जा रहा है, विकास कार्य ठप पड़े, संस्थानों को बंद किया जा रहा है, योजनाओं को बंद किया जा रहा है, आखिर पैसा लग कहां रहा है? प्रतिशोध की भावना के साथ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनाव का परिणाम आया, उसकी एक झलक आप देखें। लोगों ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और प्रचंड बहुमत के साथ बनने वाली है।
0: सोलन जिला में अर्की के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आज से राज्य स्तरीय सायर मेला शुरू हुआ। स्थानीय विधायक संजय अवस्थी ने पारंपरिक पूजा अर्चना के साथ इस 3 दिवसीय सायर मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सायर उत्सव की अपनी विशिष्ट पहचान और परंपरा है, जिसे संरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अवस्थी ने कहा कि युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़ने के लिए इस प्रकार के आयोजनों को निरंतर बढ़ावा देना आवश्यक है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हल्का हिमपात हुआ है। वर्षा व हिमपात से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में करीब 14,551 फुट की ऊंचाई पर स्थित डिलब्रूरी परिक्रमा के दौरान बर्फबारी के चलते फिसलन के कारण 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
2: करीब 300 श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ठंड, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और फिसलन के कारण 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई।

0: गई, वहीं कई श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। फिसलने और ऊंचाई से संबंधित परेशानी के कारण घायल श्रद्धालुओं का केलंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति शिवानी महला ने यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं के मौत और 1 श्रद्धालु के घायल होने की पुष्टि की है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए जिला पुलिस ने 3 टीमें तैनात की है। उन्होंने बताया कि करीब 30 श्रद्धालु अभी भी पुलिस टीमों के साथ वापस लौट रहे हैं। खराब मौसम के बीच बचाव दल श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से सुरेंद्र कुमार।
1: उधर चंबा जिला की मणिमहेश डल झील के समीप 4 इंच जबकि गौरीकुंड में 3 इंच हिमपात दर्ज किया गया। इसके अलावा चंबा को पांगी से जोड़ने वाला साच पास भी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं। चंबा के अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम को देखते हुए ही यात्रा पर आने की अपील की है। आकाशवाणी शिमला से प्रातः 9:20 पर प्रसारित होने वाला समाचार बुलेटिन कल 18 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक प्रातः 9:50 पर प्रसारित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सुरमई सांझ।
1: पल भर के
0: कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं फिल्म जॉनी मेरा नाम से। गायक

किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाज़ों में एक ये गीत अभी आप सुन रहे थे। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है और फिल्म है जवान मोहब्बत।

0: सोच नई पहचान, अब हर सफर हो और भी शानदार।
1: मारुति सुजुकी विक्टोरिस शानदार 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज के साथ,
0: और पाइए 1,05,000 रुपए तक के एक्सचेंज बेनिफिट्स। अपनी नई विक्टोरिस घर लाए और हर सफर को बनाए यादगार।
1: विक्टोरिस अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में भी उपलब्ध।
0: जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। आज ही विजिट कीजिए अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरीना डीलरशिप। TNC अप्लाई।
1: जिंदगी आगे बढ़े तो कार भी स्मार्ट होनी चाहिए। मारुति सुजुकी सिलेरियो, पेट्रोल फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 25.24 किलोमीटर पर लीटर, स्पेशियस कैबिन और नेक्स्ट जेन के सीरीज इंजन के साथ हर ड्राइव को बनाए कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल, और अब पाए टोटल बेनिफिट्स अप टू ₹47,100। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और सिलेरियो पेट्रोल घर लाइए। जल्दी कीजिए, क्योंकि कीमतों में 20,000 रुपए तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।
2: सुरमई सांझ में आप सुन रहे हैं सदाबहार नगवे। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कश्मीर की कली।

स्पोर्टी लुक स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स और फ्यूल एफिशिएंसी अप टू 24.8 kmpl। ये है एपिक न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट पेट्रोल। अब पाइए पावरफुल जेड सीरीज इंजन के साथ जो हर ड्राइव को बनाए मजेदार और इकोनॉमिकल। और अब मिलेगा टोटल बेनिफिट अप टू ₹35,000। स्टाइल, सेफ्टी और सेविंग सब एक ही पैकेज में, तो देर किस बात की। अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर आज ही विजिट कीजिए और स्विफ्ट पेट्रोल घर लाएं। जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है। TNC अप्लाई।

सिलसिला फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं और फिल्म है सच्चा झूठा।

तो श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का सुरमई सांझ कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं और अब सुनते हैं कार्यक्रम किसान व बागबान भाई बहनों के लिए। कार्यक्रम रहेगा मौजा ग्राइंदिया।

मौजा ग्राइंदियां कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहना जो मेरा नमस्कार, यानी आज इस कार्यक्रम च मैं थोड़े कन्ने नर्मदा शर्मा। तो आज दे इस कार्यक्रम च असां गल करनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दे बारे च, यानी पीएम किसान दे बारे च। भारत सरकार दी एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य है कि पात्र किसान परिवार जड़े हैं तिन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करनी है। तो इस योजना के तहत पात्र किसान जड़े हैं तिन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती और ये राशि 2,000 रुपये तक, मतलब 3 किश्तों च ये किसानों के सीधे खाते च यानी बैंक खाते च भेजी जाती है। तो इसते किसान जड़े हैं उन्होंने खेती किसानी करने जुड़े जड़े खर्चे हैं तिन्हें ये पूरा करने बड़ी मदद मिलती। तो इस विषय पर अस और भी गल करगे कुछ थोड़ी देर दे बाद। तो पहले अहां तुहानू सुनांदे हैं एक लोक गीत।

0: अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।
1: पापा जल्दी आओ, मुझे सांप ने काट लिया।
2: घबराने की कोई बात नहीं, 70% सांप जहरीले नहीं होते।
3: फिर भी जहरीले सांप के घाव को ना धोएं, ना काटें, ना चूसें, ना हिलाएं। तुरंत 108 नंबर पर एम्बुलेंस सहायता के लिए संपर्क करें।
4: सांप को ढूंढने या मारने में या तांत्रिक के पास जाने में समय ना गवाएं। अस्पताल पहुंचने में देरी जानलेवा हो सकती है। याद रखें, अगर सुबह उठते ही दिल मचले, उल्टी हो, पेट में दर्द हो, तो ये ग्रेट सांप के काटने से हो सकता है, जिसके काटने के निशान कई बार दिखाई नहीं देते। नेशनल हेल्थ मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
5: तो एक बार फिर स्वागत है मौजा ग्राइंदियां कार्यक्रम च साढ़े किसान व बागवान भाई बहनों का। असा अज इस कार्यक्रम च गल करा दे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे च। इस योजना का लाभ लेने वास्ते किसान जड़े हैं उन्होंने KYC पूरा होना आवश्यक है। कन्ने बैंक खाता आधार कन्ने लिंक होना चाहिदा। भूमि संबंधी जोड़ा विवरण है वो सही होना चाहिदा कि तुहाड़ी कितनी जमीन है वो पूरी जानकारी जोड़ी है सै बिल्कुल सही होना चाहिदी, गलत नहीं होना चाहिदी। फिर जड़े किसान जिना अभी आले तक पंजीकरण नहीं करवाया सै अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर जड़ा है तीस कृषि विभाग दे कार्यालय या फिर PM किसान पोर्टल दे माध्यम कन्ने आवेदन कर सकदे। किसान भाई बहन अपने समय समय पर अपनी जो लाभार्थी स्थिति है तिसे भी दिखते रहन कि तुहाड़े अकाउंट च जोड़ा बैंक खाता है तुहाड़ा जोड़ा तीस च पैसे जोड़ी धन राशि है सै आवा दी कि नहीं आवा दी, है ना। तो किसी कोई त्रुटि अगर होंदी है तो जो लगता है कि कुछ मुश्किल आ दी तो इसका मतलब इस ताई तो हाँ पूरा ध्यान रखना है कि पैसे थोड़े टाइम टाइम पर आवा दे हैं कि नहीं आवा दे, और नहीं आवा दे तो फिर इस पर तो हाँ जल्दी ते कार्रवाई करनी है ना, समाधान करना इसका। और ज़्यादा जानकारी अगर तुझे इस दे बारे चाहिए हो तो किसान जड़े हैं साढ़े किसान भाई बहन से अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर या फिर आधिकारिक PM किसान पोर्टल जड़ा है तिसते संपर्क कर सकते। तो इन योजना का लाभ तो जरूर उठाना है, कने कृषि क्षेत्र जो अपने मजबूत बनाना है बिल्कुल। तो और भी यहाँ जानकारी तो जो देनी है पहले सुनते एक लोक गीत।

0: Fortilux Standard 6 Airbags और Fuel Efficiency up to 24.8 kmpl. ये है Epic New Maruti Suzuki Swift Petrol. अब पाइए पावरफुल Z Series इंजन के साथ, जो हर ड्राइव को बनाए मजेदार और इकोनॉमिकल. और अब मिलेगा टोटल बेनिफिट अप टू ₹35,000. स्टाइल, सेफ्टी और सेविंग सब एक ही पैकेज में. तो देर किस बात की, अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर आज ही विजिट कीजिए और स्विफ्ट पेट्रोल घर लाएं. जल्दी कीजिए क्योंकि कीमतों में ₹20,000 तक की बढ़ोतरी जल्द होने वाली है. TNC अप्लाई.
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प.
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको.
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं. अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं, तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें.
3: तो इस टाइम तो हाँ सुना दे कार्यक्रम मौजा ग्राई दियाँ. और इस कार्यक्रम च हूँ हाँ सुना तो जो एक जानकारी
4: किसान साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी भेंट वार्ता दी कड़ी बिच तो हाँ जो तो पता है कि हर दिन अहां दा प्रयास रहंदा कि नित नोई ते नोई जानकारी अहां तुहां तक पहुंचाइए. उसी कड़ी बिच मिंजो मौका मिला कने मैं गया है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र दा एक धारकंडी इलाका है. तो उतो एक मछली पालन दा जड़ा काम करा करदे हन, ट्राउट मछली पालदे हन, इन्हां कने करदे हन गलबात. राम राम जी.
5: राम राम जी.
4: जी अपना नाम दसा
5: जी. नाम मेरा नाम प्यारे लाल जी.
4: प्यारे लाल जी. कने तुहां दे ग्रां दा की नाम है?
5: ब्लेड.
4: ट्राउट मछली पालन दा काम करा करदे
5: जी? जी जी
4: जी. प्यारे लाल जी, कदों ते करा दे काम?
5: सर मैं 2017 से.
4: तो यानी कि काफी टाइम तो मछली पालदे हुई है ना?
5: 8-9 साल हो गए.
4: अच्छा, तो इस वेले जड़ा तुहां फार्म बनाया, कितना बड़ा फार्म है?
5: फार्म ये तो 4 रेस पे है इसमें. 4 रेस पे.
4: अच्छा,
5: बोलते इसको रेस, एक रेस पे बोलते इसको.
4: हां जी.
5: पर 4 यूनिट है ये.
4: 4 यूनिट है.
5: 4 और
4: एक के 4 खाने ना.
5: हां जी जी.
4: तो जिया एक ट्राउट मछली तुहां पालिए हो, तो तुहां इससे पहले जिया कुछ सिखलाई वगैरह भी लेगी जिया मछली पालन पालनी है?
5: नहीं, डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देते हैं.
4: अच्छा,
5: डिपार्टमेंट जो मछली मत्स्य पालन विभाग है ना.
4: हां जी.
5: ट्रेनिंग दिंदा, बेसिकल ट्रेनिंग जो होती है.
4: हां जी.
5: बाकी तो अपना एक्सपीरियंस है.
4: हां जी.
5: फिर कुछ फार्म में शेयर कर लियो.
4: हाँ.
5: रीडिंग फार्म है, उसके साथ कांटेक्ट में रहो.
4: हां जी.
5: बस जानकारी मिलती रहती है.
4: अच्छा, इसके बाद गल करते हैं जी. जल तुहाए फार्म बनाया हा था, कितना के समय इसी फार्म में बनाने लगी या कने किया? विभाग द्वारा कोई अनुदान वगैरह भी
5: मिला? विभाग द्वारा अनुदान भी मिला. समय तो चलो जितने ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर जिंदा उस टाइम भी बनाया. मैं 2017 स्टार्ट किया, जरा एक 15x2 वाला फार्म है.
4: हां जी.
5: उसकी जड़ी मतलब कीमत ही उस टाइम 1,00,000 रुपये थी अनुमानित राशि.
4: अच्छा.
5: उस पर समझो गवर्नमेंट ने देता 20,000 सब्सिडी.
4: अच्छा.
5: एक फार्म पर. और उसके ऊपर समझो इनपुट मतलब पालने वास्ते 27,000 लग देता.
4: अच्छा.
5: एक यूनिट पर.
4: हाँ जी.
5: ठीक है. उसके बाद फिर अहां दूजे यूनिट बनाए.
4: हाँ जी.
5: 17x15x2x1.5 का उसकी कॉस्ट थी उस टाइम की 2,00,000 दोबारा. उस पर सब्सिडी मिली समझो 40%.
4: अच्छा.
5: तो 2,00,000 की 80,000 रुपये हुई.
4: हाँ जी.
5: और प्लस 1,00,000 रुपया जरा मतलब इनपुट पालने वास्ते मिला.
4: जी गल करते हैं ट्राउट मछली का जो बीज है.
5: जी जी.
4: बीज कुछ लेंदे तो हाँ?
5: बीज हाँ, पहले सरकारी फार्म दे बरोड़ दे लेंदे है, पतली कुल दे लेंदे है, बटाड़ लेंदे है. पर उस दे बाद फिर सोचा चलो नेर वैसा जो इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम.
4: हाँ जी.
5: नए फार्मर थे, कॉन्टैक्ट्स नहीं थे. फिर समझो बड़े अच्छे फार्मर मिले जोगिंदर नगर.
4: हाँ जी.
5: उन्होंने संपर्क च आया था, उन्होंने समझो पहले FOR इतने पुजाने की कोशिश की, 4-5 साल इतने पुजाते रहे.
4: जी.
5: फिर अस उसते भी जाके आपू लिया रहे. उसका रिजल्ट जरा मुझे बाकी सरकारी फार्मा से ज्यादा अच्छा रहा मुझे.
4: अच्छा.
5: मुझे उससे मोर्टैलिटी भी घट रही और ग्रोथ भी रेट अच्छा रहा.
4: जी.
5: दूसरी गल फीड भी जरा हुई है मार्केट का.
4: हाँ जी.
5: तो फीड भी एक अच्छी कंपनी ने हमने खोलना स्टार्ट की.
4: अच्छा.
5: सारा उत्पाद तो बहुत बढ़िया रहना शुरू हुई है.
4: अच्छा.
5: इनकम का सोर्स भी मतलब इनकम भी साड़ी बढ़ना लग पी.
4: हाँ जी.
5: अच्छा. वो फायदा समझो रहा उसका.
4: जी. नहीं बीज है दा, इदा क्या भाव मिलता नहीं है कुछ?
5: बीज ज्यादा है, बीज हो ना अंडा भी इसका मिल जा, मिल जाना तो समझो.
4: हाँ जी.
5: अंडे का समझो प्रोसेस लंबा पाउंदा, लेंथी है.
4: हाँ जी.
5: इसका हम टोटल बच्चा ही लेने, मतलब फिंगर साइज बच्चा लेने.
4: एक पीस का क्या हिसाब होता?
5: उसका पीस का साइज गवर्नमेंट का रेट है वो 4 रुपये. प्राइवेट फार्म अपनी अपनी मर्जी नहीं बेचते.
4: हाँ, 1-2 रुपये महंगा लगा.
5: हाँ, कुछ कोई 4 बेचता, कोई 5 बेचता है.
4: हाँ.
5: हाँ. 4-4.5 4 लेंदे, कभी 5 लेंदे. स्टॉक घट होता महंगा दे देंगे, स्टॉक ज्यादा सस्ता दे देंगे.

0: ब्लीचिंग पाउडर वगैरह वगैरह
1: कांटा चबाई था है ना,
0: सही सारा पानी मेरे इस फार्म से आई है, और उस टाइम मेरा टोटल लॉस पूरे के पूरे मतलब पूरा पूरा टैंक के बाद शॉर्ट हो गया है। 10,000 बच्चा पाया था उस टाइम, और 75 बच्चा बचा मेरा सिर्फ उस
1: अच्छा।
0: और बड़ा माल सारा खत्म हो गया, कुछ नहीं मतलब टोटली हो गया।
1: हाँ देखा उस समय दौर भी ऐसा चल रहा की एकदम से माल भी कहाँ भेजना है, कहाँ बेचना है,
0: उस टाइम बेचना भी औखा था।
1: हाँ।
0: और मरी मछली कीमत कोई नहीं।
1: हाँ।
0: सबसे बड़ी गल
1: है देखा ये भी तो। हाँ एक जिनकी जिया दसिया की कुछ जिया होंगे ना शरारती दस्ता है ना, तेना देखा अपने जिसकी यहाँ बोलते लोग लाल चताइया गड्ढा च पाइपता पाउडर है ना, कहना सही जा तो हाँ फार्म च आई के नुकसान करी है ना, तो फार्म पर काम किले कर दे की कोई
0: नहीं कर लाई, क्योंकि लेबर से काम नहीं चलता, क्योंकि ये काम लेबर वाला नहीं है, लेबर बिठाई नहीं है,
1: अनुभव चाहिए ना,
0: अनुभव चाहिए है कि पता है लेबर वाले बंदे मुझे 6,000 महीने मिला तिन्नी को घेर करनी ज्यादा।
1: हाँ जी हाँ
0: उन्हें मर गई बड़े मर गई।
1: हाँ।
0: पानी घट है तो चलो घट चलना कोई चक्कर नहीं।
1: हाँ
0: कोई दिक्कत वाली गल नहीं, उसकी
1: हाँ
0: कोई दिक्कत वाली गल नहीं। हाँ। पर जितने हो सके कोशिश होती सर की हाँ ये मेजर काम होता कोई मुख्य काम हो या मतलब तो सारी कुल डिस्टर्ब गए।
1: हाँ।
0: उस टाइम लेबर की जरूरत पौंदी तो हाँ उदो हायर कर लेंदे बंदे एक दो हायर करके।
1: अच्छा
0: तो उस टाइम भी मतलब ज्यादा माल क्वांटल माल निकालना उसकी सप्लाई है कुछ दिन।
1: हाँ जी
0: तो उस दिन चाहिए बंदा भी चलो थोड़ी हेल्प करके जल्दी ड्रेसिंग ब्रेसिंग हो जाए।
1: हाँ तो जी निकाल दे कि
0: एंड नेट दे एंड नेट कने निकली
1: लंदा। अच्छा जी टोकरी सिस्टम होता
0: है एंड नेट होते बने जाले।
1: हाँ जी उससे तो ज्यादा भी निकले तो ढाई के फिर
0: ना वो डब्बे च पाना माल पीस लेने चले तो फालतू माल वापस पा देना उस टाइम वो तो किलो तीन पीस है पचा देना 100 पीस 33 किलो मारिया 5-7-10 ग्राम किलो दा माल और घटी लिया वो होता ना तीन दिन थोड़ी एवरेज 4 दिन बनी लिया किलो की।
1: हाँ जी
0: 25 किलो चाह 100 पीस घटी लिया।
1: अच्छा
0: 100 दिन कुछ किलो घट गया तो किलो 400 घटी लै बद करते कद करो कोई उसका भी कोई फर्क नहीं क्वांटल माले किलो फालतू भी लेंगे तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं होती। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दोपहर 3-4 बजे वो थोड़ी खड्डा का पत्थर जो टेंपर च 28-29 च पुजी गई एक नंबर एकदम बार स्टार्ट हुई।
1: हाँ जी
0: एकदम बार
1: नमस्ते। अच्छा
0: प्लस लिबोटोमिन।
1: अच्छा ये इन्हें की दवाइयां भी देना
0: दवाई मतलब स्ट्रेस च होए मच्छी तो चिकन लगी मतलब जी साजे बड़ी गर्मी यार बोलते ना गोलो बंदे आंदे मां कड़ी दी उसी कड़ी दी।
1: अच्छा
0: वो मत रखियो हैंड स्टिक स्नेक स्नैकिंग स्टिक होती ना।
1: हाँ जी
0: उसके ने पकड़ने कुछ कर दे नहीं तो फिर जाला पाई कड़ी लेने
1: जी
0: वो तो बचाना पौंदा ना बच्चा बढ़िया बच्चा वो तो।
1: अच्छा
0: चलता रहा उस
1: जी। प्यारे लाल जी अहां दी जेड़ी नौजवान युवा पीढ़ी है ता दिखा वे तिना वाला अपनी खरी खुली जमीना भी हैं
0: सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर नौकरियां ने।
1: हां जी
0: ते दिन बैठ के तुसा अपना रोजगार अपनाओ कोई।
1: हां जी
0: अरे कुछ दी जमीन खड्डा वखे है।
1: हां
0: करो धंधा बेस्ट धंधा अच्छी इनपुट है कमाओ ऐसा उस कमाओ। करो अपने धंधे अपने कम में रीस है।
1: हाँ जी
0: बाकी क्या है कुछ यार नौकरी करके कुछ बढ़िया 10-12 हज़ार महीने का।
1: हाँ जी हाँ
0: मतलब थोड़ा एक अगर सही महीने रेस पे तो साले तो 1.5 लाख छड़ी जाता एक रेस पे।
1: प्यारे लाल जी तो हाँ अपना कीमती समय अहाँ जो दिता अपने ट्राउट मछली पालन के जेडे अनुभव हैं तो हाँ अहाँ कन्ने साझा किए तो हाँ बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी यही है टाइगर की गारंटी।

तो किसान भाइयों, अज का मौजां ग्राइंदियां कार्यक्रम इत्थों ही समाप्त हुंदा है। तो मुंहिंजो यानी नर्मदा जो दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मौज जागरा इंडिया, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 7 बजने को हैं, अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: मैं मुनीश शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में उन्होंने देश को वैश्विक विनिर्माण चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विश्वसनीय और तैयार केंद्र बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनियों को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में एक प्रेस वार्ता में श्री वैष्णव ने कहा कि कई बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार बारिश और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को विकसित भारत जी राम जी योजना विकसित गांवों के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, इसका पता लगाने का निर्देश दिया है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। श्री चौहान ने अधिकारियों को योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया है। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। ये कोर्स इन शिक्षकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की योग्यता और प्रमाण पत्र दिलाने में एक अहम माध्यम साबित होगा। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इससे पहले विदेश मंत्री ने तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारतीय वाहन और सतत परिवहन की दिशा में भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज उधमपुर जिले के ब्राटल इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित संयुक्त आतंक रोधी अभियान में 2 आतंकी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद कल रात से अभियान शुरू किया गया। अफगानिस्तान ने भारत के साथ तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में दिल्ली में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत पहले ही 2 मुकाबले जीतकर श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: के लिए किसान वाणी कार्यक्रम।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: आकाशवाणी शिमला के किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज के अंक में मैं हूँ हेमलता शर्मा
7: और किसान श्रोताओं मैं हूँ योगिता शर्मा। किसानवाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपने कृषि और बागवानी के कार्यों में व्यस्त भी जरूर होंगे। किसान श्रोताओं, किसानवाणी कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला के मीडियम वेव से प्रसारित किया जाता है। किसानवाणी कार्यक्रम के माध्यम से हम केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते रहते हैं। किसानवाणी कार्यक्रम मंगलवार, वीरवार और शनिवार को सायं 7:10 से 7:45 तक आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जाता है
6: जी, और इसे उसी समय आकाशवाणी के शिमला केंद्र से भी रिले किया जाता है। आज काम की बातों में बात करेंगे पॉली हाउस में शिमला मिर्च का उत्पादन। पॉली हाउस द्वारा शिमला मिर्च का उत्पादन साल भर किया जाता है। इस तकनीक द्वारा उगाई गई शिमला मिर्च की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है और मंडियों में भी इसके अच्छे दाम मिलते हैं। यदि इसे खुले खेतों में उगाया जाता तो तापमान की अधिकता के साथ साथ कीट और बीमारियों से पौधों को अधिक नुकसान पहुंचता है। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए शिमला मिर्च का उत्पादन पॉली हाउस में करने की सिफारिश की जाती है
7: जी। और किसान भाइयों, शिमला मिर्च के सफल उत्पादन के लिए आवश्यक है कि पॉली हाउस उत्पादक ऐसी संकर किस्मों का चयन करें जिनका आकार अच्छा हो। शिमला मिर्च के उत्पादन के लिए आप संकर किस्में ले सकते हैं। लाल शिमला मिर्च में आप ले सकते हैं इंदिरा और S181। पीली शिमला मिर्च में आप ले सकते हैं स्वर्णा और गोल्डन समर। और अगर आप हरी शिमला मिर्च उगाना चाहते हैं तो इसमें आप ले सकते हो मिकाण और कैलिफोर्निया वंडर
6: जी। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं स्वस्थ पौध उत्पादन की। किसी भी सब्जी फसल को अच्छी पैदावार के लिए उसकी स्वस्थ पौध का होना बहुत ही जरूरी होता है, विशेषकर हरित गृह में सब्जी उत्पादन के लिए जहाँ उत्पादकता दर अधिक होती है स्वस्थ पौध अनिवार्य होता है। पौध तैयार करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है, जैसे बीज सदैव विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदें। वर्षा में एक बार पॉली हाउस को 5% फार्मलिन 500 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के घोल में शोधन करें। नर्सरी क्यारियों को फार्मलिन से उपचारित कर पॉलीथीन से 2 सप्ताह के लिए ढक दें। अगर संभव हो तो पौध प्लास्टिक ट्रे में भी तैयार करें। पौध की रोपाई सायंकाल करें लेकिन हल्की सिंचाई करें। पॉली हाउस न होने की दशा में पॉली टनल्स छोटे आकार एवं ऊंचाई के उठा सकने योग्य ढांचा बनाएं और उसका इस्तेमाल करें ताकि पौध उत्पादन किया जा सके
7: जी। और सामान्य तौर पर शिमला मिर्च की पौध की रोपाई लाइनों में करें। 1 मीटर चौड़ी व 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियां तैयार करके लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर व पौध से पौध की दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर रखें। पौध सायंकाल स्थानांतरित करें। रोपाई के 1 दिन पूर्व नर्सरी में पौधों पर कीटनाशक का छिड़काव करें। नर्सरी से पौध निकालकर जड़ों को कार्बेडाइजिम 0.1% के घोल में डुबोने के बाद उन्हें लगाना चाहिए।
6: किसान भाइयों, बात कर लेते हैं सिंचाई की। हरित गृह में बूंद बूंद सिंचाई तकनीक द्वारा पौधों की सिंचाई करनी चाहिए और एक सावधानी आवश्यक ध्यान में रखनी चाहिए कि पौधे ड्रिप लाइन में छिद्र के पास लगाएं। गर्मियों में सामान्य रूप से सुबह शाम और सर्दियों में 2 दिन में एक बार सिंचाई की मात्रा इस हिसाब से तय करें कि पौध के आसपास सदैव नमी बनी रहे। और यदि खाद एवं उर्वरक की बात करें तो मिट्टी के मिश्रण में पौध रोपाई के सप्ताह पहले 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया, 11 ग्राम सुपर फास्फेट, 35.5 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश, 8.33 ग्राम प्रति वर्ग किलोमीटर की दर से शिमला मिर्च में अवश्य मिलाएं।
7: किसान भाइयों, बात करते हैं सिंचाई के साथ खाद की। पौधरोपण के एक माह बाद पानी में कोई भी घुलनशील मिश्रित खाद या उर्वरक जैसे पॉलीफीड 19:19:19 का प्रयोग 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करें। फर्टिगेशन अंतिम तुड़ाई से 15 दिन पहले बंद कर दें। और अगर बात करें कांट छांट की, तो फलों के अच्छे आकार एवं गुणवत्ता के लिए समय समय पर पौधों की कांट छांट करते रहना चाहिए। प्रजाति के अनुसार 9 से 13 पत्ते आने के बाद मुख्य फूल या वड को निकाल दें। पॉली हाउस की ऊंचाई के अनुसार 2 या 4 टहनियों पर शाखाएं रखें। प्रत्येक नोक पर 1 फूल या 2 पत्ते रखें, बाकी फूल या पत्ते निकाल दें और अतिरिक्त शाखाओं की निरंतर कटाई छंटाई करें। प्रत्येक शाखा को नायलोन की रस्सी या सुतली से लपेटें। इसी के सहारे ऊपर की दिशा में रस्सी या सुतली को घुमाते हुए टेनिंग करें। तनों को क्लिप से आप बांध सकते हैं।
6: जी किसान भाइयों, बात कर लेते हैं तुड़ाई की। पॉली हाउस में शिमला मिर्च की उन किस्मों के उत्पादन को बढ़ा दिया जाता है जो लंबी अवधि की तुड़ाई में सहायक हो। सामान्य रूप से तुड़ाई की अवधि 2 से 3 माह यानी कि 2 बार उत्पादन के लिए पाई गई है। फलों की तुड़ाई की बात करें तो हल्का रंग आकार होने के बाद ही करनी चाहिए। तुड़ाई करते समय 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा डंठल फल के साथ छोड़कर यानी तुड़ान कर मंडियों में भेजें। और यही कहना उचित होगा कि पॉली हाउस में सब्जियां उगाने से कम क्षेत्र में भी अधिक आमदनी हो सकती है। सब्जी उत्पादन में दूसरी फसलों की उपेक्षा आय के साथ साथ अधिक रोजगार का भी सृजन होता है। इसलिए सीमांत लघु किसानों के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि उपयोगी तकनीक अपनाएं। और सबसे ज्यादा लाभप्रद पीली लाल मिर्च मानी गई है, जिसका मान देश में दिनों दिन बढ़ रहा है और बेमौसमी होने के कारण दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। इसी आधार पर पॉली हाउस के उत्पादन खरे उतरते हैं, क्योंकि ये मूल्यवर्धन उत्पादन है और पॉली हाउस में उगने वाली सब्जियों का आकार सुडोल नियमित आदर्श प्रकृति का एक जैसा होता है, जिससे ग्रेडिंग व पैकिंग में काफी सुविधा होती है। इसके साथ साथ उत्पादकों के रंग में ज्यादा चमक व आकर्षक होते हैं। सर्वेक्षण से ये भी स्थापित हो चुका है कि पॉली हाउस उत्पाद भंडारण क्षमता पारंपरिक उत्पादों की अपेक्षा 30-40% अधिक होता है। यदि हम बात करें बेमौसमी तथा उत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद के विपणन के लिए जो आपने माध्यम ध्यान रखने हैं, तो पहली बात है कि उपभोक्ता के साथ सीधा संपर्क और बिक्री, दूसरा है होटल रेस्तरां तथा निर्यातकों को सीधे बिक्री करने वालों से मिलना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मार्केटिंग करना, सहकारी मंडीकरण करना, किसान मंडी का गठन करना, रिटेल चेन तथा सामुदायिक बिक्री करना, इंटरनेट मार्केटिंग का उपयोग जरूर करें। किसान भाई, काम की बातों में बात थी पॉली हाउस में रंगीन शिमला मिर्च उत्पादन के बारे में। आप सुन लेते हैं समूह स्वरों में प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान श्रोताओं, समूह स्वरों में ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत, और अब समय हो गया है जानकारी पूर्ण बातचीत के पुनः प्रसारण का, जिसका विषय है चुकंदर की खेती द्वारा बीज तैयार करना। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं सुभद्रा कंवर और उनसे बातचीत कर रहे हैं राजेंद्र। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं ये जानकारी पूर्ण बातचीत। जी,
1: आज हमारे स्टूडियोज में आए हैं एक प्रगतिशील किसान जो कि प्राकृतिक खेती के मास्टर प्रशिक्षक भी हैं, सुभद्रा कंवर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है चुकंदर से बीज किस प्रकार तैयार करें। कंवर जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि चुकंदर के बीज का चुनाव हमारे किसान भाई किस प्रकार कर सकते हैं।
2: नमस्कार जी, मैं सुभद्रा कंवर, मैं अर्की से बिलोंग करती हूँ और ग्राम सुझाइला से मैं बिलोंग करती हूँ। तो चुकंदर की खेती से बीज तैयार हम कैसे कर सकते हैं? चुकंदर की बीज तैयार करने के लिए

0: का बीज, वैसे तो हम अगर हमने कंद के लिए बीज तैयार करना है तो उसके लिए तो हम 12 महीने हम लगा सकते हैं, मगर अगर हमारे को बीज तैयार करना है ना तो उसके लिए तो हमारे को अक्टूबर महीना चुकंदर का बीज लगाने के लिए उपयुक्त है, तो बीज के लिए। और अगर हमने कंद के लिए लगाना हो तो वो तो हम 12 महीने उसको लगा सकते हैं। और अच्छा, रही तापमान की जरूरत, अगर हमने बीज तैयार करना हो तो उसके लिए तो हमारे को 15 से 25 सेल्सियस का तापमान की जरूरत पड़ती है। और अगर हमने कंद के लिए भी तैयार करना हो तो उसके लिए हमारे को गर्म भी चल पड़ेगा, 30 डिग्री सेल्सियस तक हमारे को तापमान की जरूरत पड़ती है।
1: जी, ये बीज किस तरह लगाया जाता है हमारे खेतों में?
0: बीज, हम चुकंदर का बीज लगाने के लिए हम तीन तरीकों से लगा सकते हैं। नंबर एक तरीका है कि हम नर्सरी दे के बेड बना के नर्सरी लगाई और उसमें हम बीज लगा सकते हैं। और दूसरा हमारा तरीका है कि हम लाइन में लगा के और लाइनों में इसको बीज को लगा सकते हैं। और तीसरे हमारा एक तरीका है कि हम छिटक कर हम भी इस बीज को लगा सकते हैं।
1: ठीक, बताएंगे कि आप किस तरह से आप क्यारियों में बीज, क्या फासला क्या रहेगा?
0: सबसे पहले तो हमारे को अपना खेत की तैयारी करनी है
1: जी।
0: हमने नर्सरी लगा दी है
1: जी।
0: और अगर हम नर्सरी से लगाना चाहते हैं, चाहे छिटक कर लगाना चाहते हैं, चाहे लाइनों में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को खेत की तैयारी करनी पड़ती है। तो खेत की तैयारी करने के लिए हमारे को 2 या 3 बार हल चलाना पड़ता है
1: जी।
0: और जब हम हल चला लिया 2-3 बार तो उसके बाद हम रोटामीटर से, हम जो हमारे भाषा में कई जगह उसको मैड़ा भी बोलते हैं और कई जगह उसको, मतलब अपने अपनी अलग अलग भाषा है ना, तो रोटामीटर से हम खेत को प्लेन कर देते हैं
1: जी।
0: और उसके बाद हम बेड अपने खेतों में नालियां बनाकर बेड के ऊपर हम बीज को लगाएंगे। अगर हम बेड के ऊपर बीज को लगाते हैं तो उससे हमारा 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा कंद, अगर हम कंद के लिए लगा रहे हैं तो कंद भी बहुत अच्छा बनेगा, अगर हम बीज के लिए लगा रहे हैं तो हमारा बीज भी उसमें बहुत अच्छा पड़ेगा क्योंकि हम बेड के ऊपर लगा रहे हैं। और उसकी ना हम अगर लगाने के लिए उचित दूरी रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हमारा बीज पड़ेगा और कंद भी हमारा अच्छा पड़ेगा
1: जी।
0: बीज से बीज की दूरी, कंद के लिए हम अगर लगाएं तो बीज से बीज की दूरी 5 से 6 इंच तक होगी
1: जी।
0: अगर हम बीज के लिए हम लगा रहे हैं चुकंदर तो 10 से 12 इंच तक इसकी दूरी होगी क्योंकि ना इसके पौधा बनेगा और पौधे से बीज हमारा बनेगा तो वो थोड़ा उसके लिए दूरी ज्यादा चाहिए। कई किसान ना ऐसा करते हैं, क्यों, मैं खुद भी एक साल पिछले से पिछले साल बीज लगाया तो उसमें मैंने गहरा, थोड़ा सा गहराई तक बीज को डाल दिया था
1: जी।
0: तो अगर हम बीज को गहरा डालते हैं तो हमारा बीज उगेगा नहीं
1: जी।
0: इसके लिए सिर्फ 1 इंच से ज्यादा हमारे को बीज रखना नहीं है। और दूसरा, अगर हम बीज लगाते हैं तो इसके ऊपर अगर हमारे खाद होती है ना, कंपोस्ट खाद
1: जी, कंपोस्ट,
0: हाँ, उसी को हम थोड़ी थोड़ी ऊपर से डाल दे, लाइनें लगाए उसके बाद बीज रखे उसके ऊपर कंपोस्ट खाद डाल दे तो, और ज्यादा गहरा नहीं, 1 इंच से ज्यादा गहरा नहीं हम लगाएंगे वरना हमारा बीज उगेगा नहीं
1: जी।
0: तो 1 इंच तक हम बीज को रखेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से वो उग पाएगा और बहुत अच्छा उसका प्रोडक्शन होगी
1: जी। जो चुकंदर की खेती में खाद प्रबंधन के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ
1: जी,
0: तो मैं तो बोलती हूँ हमारे को वैसे यूरिया DAP वगैरह तो हमारे को डालने चाहिए
1: जी।
0: और रही खाद प्रबंधन के बारे में, हमें हमेशा समय समय पर, सबसे पहले तो हमने जब हमने खेत बोया तो हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जीवा अमृत और घन जीवामृत बनाते हैं तो हमारे को वो ही डालना चाहिए, पहले जब हल चलाया और उसमें मिला लिया
1: जी।
0: और जब भी हमारे को पौधे की आवश्यकता देखी तो भाई अब थोड़े से पौधे हमारे कमजोर होने लगे तो हमारे को जीवामृत और घन जीवामृत का बार बार, मतलब कोई महीने के बाद या 15 दिन के बाद डाल लेना चाहिए। अगर कोई रासायनिक खेती भी करता है तो भी उसको शुरू में ही जब खेत बनाते हैं उसी टाइम भी उसको खाद डाल लेनी चाहिए और अगर जैसे ही पौधे को जरूरत पड़े तो उस समय खाद उसमें डाल लेनी चाहिए।
1: गोबर की खाद का कितना महत्व रहता है?
0: मैं तो बोलती हूँ, देखो मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आप हैरान हो जाओगे, गोबर की खाद से ही मेरे 3-3 किलो का चुकंदर हुआ
1: जी।
0: मैं तो यही बोलती हूँ कि इसमें गोबर की खाद का ही अगर यूज करें तो इससे हमारी धरती माता भी स्वस्थ रहेगी।

0: और मानव का स्वास्थ्य भी ठीक
1: और
0: रहेगा।
1: मानव का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा।
0: जी
1: तो मैं तो ये बोलती हूँ कि हमारे को गोबर की खाद ही डालनी चाहिए, और ऐसा नहीं है कि गोबर की खाद से हमारा कुछ होता नहीं है। मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और खुद मैं बीज पैदा कर चुकी हूँ, और खुद चुकंदर 3-3 किलो का चुकंदर मैं मतलब गोबर की खाद और अपनी जो मैं प्राकृतिक खेती के अंतर्गत खाद बनाती हूँ ना, उसी से ही मैं डालती हूँ और पैदा हुआ मेरे
0: जी
1: बहुत अच्छी
0: कंवर
1: फसल।
0: जी, खेत की तैयारी भी हो गई और खाद का प्रबंधन भी हो गया, तो
1: जी
0: अब सिंचाई का कितना महत्व रहता है?
1: चुकंदर के लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। मैंने पहले भी आपके साथ बोला कि मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ।
0: जी
1: अगर हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत काम करते हैं, जैसे हम आच्छादन करते हैं,
0: जी
1: तो उससे हमारा पानी बहुत कम लगेगा।
0: जी
1: और नंबर दूसरी बात है, अगर हमारी जमीन जमीन के ऊपर भी डिपेंड होगा कि कितना पानी लगेगा। अगर
0: जी
1: हमारी जमीन भारी जमीन है तो हमारा पानी कम लगेगा, अगर हमारी जमीन हल्की
0: हल्की
1: है
0: है।
1: तो पानी उसमें ज़्यादा लगेगा। और सबसे अच्छा तो मैं ये बोलती हूँ कि हमारे को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत आच्छादन करना चाहिए, उसमें हमारे बहुत कम पानी लगेगा। और जहाँ मैं अब अपना एक्सपीरियंस
0: कुछ एक
1: बताऊँ,
0: आप बताएंगे कि आप किस तरह से अपनी खेती में आच्छादन करते हैं?
1: मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि मैं जब से प्राकृतिक खेती कर रही हूं तो आच्छादन करती हूं मैं मतलब हर फसल में। तो जहां मैं 5 बार पानी लगाती थी, चाहे फ्लड से लगाओ, इरिगेशन, चाहे जैसे मर्जी आप लगाओ,
0: जी
1: वहां मैं अब 2 बार लगाती हूं।
0: जी
1: इससे इतना फर्क पड़ा कि आच्छादन से, कि मतलब एक तो हमारे जो केंचुए होते थे वो भी सुरक्षित रहते हैं, और जो हमारी खाद का काम करते हैं हमारी फसल
0: जी
1: को,
0: हमारी जमीन को उलट पलट करते
1: हाँ,
0: हैं,
1: उल्ट पल्ट करते हैं। और एक मैं तो बोलती हूँ तो केंचुआ तो एक हमारी जमीन का इंजीनियर है, इंजीनियरिंग का
0: मित्र है,
1: काम,
0: किसान मित्र है।
1: किसान मित्र है। और ये तो मैं एक इंजीनियरिंग, जैसे इंजीनियर होते हैं ना
0: जी
1: वो बिल्डिंग बनाते हैं, वैसे ही हमारे खेतों को बनाता है
0: जी
1: केंचुआ। तो इससे आच्छादन से ना एक तो मतलब केंचुआ हमारे बढ़ते, और दूसरा हमारा पानी कम लगता
0: जमीन में नमी बरकरार रहती
1: है,
0: है।
1: जमीन में नमी बरकरार रहती है। और जब बोलते हैं चुकंदर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है,
0: जी
1: तो इस ढंग से अगर हम पानी का प्रबंधन करें तो हमारे पानी कम लगेगा। और वैसे जैसे भी आप फसल को देखें, मैंने पहले बोल दिया आपको कि अगर भारी जमीन है तो आप फसल को देखकर पानी लगा सकते हो, महीने से भी लगा सकते हो, 15 दिन से भी लगा सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी जमीन के ऊपर, भारी
0: जी
1: है या हल्की जमीन है।
0: जी
1: हाँ जी,
0: तो चुकंदर की फसल में कंवर जी कौन कौन सी बीमारियां आ जाती है और उनका उपचार किस प्रकार आप करते हैं?
1: चुकंदर की फसल में वैसे तो मेरे बोलूं अगर प्राकृतिक खेती कोई किसान करता है तो बीमारियां ना होने के बराबर उसमें लगेगी।
0: जी
1: अगर फिर भी आपके बीमारियां हो तो हम प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अग्निस्तर बनाते हैं,
0: जी
1: तो अगर हमारे कोई कीट पतंगे लग गए तो अग्निस्तर से वो ठीक हो जाएंगे।
0: जी
1: अगर फंगसल हमारे खेत में लग जाती है, चुकंदर के पौधे में लग जाती है, तो हम खट्टी लस्सी का इसमें प्रयोग करते हैं।
0: जी
1: और नंबर तीसरी बात, अगर हम अच्छी प्रोडक्शन चाहते हैं तो हमारे को अंकुरित सप्तधान्य अंकुर बनाते हैं। जो
0: जी
1: प्राकृतिक खेती जो किसान कर रहे हैं उनको सब पता है कि सप्तधान्य अंकुर, जैसे 7 जो हमारे अनाज होते हैं ना,
0: अनाज होते हैं।
1: उनको हमने अंकुरित करना है।
0: जी
1: तो अगर हम उनको अंकुरित करके स्प्रे करते हैं और अब पानी के साथ चलाते हैं, तो उसमें एक तो हमारे जो फल बढ़ेगा चुकंदर का या किसी भी चीज़ का, तो बड़ा बनेगा और शाइनिंग वाला बनेगा, और दूसरा बीज भी हमारा ना बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज बनेगा, और बीज भी और कंद भी बहुत अच्छा
0: जी
1: बनेगा। इसमें ज़्यादा खाद की बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी अगर हम प्राकृतिक खेती के द्वारा जो हम घटक बनाते हैं ना उनको प्रयोग करें।
0: जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि हमारे किसान भाई चुकंदर की फसल में बीज कैसे तैयार करें, यानी हार्वेस्टिंग कैसे करें इसकी?
1: अब हमने सब कुछ कर लिया,
0: जी
1: बीज लगा लिया, और खेतों में जब हमारे कंद थोड़ा बड़ा हो जाता है और कम से कम आधा आधा फुट की हमारी फसल हो जाती है, तो उसमें हमारे को पता क्या करना पड़ता है, वो शीर्ष मोचन करना पड़ता है।
0: जी
1: जब हम शीर्ष मोचन करेंगे तो उससे हमारे ना अंकुर बहुत छोड़ेंगे, और पौधा ना अंकुर छोड़ेगा,
0: जी
1: जैसे अंकुर छोड़ेगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा बीज हमारा पड़ेगा।
0: जी
1: आप कंद के लिए लगा रहे हैं तो वो तो आप लगभग 70 या 80 दिन में हमारा कंद तैयार हो जाएगा, मगर हम अगर बीज के लिए चुकंदर लगा रहे हैं तो वो तो हमारा मई या जून में तैयार होगा। अक्टूबर में आपने लगाया तो मई जून में वो तैयार होगा। और जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसको हमारे को छावा में सुखाना पड़ता है,
0: जी
1: मतलब धूप में इसको हमारे को बिल्कुल भी नहीं रखना।

0: पड़ता है, और अगर हम धूप में रखेंगे ना तो ये हल्का बीज पड़ जाता है,
1: जी
0: और इसको जैसा जैसा ये तैयार होता है वैसे वैसा हमारे को इसका हार्वेस्टिंग करके और प्रोसेसिंग करके अपने छावा में सुखा के और तब हम इसको बीज निकाल सकते हैं। और अगर हम इसका शीर्ष मोचन, मैंने बताया आपको कि अगर हम इसका शीर्ष मोचन करते हैं तो मैं बोलती हूँ ये 4 गुना अधिक हमारा बीज बनेगा। और आपको बताए चुकंदर कितना ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही एक फायदेमंद है,
1: जी
0: इससे तो अगर मैं बीमारियां गिनाने लगूं तो बहुत सी बीमारियां इससे कंट्रोल होती है। और मैं तो बोलती हूँ इसके पत्ते का भी हमारे को सदुपयोग करना चाहिए, पत्ते में भी इसके बहुत सी सारी विटामिन होती है। और चुकंदर एक ऐसी फसल है जो हमारे ना जंगली जानवर भी नहीं खाते इसको, इतना
1: जी
0: मतलब पसंद करते किसानों के लिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि ये एक आय का साधन भी बहुत अच्छा है, और अगर ऐसे भी आपने बेचना हो, बीज बेचना हो या कंद बेचना, तो वो भी बहुत अच्छा है।
1: जी तो सुभद्रा कंवर जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने चुकंदर से बीज कैसे तैयार करें और इसकी खेती के विषय में आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान और बागवान भाइयों से साझा की। इस जानकारी के लिए आपका और स्टूडियो में आने के लिए आपका बेहद धन्यवाद।
0: आपका भी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: किसान भाई, ये तो सुना आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था चुकंदर की खेती द्वारा बीज तैयार करना। बातचीत में भाग ले रहे थे सुभद्रा कंवर और उनसे बातचीत कर रहे थे राजेंद्र। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी पूर्ण बातचीत से अवश्य लाभ उठाएंगे। किसान भाइयों, आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, किशोर कुमार की आवाज में ये तो सुना आपने प्यारा सा पहाड़ी लोकगीत। और किसान भाइयों, चलते चलते बात कर लेते हैं कल के मुख्य आकर्षणों के बारे में। किसान श्रोताओं, कल काम की बातों के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी आधुनिक खेती में जैव उर्वरकों का महत्व इस विषय पर। साथ ही पहाड़ी गीतों से आपका मनोरंजन भी करवाया जाएगा और जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी आपको सुनाया जाएगा। इसी के साथ किसान श्रोताओं, कार्यक्रम किसान वाणी का समय यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान श्रोताओं से अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: किसान वाणी कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।
2: नमस्कार हिमाचल। प्रदेश के बर्फबारी वाले क्षेत्रों में जनगणना 2027 का द्वितीय चरण जनसंख्या गणना 1 सितंबर से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान आपके घर आने वाले प्रगणक आपसे आधिकारिक रूप से प्रकाशित कुल 40 प्रश्न पूछेंगे। आपका हर एक सही उत्तर आने वाले कल की बेहतर नीतियों का आधार बनेगा। अपने घर आए प्रगणकों का सहयोग करें और पूर्णतः सही एवं सटीक जानकारी दर्ज कराएं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, केशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना से प्रदेश को बिना अतिरिक्त निवेश के मिलेगा 1500 करोड़ रुपए का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा

0: के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने विकास के मामले में प्रदेश को 4 दशक पीछे धकेला, विकास कार्य ठप। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, लाहौल स्पीति में 2 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना समझौते को लेकर कहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल के हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ी है और इसका श्रेय प्रदेश की जनता और कांग्रेस सरकार को जाता है। हमीरपुर जिले के नादौन विधानसभा क्षेत्र के रैल में आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के तहत प्रदेश को बिना अतिरिक्त निवेश किए करीब 1500 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद किशाऊ परियोजना को लेकर 3 महत्वपूर्ण बैठकें हुई और वर्तमान राज्य सरकार ने हिमाचल के हितों को सुरक्षित करना सुनिश्चित किया। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों और विधायकों पर प्रदेश के हितों के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रभावी पैरवी नहीं करने का आरोप भी लगाया।
1: ये एक ऐतिहासिक समझौता, जिन राज्यों को पानी की जरूरत है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उनको तो आपने राष्ट्रीय महत्व का कह दिया। जिनको पानी की जरूरत है उनका तो केंद्र सरकार 90% उठाए और हमें कहे कि हम लोन लें और अपनी जनता पर और कर्जा डालें, ये नहीं हो सकता। ये मेरी अकेले की ताकत नहीं थी, ये हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता की ताकत थी जो मेरे पीछे खड़ी थी, जो मेरा हौसला बढ़ा रही। अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती तो वो वही समझौता होता जो उत्तराखंड का होता, जो आपके 1200 से 1500 करोड़ रुपए मिलने थे वो नहीं मिलते।
0: सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर जिला में एम्स स्तर का आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने नादौन के कर्णडोला में देश का पहला अलाइड हेल्थ केयर कॉलेज इसी वर्ष शुरू करने की घोषणा की। इस बीच मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रैल के विद्यार्थियों से भी संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनके करियर, पढ़ाई और शिक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों को लेकर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने CBSE पाठ्यक्रम लागू होने के बाद स्कूल में आए परिवर्तनों के बारे में भी विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। अगले महीने की 17 तारीख तक चलने वाले इस सेवा संकल्प अभियान के हिस्से के रूप में पहले दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसके तहत देश सहित प्रदेश में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इधर प्रदेश भाजपा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने नाहन में आयोजित हवन यज्ञ में भाग लिया और प्रधानमंत्री के उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घ आयु की कामना की। इस मौके पर राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने रक्तदान शिविर आयोजित किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश विकास के मामले में 4 दशक पीछे चला गया है और विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कर्ज लिया जा रहा है और इसके बावजूद भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर प्रतिशोध की भावना से काम करने और भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल रही है और पंचायती राज चुनाव में जनता ने सरकार को उसकी नाकामी का आईना दिखा दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा भी किया।
2: हिमाचल प्रदेश इन 4 वर्षों में एक तरह से 4 दशक पीछे चला गया, विकास कार्य पर पूर्ण विराम है। हैरानी हमको इस बात को लेकर के है कि ऋण तो लिया जा रहा है,

0: विकास कार्य ठप पड़े हैं, संस्थानों को बंद किया जा रहा है, योजनाओं को बंद किया जा रहा है, आखिर पैसा लग कहां रहा है? प्रतिशोध की भावना के साथ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय के चुनाव का परिणाम आया, उसकी एक झलक आप देखें। लोगों ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
2: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन जानलेवा है। तंबाकू के इस्तेमाल से कैंसर, हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन और अंधापन जैसी अनेक खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना और शिक्षण संस्थान के 100 मीटर दायरे में तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। प्रदेश में गुटखा, खैनी और खुली सिगरेट बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध है।
2: प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने में सहयोग दें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ये आज भी जारी है। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर आज से शुरू हुए सेवा संकल्प अभियान के तहत विशेष श्रृंखला के माध्यम से आज हम जानकारी दे रहे हैं वक्फ रिफॉर्म्स 2025 के संबंध में। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और गरीबों के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि नए वक्फ कानून से गरीब और पिछड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों के अधिकार सुरक्षित होंगे और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
4: वक्फ कानून में बदलाव के बाद गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमांदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा।
1: हिमाचल प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने वक्फ संशोधन अधिनियम की सराहना करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार देश में मुस्लिम समुदाय का उत्थान हुआ है।
5: इससे पहले कभी भी जीएस मैपिंग, भारत की जितनी भी वक्फ संपत्ति है इनकी कभी भी जीएस मैपिंग नहीं हुई थी। पहली बार भारत सरकार ने जीएस मैपिंग कराई है मोदी जी के नेतृत्व में, और उससे पहले जो नाम मात्र के किराए उन जमीनों के आते थे, अभी जो कलेक्टर रेट, ताजा कलेक्टर रेट है, उस रेट पे आप वो जो दुकान है, चाहे मकान है, चाहे प्लॉट है, उनका किराया आप वक्फ बोर्ड को आना शुरू हो गया है। और वक्फ बोर्ड जो घाटे में, पूरी दुनिया में सबसे घाटे में वक्फ बोर्ड चल रहा था, वो वक्फ बोर्ड में दिन पे दिन सुधार हो रहा है। उसके साथ साथ भारत के मुसलमानों का सुधार हो रहा है, जैसे हमारे यतीम बच्चे हैं, विधवा महिला हैं, हमारे और भी कई ऐसे मकतब चले हुए हैं, मस्जिद है, मदरसे हैं, जहाँ से वक्फ बोर्ड उनको एड देता था, उसमें अब 4 गुना बढ़ोतरी पहली बार हुई है। गांव-गांव में हमारी जो शिक्षित बच्चियां हैं, जो सिलाई कढ़ाई का काम करती है, वहाँ सिलाई कढ़ाई केंद्र खोले गए हैं। उन केंद्रों पे जाके हमारी सैकड़ों लड़कियां सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही है, अपनी आजीविका कमा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार इस देश के मुसलमान का उत्थान हुआ है, इस देश के मुसलमान ने तरक्की की है।
1: पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में वर्षा और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हल्का हिमपात हुआ है। वर्षा व हिमपात से तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में करीब 14,551 फुट की ऊंचाई पर स्थित डिलब्रूरी परिक्रमा के दौरान बर्फबारी के चलते फिसलन के कारण 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
6: करीब 300 श्रद्धालु इस पवित्र यात्रा में शामिल हुए थे। यात्रा के दौरान पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक ठंड, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस और फिसलन के कारण 2 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं कई श्रद्धालुओं के घायल होने की सूचना है। फिसलने और ऊंचाई से संबंधित परेशानी के कारण घायल श्रद्धालुओं का केलंग अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस अधीक्षक लाहौल स्पीति शिवानी महला ने यात्रा के दौरान 2 श्रद्धालुओं की मौत और 1 श्रद्धालु के घायल होने की पुष्टि की है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए जिला पुलिस ने 3 टीमें तैनात की है। उन्होंने बताया कि करीब 30 श्रद्धालु अभी भी पुलिस के साथ वापस लौट रहे हैं।

0: खराब मौसम के बीच बचाव दल श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने में जुटे हुए हैं। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से सुरेंद्र कुमार।
1: इस बीच चंबा को पांगी से जोड़ने वाला साच पाच भी बर्फबारी के चलते बंद हो गया है, जिसे खोलने के प्रयास जारी हैं। चंबा के अतिरिक्त उपायुक्त अमित मेहरा ने मणिमहेश यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम को देखते हुए यात्रा करने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना से प्रदेश को बिना अतिरिक्त निवेश के मिलेगा 1500 करोड़ रुपए का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कांग्रेस सरकार ने विकास के मामले में प्रदेश को 4 दशक पीछे धकेला, विकास कार्य ठप। और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, लाहौल स्पीति में 2 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर। नमस्कार।
2: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
3: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
4: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद,
3: अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जाए।
5: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। रोजगार समाचार सुनिए। रोजगार विनिमय के माध्यम से जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश बैच वाइज जॉब ट्रेनी तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। कुल 7 पदों में सामान्य श्रेणी के लिए 3 पद, सामान्य IRDP के लिए 1 पद, सामान्य UWS के लिए 1 पद, SC के लिए 1 पद और SC BPL के लिए भी 1 पद आरक्षित है। आवश्यक योग्यताओं में उम्मीदवार ने 10वीं या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ड्राफ्ट्समैन ट्रेड में 2 वर्ष का डिप्लोमा हिमाचल प्रदेश या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ITI संस्थान से होना चाहिए। अन्य योग्यताओं में उम्मीदवार को हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाजों, परंपराओं और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए उपयुक्त होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों के नाम, उनके पूरे विवरण और पूर्ण डाक पते सहित अधीक्षण अभियंता जल शक्ति विभाग सर्कल कसुमटी शिमला 171009 हिमाचल प्रदेश पर दिनांक 21 सितंबर 2026 तक पहुंच जाने चाहिए। जनजातीय क्षेत्र के लिए समय सीमा 28 सितंबर 2026 है। उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने के बाद साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान निर्धारित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप रजिस्ट्रार जल शक्ति विभाग मुख्य कार्यालय टूटीगंडी शिमला से संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 01072832993। रोजगार समाचार अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आकाशवाणी का यह शिमला केंद्र है।
6: FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से कार्यक्रम चेयर फॉर भारत रिले किया जाएगा।

0: मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज के इस आधे घंटे के विशेष एपिसोड में हम जिन खेलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे उनमें एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और टेबल टेनिस प्रमुख हैं। हम जानेंगे कि पिछले एशियन गेम्स में इन खेलों में हमारी क्या स्थिति थी, हमने कौन से पदक जीते थे और इस बार किन दिग्गजों और युवा सितारों से देश को उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो बेहद खास मेहमान, जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थ सारथी और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मीडिया सलाहकार सायंतन मोइत्रो। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया।
2: थैंक यू सो मच।
0: शुरुआत करते हैं खेलों की रानी कहे जाने वाले एथलेटिक्स से। पिछले एशियन गेम्स में भारत का एथलेटिक्स में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था, जहां हमने 6 स्वर्ण, 14 रजत और 9 कांस्य मिलाकर कुल 29 पदक अपने नाम किए थे। मोना, आपके साथ शुरुआत करते हैं। नीरज चोपड़ा इस बार नहीं है, पिछले बार स्वर्ण पदक उनके नाम था। पारुल चौधरी की ऐतिहासिक दौड़ थी। तेजिंदर पाल सिंह तूर ने शॉटपुट में गोल्ड जीता और पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम का भी रिकॉर्ड प्रदर्शन था। नीरज के ना होने से आकर्षण थोड़ा फीका जरूर हुआ है, लेकिन किन खिलाड़ियों को आप मानती हैं कि यहां से पदक आ सकता है?
1: बिल्कुल, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स में एक ऐसा नाम बन चुके हैं कि जब वो मैदान पर उतरते हैं तो लगता है कि एशियाई खेलों में तो स्वर्ण पक्का माना जा रहा था, और लगातार उनके प्रदर्शन में जो निरंतरता रही है और एक जो स्टारडम है उनका, तो एक आम आदमी के मन में भी रहता है कि अच्छा नीरज चोपड़ा का मुकाबला कब है। देर रात दोहा डायमंड लीग या बाहर जब भी वो खेलते हैं, देर रात रात तक लोग जागकर उनके मुकाबले देखते हैं। तो अगर उस हिसाब से देखें तो एथलेटिक्स का जो सबसे बड़ा स्टार है वो नहीं है, लेकिन भारतीय एथलेटिक्स दल काफी बड़ा है, 74 खिलाड़ियों का, और जिसमें अविनाश साबले हो या पारुल चौधरी हो या तेजिंदर पाल सिंह तूर हो, जिनके आपने नाम लिए, वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जा रहे हैं और एक बार फिर उम्मीद उनसे होगी कि वो स्वर्ण पदक जीतकर उस पदक को बरकरार रखकर लौटें। जैसे अविनाश साबले हैं, स्टीपल चेस में हमारे बहुत बड़ी पदक उम्मीद है। पारुल चौधरी है, 5000 मीटर में गोल्ड जीता था, 3000 में रजत पदक जीता था, इस बार भी वो 1500, 3000 और 5000 में उतरेंगी, तो उनसे उम्मीद होगी कि वो जहां उन्होंने गोल्ड जीता है उसे बरकरार रखें और दूसरा पदक का रंग बेहतर करें। जेवलिन में नीरज की गैर मौजूदगी में यशवीर होंगे और रोहित यादव होंगे, जिनसे भी उम्मीद होगी, क्योंकि जेवलिन भारत में एक फिनोमिना बन चुका है, तो उम्मीद होगी कि वो नीरज से प्रेरणा लेकर कम से कम पोडियम पर खड़े हो सके। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले टीम हमेशा भारत की मजबूत दावेदार रही है पदक की। ज्योति यारा जी वापसी करी है, राष्ट्रमंडल खेलों में वो भार रही थी, 110 मीटर बाधा दौड़ में उन पर भी नजरें होंगी। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर होंगे, जिन्होंने 2023 में रजत पदक जीता था और ग्लासगो में भी वो रजत पदक जीत कर आए हैं। इनके अलावा गुरिंदर वीर है 100 मीटर और रिले टीम में भी वो है। अनिमेश कुजूर 100 मीटर 200 मीटर गुलवीर है, जो पिछले कुछ अरसे से काफी अच्छा उनका लगातार प्रदर्शन रहा है, तो 1500, 5000 और 10000 मीटर में उन पर नजरें होंगी। प्रवीण चित्रावेल है, जो त्रिकूद में भारत के पदक के दावेदार होंगे। डेकाथलन में तेजस्वीन शंकर है और एनसी सोजन जो लॉन्ग जंप में है, तो काफी सारा स्टार पावर है भारत के पास, और मुझे लगता है कि पिछले प्रदर्शन को अगर बेहतर नहीं कर सके तो दोहरा तो जरूर सकेंगे।
0: सायंतन, जब भी बात एथलेटिक्स की होती है तो चर्चा होती है कि किस तरीके की सुविधाएं खिलाड़ियों को मुहैया कराई जा रही हैं। हमने देखा कि एशियन गेम्स के पहले बहुत सारी सीरीज का आयोजन किया गया। चर्चा ये भी है कि एशियन गेम्स में रहने की व्यवस्था थोड़ी अलग है, तो पटियाला का जो साई सेंटर है वहां पर कुछ उस तरह के अरेंजमेंट्स किए गए खिलाड़ियों के लिए, ताकि उन्हें वहां जाकर कुछ नया अनुभव न हो, वो पहले से कंफर्टेबल हो सकें। थोड़ा जो भारत सरकार का खेल मंत्रालय है और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, किस तरह की सुविधाएं प्रदान की पिछले कुछ समय में इस एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर, उसके बारे में बताएं।
2: पहली बात तो देखिए, आपने पटियाला की जिक्र की, पटियाला के साथ बैंगलोर भी हम लोग शिपिंग कंटेनर्स जो है, जो जापान के आइची नकोया में होने वाले जहां पे एथलीट्स के एकोमोडेशन होंगे, तो उसका व्यवस्था, उसका एक्लेमेटाइज करने के लिए खेल मंत्रालय ने पहले से सोच के रखा था। और जब शिपिंग कंटेनर्स की बात किया जाएगा, छोटे से सबको लगता है कि क्लॉस्ट्रोफ्रोबिक है, सफोकेट होंगे, ये होंगे, छोटे से रूम है, तो लेकिन बात यह है कि हमारे सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट जो है हाइट के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो है तेजिंदर पाल तूर जी। लेकिन 40x8 जो हमने बेड्स बनाए, उन्होंने बताया कि मेरे को ये हॉस्टल के दिन याद आ जाते हैं। ये जो एडजस्टमेंट का, एक्लमेटाइज करने का ये व्यवस्था लिया गया खेल मंत्रालय से, ये उनको वहां जाके कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर, कोई फिजिकल प्रेशर ना अपनाना पड़े, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है एंड एथलीट्स आर वेरी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे. तो बेसिकली ये हमें और भी वो आगे जाने वाले जो प्रेशर होने वाले उससे काफी बचा रहा है.
0: मुना, आपने कई खिलाड़ियों की चर्चा की एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड की, जिनसे काफी उम्मीद है. सर्वेश कुशारे भी एक एथलीट हैं जो हाई जंप में हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीत कर आए हैं. हैमर थ्रो में अगर बात करें तो तानिया चौधरी हैं जिन्होंने एशियन गेम्स से ठीक पहले 68.35 मीटर का नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है. कुछ बड़े नामों के अलावा कुछ उन नामों के बारे में भी बताइए जिनसे उम्मीदें हैं और जो छुपा रुस्तम भी साबित हो सकते हैं.
1: देखिए, सबसे जैसे सायंतन ने अभी बताया कि जिस तरीके से खिलाड़ियों का पूल निकल कर आ रहा है, हर एक टूर्नामेंट में एक नया पूल हमारे सामने आता है और उसके लिए खेलो इंडिया से जो हमारे एथलीट्स निकल कर आते हैं, तो मुझे लगता है कि इन एशियाई खेलों में भी जो जाने माने नाम है उनके अलावा कई नए खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे, कई नए पदक विजेता हमें देखने को मिलेंगे. क्योंकि दो दिन पहले ही जो टॉप्स के सीईओ हैं एनएस जोहल, वो बता रहे थे कि जो हमारा कंटिंजेंट है उसमें मैक्सिमम जो है वो डेब्यूटेंट्स हैं इन खेलों में. 500 का जो दल है उसमें 300 खिलाड़ी डेब्यूटेंट्स हैं वर्ल्ड कप पे. तो आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं कि एशियाई खेलों में इस बार हमें नए पदक विजेता मिलने जा रहे हैं.
0: जी हाँ, जिसमें शैली सिंह से भी लॉन्ग जंप में उम्मीद होगी. मोहम्मद अफजल 800 मीटर में भारत की चुनौती पेश करेंगे. पैदल चाल में प्रियंका गोस्वामी एक बार फिर सबके उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगी. साथ ही साथ एनसी सोजन की भी आपने चर्चा की. जब साई इस तरीके के इवेंट में खिलाड़ियों पर नजर रखता है और आप काफी करीब से हैं, देख रहे हैं इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि ट्रैक और फील्ड में वो टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जो जरूर पोडियम फिनिश कर सकते हैं अगर उनका दिन बेहतर रहा तो?
2: देखिए, अब नीरज चोपड़ा सबसे बड़े सुपरस्टार है इंडियन एथलेटिक्स के, बट उनके ना होने के बावजूद भी रोहित यादव और यशवीर सिंह जो हमारे एक वाइल्ड कार्ड रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि नीरज चोपड़ा के साथ भी कोई एक भारतीय पोडियम पे चढ़ेंगे, बट वो जो अनएक्सपेक्टेड था वो हो चुका है. तो मेरे ख्याल से अभी अगर जैवलिन की बात किया जाए, अगर मैं जैवलिन पे फोकस करता हूँ, रोहित और यशवीर में से हम उम्मीद करेंगे कोई दो अगर आ जाए पोडियम पे तो भारत के लिए विन विन सिचुएशन है. उसके साथ भी एनसी सोजन की बात आपने की थी, एनसी सोजन ने अभी हाल ही में अंजू बॉबी जॉर्ज की जो रिकॉर्ड है 6.83 मीटर की, उन्होंने 6.88 मीटर उन्होंने जंप किया. तो आई थिंक मेरे ख्याल से अभी जो एनसी सोजन का कंसिस्टेंसी है, तो मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में एट द टाइम, क्योंकि वो सिल्वर मेडलिस्ट ऑलरेडी है हंजाओ से, उसके बाद में मैं बोलना चाहूंगा पूजा सिंह के बारे में. पूजा सिंह का 1.93 जो पर्सनल बेस्ट है
0: हाई जंप में
2: 2026 की कॉमनवेल्थ गेम्स में थोड़ा सा चूक हो गए थे, जहां पे वो 8th आई है 1.77 मीटर. तो काफी लोग पूछ रहे थे क्या वो कंपटीशन का प्रेशर है, तो मेरे ख्याल से वो कंपटीशन का प्रेशर ना भी हो, क्योंकि अगर वो 6th आई है 1.80 के ऊपर, तो 1.93 अगर वो बेंचमार्क को क्वालिफाई करती है, प्रीटी श्योर शी विल बी अ मेडल प्रोबेबल इन आईची नगोया एशियन गेम्स.
0: तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैक एंड फील्ड में भारतीय तिरंगा शान से लहराएगा. कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब चर्चा देश की शान हॉकी की. 2023 में हमारी पुरुषों की हॉकी टीम ने फाइनल में जापान को 5-1 से रौंद कर गोल्ड मेडल जीता था और ओलंपिक का टिकट भी कटाया था. वहीं हमारी महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए कांस्य पदक हासिल किया था. मुना, आप हॉकी वर्ल्ड कप अभी अभी कवर करके आई हैं और बात पुरुष हॉकी से शुरू करते हैं. उम्मीदों के अनुसार प्रदर्शन नहीं रहा था, लेकिन कहा जा रहा है कि एशियन गेम्स में अगर टक्कर मिलेगी तो जापान से मिलेगी, कुछ हद तक मलेशिया को भी हम काउंट कर लेते हैं, किस तरह देखते हैं?
1: जी बिल्कुल, इस बार जब विश्व कप के लिए टीम गई थी तो लग रहा था कि 75 के बाद हम पहली बार पोडियम पे शायद खड़े होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर निराशाजनक प्रदर्शन रहा. खासकर गोलकीपिंग की अगर हम बात करें तो पूरे टूर्नामेंट में लगा कि पीआर श्रीजेश की कमी कहीं ना कहीं टीम को खल रही है. तो एक ये ऐसा डिपार्टमेंट है, और डिफेंस जो आखिरी मिनटों में गोल गंवाना और फंबल करना, ये सब

0: जो कमियां हैं वो भारतीय टीम ने काफी इस पर आत्ममंथन किया होगा, और यहां पर दारोमदार एक बार फिर रहेगा कि आप जो कोर ग्रुप है वो वही है, उसी को लेकर जा रहे हैं। तो जो पेनल्टी, कॉर्नर कन्वर्शन और जो गोल कीपिंग में चूक हुई है उनसे यहां पार पाना पड़ेगा, लेकिन यहां चुनौतियां उतनी कठिन है नहीं। विश्व कप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों के सामने आप खेल रहे थे, यहां पर आपसे हायर रैंकिंग वाली टीम कोई है नहीं। तो एशिया में चुनौती देने वाली जो टीमें हैं, पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हॉकी का क्या हाल है वो हम सब देख ही रहे हैं। मलेशिया कभी एक अच्छी टीम हुआ करती थी, लेकिन आज की मलेशिया टीम उस स्तर की नहीं है कि वो भारतीय टीम को चुनौती दे सके। जापान जरूर एक डार्क हॉर्स है, क्योंकि ये एशियाई खेल जापान में ही हो रहे हैं, और 2018 में हमें याद है किस तरीके से अप्रत्याशित रूप से जापान ने स्वर्ण पदक जीतकर ओलंपिक क्वालिफाई भी किया था। तो हरमनप्रीत सिंह और मनप्रीत का भी मैं नाम लूंगी, सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा मैच भारत के लिए खेल चुके हैं, लेकिन जो वर्ल्ड कप में कमी नजर आई थी कि मिडफील्ड हमारा कहीं नजर ही नहीं आ रहा था, तो एक जो गैप्स मिडफील्ड में हो रहे हैं उनसे भारत को पार पाना होगा। और यहाँ जब हम लोअर रैंक टीम से खेलते हैं तो यहाँ पर कॉम्प्लिसेंसी से, आत्ममुग्धता से बचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड कप बीत गया, पीछे की बात है, उसको भुलाकर अब टारगेट जो है वो लॉस एंजलिस ओलंपिक है, उसको ध्यान में रखकर, क्योंकि हर टीम को चाहिए कि ओलंपिक की तैयारी के लिए एक लंबा समय मिले, और यहां से अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमें क्वालिफायर से नहीं गुजरना पड़ेगा, तो उससे बचना चाहेगी टीम। क्वालिफायर का रास्ता हमेशा कठिन होता है, एशियन गेम्स के जरिए लॉस एंजलिस का टिकट कटाना ये सबसे बड़ी अभी लक्ष्य जो है वो भारतीय टीम का यही होना चाहिए, पुरुष हॉकी टीम।
1: सायंतन, पुरुष हॉकी की थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विदेशी कोच हैं, मेंटल ट्रेनर भी हैं, फिजियो भी हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में थोड़ा फिटनेस का इशू नजर आया, क्या एशियन गेम्स से पहले उस पर तैयारी की गई है, उसको दुरुस्त किया गया है?
2: देखिए, अब हमें लॉस एंजलिस ओलंपिक्स का जो टारगेट है उसको मद्देनजर पे रखते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है एशियन गेम्स पे। विमेंस टीम अगर इतना अच्छा कर सकते हैं वहां पे फिफ्थ आ सकती है, तो मेंस टीम भी कहां पीछे, क्योंकि एशियन गेम्स में एक ट्रेंड चला है जहां पे मेंस हॉकी टीम से काफी एक्सपेक्टेशन है और गोल्ड के नीचे एक्सपेक्टेशन कभी नहीं है। तो उसी को साई इस बार मद्देनजर पे रखते हुए काफी सारे जापान में, जैसे माउंट फूजी में, जीफू में, तोयामा, ये सब जगहों में उन्होंने एक्सपोजर कैंप्स भी रखे ACTC के थ्रू, टॉप्स के थ्रू। काफी एक्सपोजर कैंप्स बोथ मेंस टीम और वुमेन्स टीम को मिले हैं। जैसे क्रेग फुलटन की जो साइड है उनको भी काफी हेल्प मिलेगा, और शॉर्ट मरीन की जो वुमेन्स टीम है उनको भी काफी हेल्प मिले। शॉर्ट मरीन का पता है आपको, वुमेन्स टीम को आके एकदम पूरा चार चांद लगा दिया, क्योंकि उन्होंने 2022 जब हॉकी में हम लोग
0: फोर्थ प्लेस
2: फिनिश जब हम लोग हॉकी वुमेन्स में लाए थे, तो शॉर्ट मरीन भी थे, वो वापस आ गए, और वुमेन्स का कितना डेवलपमेंट हुआ आपको पता भी है वर्ल्ड कप में जो आया है। मेंस का हम यही उम्मीद करेंगे कि वो लोग बरकरार रखे यही परफॉर्मेंस जो हमने एक्सपोजर दिया है, जो हमने कैंप्स दिया है जापान में एक्लेमेटाइज और भी करने में, वो मदद करे, एंड डेफिनेटली लॉस एंजलिस का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर सकते हैं।
1: महिला हॉकी की चर्चा करें, पिछली बार हम सेमीफाइनल में 0-4 से हार गए थे चीन से। इस बार जिस तरीके का विश्व कप में प्रदर्शन रहा, जैसा कि सायंतन बता रहे थे और हमारे खेल प्रेमी जानते भी है कि हम पांचवें स्थान पर रहे, कितनी उम्मीदें हैं और टक्कर किस देश से आप देख रही हैं?
0: देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड कप जाने से पहले जो बैकग्राउंड रहा है उसको देखते हुए हर कोई बात कर रहा था कि पुरुष हॉकी टीम क्या करेगी, क्या मेडल मिलेगा, क्या 50 साल का सूखा खत्म होगा, लेकिन जिस तरह से लड़कियों ने प्रदर्शन किया है, और आपको ये बात यहाँ ध्यान में रखनी होगी कि इस टीम में 11 खिलाड़ी ऐसी थी जो पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी, और 20-21-22 साल की 11 लड़कियां, तो महिला हॉकी टीम के पास ऊर्जा है, फिटनेस है, और शॉर्ट मारिन जैसा एक कोच है। जब वो पिछली बार आए थे तब भी डोलड्रम में थी विमेन हॉकी, और उस हॉकी टीम को वो टोक्यो में चौथे स्थान तक लेकर गए। अभी भी आप देखिए, नेशंस कप जीता, क्वालिफायर जीता वर्ल्ड कप के लिए, और उसके बाद अब प्रबल दावेदार मानी जा रही है। और एशियाई स्तर पर चाइना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसके पास अनान एलिसन जैसी एक बेहतरीन कोच है, लेकिन हम विश्व कप के प्रदर्शन को अगर देखें तो उसी चाइना से हमारा सबसे पहला मुकाबला था और हमने उसको ड्रॉ पर रोका। तो एक बहुत बड़ा एक मेंटल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास, कि जो एक हवा होता था चाइनीज टीम का वो अब नहीं है, और ये टीम अपना दिन होने पर चाइना को हरा सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और गोलकीपरों का प्रदर्शन हमने देखा, सविता लेजेंडरी प्लेयर है, और 320 मैच हो जाएंगे जैसे ही वो पहले मैच के लिए उतरेंगी, तो सविता का अनुभव है। उसके अलावा बिच्छू देवी ने जो प्रदर्शन किया है।

0: विश्व कप में, खासतौर पे इंग्लैंड के खिलाफ जो लास्ट 30 सेकंड में उनका सेव था। तो बिच्छू देवी पर भी यहाँ नजरें होंगी, चुनौती बहुत कड़ी नहीं है और भारतीय टीम के पास एक पूरा कोचिंग स्टाफ है हर फील्ड के लिए, हर चीज के लिए। आप चाहे शोर्ट मारिन के साथ आप देखिए, वेन लोम्बार्ड है, जब वो यहाँ आए थे जनवरी में उनके पास 25 खिलाड़ियों की इंजरी लिस्ट थी, लेकिन आज आप टीम का फिटनेस लेवल देखिए। ताइके तकामा दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रैग फ्लिकर में से एक थे, वो भारतीय ड्रैग फ्लिकर दीपिका खासतौर पे उनको ट्रेन कर रहे हैं। उसके अलावा पिरमिन ब्लाक एक लेजेंडरी गोलकीपर रह चुके हैं डच, उन्होंने बिच्छू और सविता के साथ सेशन किए हैं। और मथियास विला अर्जेंटीना के जो एडवाइजर है, असिस्टेंट कोच भी है। उसके अलावा रोडेट और कियारा जो साइंटिफिक ट्रेनर हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार 1982 में हमने गोल्ड जीता था महिला हॉकी में, और मुझे लगता है इस बार पूरी प्रबल संभावना है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से माहौल है, अपबीट है टीम, ये टीम जरूर इस बार गोल्ड मेडल लेके आएगी।
1: चलिए हॉकी के बाद चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट पर। बैडमिंटन कोर्ट पर भारत का पिछला प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा था। 2023 में यानी पिछले एशियन गेम्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुषों के डबल्स में भारत को एशियन गेम्स के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। इसके अलावा पुरुष टीम ने रजत पदक और एचएस प्रणॉय ने पुरुष सिंगल्स में कांस्य पदक जीता था। और इस बार अगर हम आपको बताएं कि कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, तो मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी होंगे पुरुष वर्ग में, साथ ही साथ महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु और उन्नति हुड्डा अपनी चुनौती पेश करेंगी। मेंस डबल्स में एक बार फिर सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पर नजर होगी। हरी हरन और एमआर अर्जुन की जोड़ी भी चुनौती पेश करती नजर आएगी। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद के साथ साथ कविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंह भी होंगी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी अपनी चुनौती पेश करती नजर आएंगी। मोना, एक तरफ तो अनुभव है पीवी सिंधु का, लक्ष्य सेन भी हैं अगर पहले हम सिंगल्स की बात करें, लेकिन जो बड़ा इन्वर्टेड कॉमा है, दोनों फॉर्म में नहीं है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन ओलंपिक पदक विजेता है दो बार की पीवी सिंधु, और लक्ष्य सेन हम सभी जानते हैं कि वो मामूली अंतर से ओलंपिक पदक से चुके हैं, तो काबिलियत पे कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि फॉर्म जो होता है वो टेम्परेरी होता है, लेकिन क्लास जो होता है वो परमानेंट होता है, और पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के पास वो क्लास है कि अगर वो अपनी क्षमता पर खेले तो बिल्कुल स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदारों में होंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी दावेदार है वो निश्चित तौर पर, जैसे आपने कहा, चिराग और सात्विक, पिछली बार भी गोल्ड जीता है और निरंतरता है उनके प्रदर्शन में कि कम से कम वर्ल्ड लेवल पे भी वो सेमीफाइनल तक जरूर जाते आए हैं, तो उनसे एक बार फिर यहाँ उन पर काफी दारोमदार होगा। और लड़कियों में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद, जिस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने इतिहास रचा है, और एक कोर ग्रुप आप देखिए लगभग वही है जो हर बड़े टूर्नामेंट में आप देखते हैं भारतीय बैडमिंटन का, तो यहाँ पर त्रिशा और जौली से भी ये उम्मीद होगी कि वो जो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी ज्यादा समय हुआ नहीं है उसको, तो वो जो लय है उसको बरकरार रखे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज है उसको थोड़ा बेहतर करते हुए एक अच्छा भारत के लिए मेडल हॉल लेकर आए।
1: साइंथन, बैडमिंटन एक ऐसा खेल जिस पर खेल मंत्रालय और साई की पैनी नजर रहती है और बहुत सारे उसमें इनोवेशन भी करते रहते हैं। जूनियर लेवल पर आप विदेशों में खिलाड़ियों को भेजते हैं ट्रेनिंग के लिए, विदेशी कोचेस को बुलाते हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट है जरूर, लेकिन बहुत सारी चीजें चल रही हैं इसमें। किन खिलाड़ियों से आपको उम्मीद है?
2: जैसे अभी बताया गया कि त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप दिल्ली में उन्होंने ऐसे करके दिखाया जो कुछ लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, काफी स्पोर्ट्स फैंस भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं बोलना चाहूंगा हंजाओ में वो लोग राउंड ऑफ 16 में आए थे, लेकिन अगर ये BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो फॉर्म दिखाए वो लोग, जो डबल्स वुमेन्स पेयर, तो यू नेवर नो कि वो लोग कौन से स्टेज तक जा सकते हैं। और ये एशियन लेवल है तो एशियन लेवल में कंपटीशन आएगा, चाइना से आएगा, कोरिया से आएगा, जापान, थाईलैंड ऑफ कोर्स, लेकिन अगर वो लोग उस कॉन्फिडेंस, उस मोरल को लेके आगे जाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन डू समथिंग। उसके बाद मैं आऊंगा आयुष शेट्टी में। आयुष शेट्टी ने एशियन चैंपियनशिप्स में हिस्ट्री 2026 में, इसी साल में किया था कि 1965 के बाद पहला खिलाड़ी जो एशियन चैंपियनशिप्स के फाइनल में और सिल्वर मेडल भी लाए, तो आयुष शेट्टी से भी यही उम्मीद है एंड डेफिनेटली होपिंग कि अच्छा कुछ बैडमिंटन में हो सकता है। एंड डेफिनेटली सात्विक चिराग एक डार्क हॉर्स है जो कंपटीशन में बाहर आते हैं, तो वो वाला चीज भी हमें देखने को मिल सकता है। तो देयर इज ऑप्टिमिज्म इन बैडमिंटन, जो ऑफ कोर्स हम लोग सब विश करेंगे कि होपफुली आईजी ने कोया में वो बाहर आए।
1: जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भारतीय एथलीट अपनी चमक बिखेरे हम सबकी उम्मीद है, लेकिन अब रुख करते हैं माटी के खेल कबड्डी की ओर। कबड्डी में भारत का दबदबा हमेशा से रहा है। पिछले एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम ने ईरान को एक रोमांचक फाइनल में हराकर स्वर्ण पदक वापस हासिल किया था। वहीं भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ताइपे को हराकर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। मोना, हम सब जानते हैं कि कबड्डी में टीम अच्छी है और जब से कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है फिटनेस लेवल भी आला दर्जे का हो गया है, लेकिन ईरान, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे जैसी टीमें हमसे टकराएंगी, कितनी संभावना है इस बार?
0: देखिए, ईरान की ही चुनौती सबसे कठिन लग रही है भारत के लिए, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो पास्ट रिकॉर्ड है 1990 के बाद लगातार 9 स्वर्ण। तो पहले ये होता था कि एशियन गेम्स में जब टीम कंटिंजेंट रवाना होता था तो ये मान लिया जाता था कि एक गोल्ड तो झोली में है ही कबड्डी का, लेकिन ईरान ऑफ लेट भारत के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुआ है। लेकिन जैसे आपने कहा, प्रो कबड्डी लीग आने के बाद से जो स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का हमारे, वो बहुत बहुत आगे जा चुका है। पवन सहरावत आज जाना माना नाम हो चुके हैं और काफी अच्छे खिलाड़ी भारतीय टीम के पास हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ये स्मूथ ही रहने वाला है जर्नी। और महिला टीम की भी अगर हम बात करें तो ईरान ने हराया था भारत को हाल ही में, तो एक ईरान ही है वहां पर भी जो बहुत संभल कर उससे खेलना होगा, और अगर अपनी क्षमता के अनुरूप खेल पाए तो मुझे लगता है एक बार फिर हम दोहरा स्वर्ण यहाँ लेकर आ सकते हैं कबड्डी से।
1: जी हाँ, सायंतन पवन सहरावत की चर्चा हो रही है, अर्जुन देशवाल हैं, असलम इनाम दार हैं, आशु मलिक, देवांग दलाल, आयान लोचब, सुनील कुमार, कुछ चहेते नाम भारतीय कबड्डी फैंस के लिए, लेकिन टक्कर काफी मुश्किल होने वाली। महिला टीम से कितनी उम्मीदें हैं आपको?
2: देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जब एशियन गेम्स में हमारे टीम स्पोर्ट्स की बात किया जाता है तो हमेशा 6 मेडल्स तो हमारे लिए पक्का होता है, 2 मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी टीम का, 2 मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेट टीम का और 2 हॉकी टीम्स के। पवन शेरावत के बाद जो आपने किया, पवन शेरावत, मैं पहले पीकेएल की बात करूंगा आपसे। 12 खिलाड़ी जो है पीकेएल से, वो कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है विभिन्न टीम्स का पीकेएल में, वो लोग एशियन गेम्स में भी अपना प्रदर्शन करने वाले। जैसे पवन शेरावत का नाम लिया आपने, तमिल थलाईवास के कैप्टन रह चुके हैं, पिछले बार के हांजू का गोल्ड मेडलिस्ट भी है। सुनील कुमार जो नेतृत्व करने जा रहे हैं, वो यू मुंबा के कैप्टन भी है। तो काफी ऐसा प्रो कबड्डी लीग का एक्सपीरियंस भी हमको दिखने को मिलेगा। साई गांधीनगर में भी उनका ट्रेनिंग का एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर साई गांधीनगर में तैयार किया था। उसके पहले IIS बिलारी जो कर्नाटका में है, वहां पे भी एक टीम का बढ़िया से ट्रेनिंग कैंप किया गया था कबड्डी के लिए स्पेशली। तो मेरे ख्याल से अभी जो हाल ही में बात हुआ था मेरा कबड्डी टीम से, पुष्पा राणा जो है कैप्टन जो है विमेंस टीम का, वो भी काफी कॉन्फिडेंट है, और साथ ही साथ सुनील कुमार भी काफी कॉन्फिडेंट है जो मेंस टीम का कप्तान है। एंड ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो एज ग्रुप है मेंस टीम का, स्पेशली 20 से 29 का एज रेंज में है, जिस एज में हम लोग कबड्डी में अपना पीक परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। कॉम्पिटिशन है तो ईरान से है हमारा, अगर कोरिया से भी आ सकता है, चाइना से भी आ सकता है, लेकिन एडवांटेज है हमारे पास, वी आर देयर टू विन द गोल्ड मेडल। बट थोड़ा सा अगर इधर उधर हो जाता है तो वो गेम टू गेम हो सकता है, बट आई थिंक मेडल हम दावे के साथ कह सकते हैं कि कंफर्म्ड है जो स्वर्ण होने जा रहा है।
1: आइए अब बात करते हैं वेटलिफ्टिंग की, जहां ताकत, तकनीक और एकाग्रता की परीक्षा होती है। पिछले एशियन गेम्स में चोट और कड़े मुकाबले के कारण भारत का वेटलिफ्टिंग अभियान थोड़ा निराशाजनक जरूर रहा था। मीराबाई चानू भी चोट के कारण पदक से चूक गई थी। मुना, यहाँ पर कोई पुरुष वेटलिफ्टर प्रतियोगिता में जा नहीं रहा है, और एक बार फिर जो महिला टीम है उसमें मीराबाई चानू से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार 3रा स्वर्ण पदक जीत कर आई हैं, 49 किलोग्राम वजन वर्ग में अपनी चुनौती पेश करेंगी, क्या लगता है?
0: जी बिल्कुल, ऋषि कांता सिंह को जाना था लेकिन घुटने की चोट की वजह से वो टीम से बाहर हो गए। तो 4 महिलाएं, वुमेन पावर जो है वो वेटलिफ्टिंग में देखने को मिलेगा। और मीराबाई चानू अभी ग्लासगो में लगातार 3रा स्वर्ण पदक उन्होंने जीता, और एक उनकी जो कैबिनेट है उसमें एक यही मेडल है जो नहीं है। पिछली बार बहुत कोशिश की लेकिन चोटिल थी और 4थे स्थान पर रही। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि मीराबाई चानू जो है वो इस कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगी। उनके अलावा ज्ञानेश्वरी यादव है 53 किलो में, निरुपमा देवी है 61 किलो में, और हरजिंदर कौर है 69 किलो में। तो इन चारों महिलाओं से उम्मीद होगी कि भारत ने वेटलिफ्टिंग में काफी सारे 14 पदक जीते हैं लेकिन स्वर्ण पदक एक भी नहीं है। एशियन गेम्स का, तो वो कमी को पूरा करने के लिए मीराबाई चानू पर काफी दारोमदार होगा।
1: और अब बात टेबल टेनिस की, जहां भारत ने हाल के वर्षों में अद्भुत प्रगति की है। पिछले एशियन गेम्स में सुतीर्थ मुखर्जी और अहिका मुखर्जी की जोड़ी ने दुनिया की नंबर एक चीनी जोड़ी को हराकर विमेंस डबल्स में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। इस बार फिर जी साथियन पर नजर होगी, मानव ठक्कर होंगे, श्रीजा अकुला और

0: जैसे आपने बात किया, उनके साथ भी मिक्स डबल्स खेलने जा रहा है। तो शरत कमल जो हमारे असिस्टेंट शेफ डे मिशन भी है एशियन गेम्स के, वो भी इनको डायरेक्टली ट्रेन किया है, सबसे फेमस टेबल टेनिस प्लेयर इन इंडिया। तो मेरे ख्याल से मानु शाह, मानव ठक्कर, दिया चिताले, इन तीनों में से काफी हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। और साथ ही साथ श्रीजा अकुला भी है, हाईएस्ट रैंक्ड वुमेन्स प्लेयर राइट नाउ आफ्टर मनिका बत्रा एंड सुतीर्था, जैसे आपने जिक्र किया। तो इनसे आई थिंक मेंस टीम, वुमेन्स टीम, काफी सारे कॉम्पिटिशन में, काफी सारे कैटेगरीज में हम लोग अच्छा उम्मीद कर सकते हैं टेबल टेनिस के।
1: और अब बात उस खेल की जो भारत में ही नहीं दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय है। जी हां, क्रिकेट। 2023 एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता था और इस बार भी उम्मीद यही है। टक्कर कहीं देखती है मोना?
2: बिल्कुल, जैसे सैंतन कह चुके हैं कि वो कुछ पदक है जो हमें लग रहा है कि हमारी झोली में है पहले से, तो क्रिकेट सबसे ऊपर उसमें नाम आता है। महिला टीम की बात करें तो अभी अभी एशिया कप जीती है, जबरदस्त आत्मविश्वास है और हमने देखा कि एशियाई स्तर पर कोई टक्कर नहीं है भारतीय महिला टीम के लिए। और पुरुष टीम में तो वैसे ही सितारे भरे हुए हैं, श्रेयस अय्यर हो, वैभव सूर्यवंशी हो, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई चुनौती दूर दूर तक भारत के लिए नजर आती है।
1: सायंतन, कार्यक्रम के समापन में क्या उम्मीदें हैं साई को, क्या उम्मीदें हैं खेल मंत्रालय को और क्या उम्मीदें हैं बतौर मीडिया सलाहकार साई से जुड़े आपको?
0: लास्ट टाइम जितना कंटिंजेंट थे उससे काफी कम कंटिंजेंट इस बार जा रहा है, 501 पार्टिसिपेंट जा रहा है, लेकिन 107 मेडल्स जो लास्ट टाइम आए थे उससे भी हम एटलीस्ट 25% इंक्रीज की उम्मीद कर सकते हैं। तो हमारा ग्राफ यही रहेगा कि हम लोग तो थोड़ा सा कम कंटिंजेंट भेज रहे हैं, लेकिन वो कंटिंजेंट और भी मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे कुछ लोग, मंत्रालय से डिसीजन लिया गया कि कुछ लोग को जस्ट पार्टिसिपेशन एक्सपोजर के लिए हम लोग नहीं भेजेंगे, बट जो मेडल के दावेदार है उनको ही भेजेंगे, क्योंकि ये रूल पहले से किया गया कि एथलीट्स का ट्रेनिंग देखते ही हमने ये फैसला लिया कि एथलीट्स अभी वो लोग मेडल जीतने के लिए जाते हैं। एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है और साई ने, खेल मंत्रालय ने भी इसी चीज को मद्देनजर पर रखते हुए इस बार जो 501 एथलीट्स को भेज रहे हैं और भी 25% इंक्रीज एटलीस्ट हम उम्मीद कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वो होके ही रहेंगे एशियन गेम्स 2026 में।
1: मैदान तैयार है, रोशनी जगमगा रही है और तिरंगा जीत की उम्मीद लेकर आसमान में लहरा रहा है। तो जब भी कोई भारतीय खिलाड़ी मैदान में उतरे, तालियां जरूर बजाइए, हौसला बढ़ाइए और दिल से कहिए चीयर फॉर भारत। चीयर फॉर भारत के इस अंक से जुड़ने के लिए मोना पार्थसारथी आपका, सायंतन मोइत्रो आपका बहुत बहुत आभार।
2: शुक्रिया आनंद।
0: थैंक यू सो मच।
1: इस कार्यक्रम में प्रोडक्शन सहयोग दिया स्वाति कपूर ने, इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया शाहनवाज खान ने। आकाशवाणी पर कल इसी समय एशियन गेम्स पर एक विशेष कार्यक्रम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 370
1: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं। आपसे कुछ ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धता प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमरीका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू हुआ और दिल्ली में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में

0: सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
1: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
0: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इस चरण में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं।
1: सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में एक शब्द इस्तेमाल होता है, टैप आउट। ये वो दिन होता है जब चिप डिजाइन पूरा होने के बाद प्रोडक्शन के लिए चली जाती है, लेकिन टैप आउट के बाद काम रुकता नहीं है, उसी दिन अगले वर्जन पर काम शुरू हो जाता है और भारत भी यही कर रहा है। हमारे पहले फेज का साइज लगभग 8 बिलियन डॉलर्स का था, जबकि सेकंड फेज का 13.5 बिलियन डॉलर्स तक का हमने तय किया है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमिकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही।
2: अप्रोच इन सेमिकॉन 2.0,
3: सेमिकॉन के दूसरे चरण में मुख्य रूप से डिजाइन कंपनियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वे स्टार्टअप हों या बड़ी कंपनियां। बड़ी कंपनियां सेमीकंडक्टर डिजाइन के क्षेत्र में आना चाहेंगी क्योंकि अब इसका दायरा बहुत बड़ा है और अवसर भी अपार हैं। स्टार्टअप ऐसे नवोन्मेषी समाधान ला सकते हैं जिन्हें बाजार पसंद करेगा।
2: इनोवेटिव सॉल्यूशंस व्हिच विल बी लाइक बाय द मार्केट।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और कई अन्य कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही हैं। सरकार ने कहा है कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमेरिका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूरी हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुक छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए भी समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री छरिंग तोबगे को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। इस समय दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्त

0: करण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रुपए जमा किए जाएंगे।
1: आज अन्नपूर्णा योजना के रूप में बंगाल की माताओं बहनों से नया सामर्थ्य जुड़ा है। मैं इस योजना से लाभ पाने वाली हर बहन को बधाई देता हूँ। घर में हमारी माताओं बहनों के कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अनेक छोटे बड़े फैसलों के बीच एक महिला हर तरीके से परिवार का ख्याल रखती है।
0: प्रधानमंत्री जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। आकाशवाणी समाचार सेवा संकल्प अभियान पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानेंगे कि कैसे इस दृष्टिकोण को MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब देश की बागडोर संभाली थी तो उनके सुशासन के विजन में सरकार और जनता के बीच सीधा और निरंतर संवाद स्थापित करने का विचार प्रमुखता से सामने आया। इसी सोच के साथ जुलाई 2014 में नागरिकों की भागीदारी के लिए MyGov प्लेटफॉर्म की शुरुआत की ताकि नीति निर्माण में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित की जा सके। जनवरी 2024 में नई दिल्ली में NCC कैडेट्स रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैडेट से MyGov प्लेटफॉर्म पर जाकर विकसित भारत के अपने सुझाव देने का आह्वान किया था।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए रोडमैप बनाने का काम चल रहा है तो उसमें आपकी भागीदारी बहुत बड़ी है। आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप MyGov पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए छत्तीसगढ़ के रहने वाले रोहन राज ने MyGov को एक अच्छी पहल बताया।
4: MyGov के जरिए लोग सरकारी योजनाओं और सरकार के अलग अलग कामों की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही लोग अपनी राय और सुझाव भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि लोग को सिर्फ जानकारी लेने का मौका नहीं मिलता बल्कि अपनी बात रखने का और देश के विकास में भागीदारी करने का भी मौका मिलता है।
2: इस MyGov प्लेटफॉर्म पर इस साल जुलाई तक लगभग 6.5 करोड़ नागरिक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करने में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने तिब्बती शरणार्थियों को पिछले 6 दशकों से अधिक समय तक शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी आज से शुरू हो गई। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। ऑनलाइन नीलामी pmmementos.gov.in पर 31 अक्टूबर तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये पता लगाने के निर्देश दिए हैं कि विकसित भारत जी रामजी योजना विकसित गांवों के निर्माण में किस प्रकार योगदान दे सकती है। एक कार्यशाला में श्री चौहान ने कहा कि योजना का उद्देश्य रोजगार प्रदान करने के साथ साथ ऐसी संपत्तियों का निर्माण करना है जो ग्रामीण समुदायों के दीर्घकालिक उपयोग में आए और गांवों को आत्मनिर्भर तथा विकसित बनाने में सहायक हों। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश में डॉपलर मौसम रडारों की संख्या 14 से बढ़कर 51 हो गई है। ओडिशा के संबलपुर में देश के 51वें अत्याधुनिक डॉपलर

0: मौसम रडार का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि मिशन मौसम के अंतर्गत लगभग 40 और रडार स्थापित करने की योजना है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्नत अवलोकन क्षमताएं विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण हैं जो आंधी, बिजली, मूसलाधार वर्षा और अन्य मौसम संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में प्राथमिक शिक्षकों के लिए 6 महीने का एक विशेष ब्रिज कोर्स शुरू किया। ये कोर्स बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री रखने वाले शिक्षकों के लिए है। इसमें शिक्षकों को बच्चों को और अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए व्यापक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां चरण शुरू किया। इस चरण में 9 कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित 25 कोयला खंडों की नीलामी की जा रही है। इनमें 21 पूर्णतः और 4 आंशिक रूप से अन्वेषित खदानें शामिल हैं। 9 कोयला उत्पादक राज्यों में अब तक कुल 147 कोयला खदानों की नीलामी हो चुकी है। इस वर्ष अगस्त में भारत का वस्त्र निर्यात बढ़कर 29,700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त में निर्यात में 16.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अगस्त 2026 के दौरान वस्त्र निर्यात 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक तक पहुंच गया। इसमें पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3% की वृद्धि है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: सेंसेक्स 22 अंक की मामूली गिरावट से 74,315 के स्तर पर रहा, जबकि निफ्टी 53 अंक की मजबूती से 23,271 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया मामूली सुधार से 95.94 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब बात खेलों की। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 T20 मैच की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला दिल्ली में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18वें ओवर में 4 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंद पर 108 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। वे भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 30 गेंद में शतक पूरा किया। भारत 2 मुकाबले जीतकर पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। मौसम विभाग ने कल बिहार, राजस्थान, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। कल उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ तूफान आने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच भारत को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय सेमीकंडक्टर विनिर्माण केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया। सेमिकॉन के दूसरे चरण के अंतर्गत 1,00,000 करोड़ रुपए की निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई। रूस से कच्चे तेल खरीदने वाले देशों पर 100% शुल्क लगाने वाला विधेयक अमेरिका में पारित। भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन और सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे होने पर देश भर में 1 महीने तक चलने वाला सेवा संकल्प अभियान शुरू। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi positions India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. 1,00,000 crore rupee investment commitment received under Semicon 2.0 program. India asserts it will take all necessary steps to ensure energy security as US passes bill imposing 100% tariffs on countries procuring Russian crude oil. External Affairs Minister Dr. Jaishankar says India firmly committed to Bhutan's progress. Month-long Seva Sankalp Abhiyan begins across the country, marking Prime Minister Narendra Modi's 76th birthday and 25 years in public service. And in men's cricket, India and Afghanistan face off in the third and final match of the T20 series in Delhi. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing.

0: through inclusive development and social empowerment. In the special series Seva Sankalp Abhiyan, we bring you an example of how this vision is being translated into action through MyGov platform.
1: When Prime Minister Narendra Modi assumed office in 2014, one of the ideas that emerged prominently from his vision of governance was to create a direct and continuous interface between the government and citizens. The vision led to the conceptualization and launch of India's citizen engagement platform, MyGov, in July 2014. The platform has emerged as an important medium for ensuring people's participation in governance and policy making. In his address at the NCC cadets rally in New Delhi in January 2024, Prime Minister Narendra Modi has urged the cadets to provide their suggestions for Viksit Bharat by visiting MyGov, as they are the architects of Viksit Bharat.
2: Viksit Bharat ke nirman ke liye roadmap banane ka kaam chal raha hai. To usme aapki bhagidari bahut badi hai. आप जैसे युवाओं के लिए ही सरकार ने मेरा युवा भारत यानी माय भारत संगठन भी बनाया है। मैं आप जैसे सभी युवाओं को कहूंगा कि मेरा युवा भारत संगठन में खुद को जरूर रजिस्टर कराएं। आप माय गांव पर जाकर विकसित भारत के निर्माण के लिए भी अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सपने आपकी भागीदारी से ही पूरे होंगे। आप ही विकसित भारत के शिल्पी हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, देश की युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है।
1: टॉकिंग टू आकाशवाणी न्यूज, अ रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़ रोहन राज टर्म द MyGov प्लेटफॉर्म एज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम फॉर शेयरिंग फीडबैक एंड सजेशन इन फॉर्मुलेटिंग गवर्नमेंट्स स्कीम्स एंड पॉलिसीज।
3: थ्रू माई GOV पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स। दे कैन ऑल्सो शेयर देयर आइडियाज, ओपिनियंस एंड सजेशंस विद द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो प्रोवाइड क्विज, कॉम्पिटिशन एंड ऑनलाइन एक्टिविटी वेयर स्पेशली यंग पीपल कैन पार्टिसिपेट। So my government gives people a simple way to connect, to inform, share their ideas and take parts in the development of the country.
1: By July 2026, nearly 6.5 crore citizens had registered on the MyGov platform. Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
0: Prime Minister Modi today said the BJP government in West Bengal aims to ensure that not a single eligible woman is deprived of the benefits of the Annapurna Yojana and is working relentlessly towards that goal. Mr. Modi stated this while virtually addressing a gathering in West Bengal during the release of the installment under the Annapurna Yojana, providing 3,000 rupees per month to around 1.5 crore women.
2: अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत इसी सोच के साथ हुई है। सरकार बनाने के कुछ ही दिनों के भीतर इस योजना पर काम शुरू हुआ और आज इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं तक सीधे बैंक में पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। कोई कटमनी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं। हमारी सरकार का ये भी लक्ष्य है कि एक भी पात्र महिला अन्नपूर्णा योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए भी

मासूम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आरती मुखर्जी की आवाज़ में। श्रोतो, एक ही कलाकार शीर्षक के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री शबाना आज़मी पर फिल्माए कुछ गीत। शबाना आज़मी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता कैफी आज़मी एक जाने माने उर्दू शायर और कवि थे तथा माता शौकत आज़मी एक प्रसिद्ध थिएटर अभिनेत्री थी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी में स्नातक किया और इसके बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से अभिनय का प्रशिक्षण लिया था। तो आज हम आपको सुनवा रहे हैं शबाना आज़मी पर फिल्माए कुछ गीत। तो आइए अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत। फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई।

अर्थ मासूम मंडी खंडहर पार और निशांत उनकी बेहतरीन और यादगार फिल्में हैं। शबाना आजमी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए रिकॉर्ड 5 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। भारत सरकार ने उन्हें कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1998 में पद्मश्री और 2012 में पद्मभूषण से सम्मानित किया था। उनका विवाह प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर के साथ 1984 में हुआ था। वे महिला अधिकारों, मलिन बस्तियों के विकास और सामाजिक सुधारों के लिए एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी जानी जाती हैं। उन्हें राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया गया था। तो आइए सुनते हैं एक और गीत।

तो इस गीत के साथ ही आज का एक ही शीर्षक पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज आप सुन रहे थे शबाना आजमी पर फिल्म आए कुछ गीत। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं रंगे गजल।

बाजार फिल्म से ली गई ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में और आशा भोसले की आवाज़ में। अब हम आपको सुनवा रहे हैं उमराव उबराव जान फिल्म की ये गज़ल।

सुरेश वाडेकर की आवाज़ में ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे फिल्म गमन से। गुलाम अली की आवाज़ में अगली गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म निकाह से।

रंगे गजल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। जगजीत सिंह की आवाज में अब हम आपको सुनवा रहे हैं अर्थ फिल्म से ली गई ये गजल।

तो इस गज़ल के साथ ही आज का गज़लों का ये कार्यक्रम रंगे गज़ल यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है FM बैंड 103.4 MHz पर। शाम के रात्रि के 10 बज चुके हैं और आइए सुनते हैं हिमाचली गीत व लोक गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इंद्रराज की आवाज़।

ये लोकगीत अभी आपने सुना करनैल राणा की आवाज़ में। आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं हिमाचली गीत और लोकगीत। तो अब हम आपको सुनवा रहे हैं अजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये लोकगीत।

शेर सिंह की आवाज़ में गाए इस लोकगीत के साथ ही आज का हिमाचली गीतों और लोकगीतों का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे पारस मणि फिल्म का ये गीत। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़, फिल्म है दिल ही तो है।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म दिल ही तो है से। तेरी यादों का सहारा ना होता तो शायद ये दिल यूं बेचैन ना होता। हर शाम तेरे ख्यालों में ढल जाती है और हर रात तेरा नाम गुनगुनाती है। बहाना तो बस आंखों के आंसू हैं, असल में दिल आज भी तेरा दीवाना है। तू पास नहीं फिर भी महसूस होता है, जैसे हर धड़कन में तेरा ठिकाना है। सदाबहार गीत आप सुन रहे हैं, आकाशवाणी के धर्मशाला के अंदर से कार्यक्रम है चित्रपट संगीत। अगला गीत एक ब्रेक के बाद।
1: बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई, क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स, असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

अनजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी। बेजान छतों में जान डालने निकला है कोई। क्वालिटी की हर कसौटी पर खरा उतरने वाला, 20 साल की असली वारंटी देने वाला SEL टाइगर रूफिंग शीट्स। असली वारंटी, यही है टाइगर की गारंटी।

अमर फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। श्रोताओं, आपको बता दें कि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम

0: नीलकमल फिल्म से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे, और इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है, शाम रात्रि के 11 बजने को है। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए पसंदीदा केंद्र बनने के लिए हर महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं को हथियार की तरह उपयोग करने के बीच दुनिया को नए और विश्वसनीय विनिर्माण केंद्रों की आवश्यकता है, और भारत इस जरूरत को पूरा करने की तैयारी कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार हो रहा है और इससे नवाचार, निवेश तथा विकास के नए अवसर खुल रहे हैं।
2: बीते एक दशक में भारत ने अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी एक्सपेंड किया है। साथियों, भारत में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का यह विस्तार हमारे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए भी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए।
1: श्री मोदी ने बताया कि अब तक चिप निर्माण की 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण के लिए निवेश 8 अरब डॉलर से बढ़कर 13.5 अरब डॉलर कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। सेमीकॉन इंडिया के बाद एक प्रेस वार्ता में उन्होंने ये बात कही। श्री वैष्णव ने कहा कि एक कंपनी ने आज भारत में 5 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है और अन्य कई कंपनियां भारत में अपने केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि देश के आर्थिक हितों की रक्षा और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और सरकार विभिन्न स्रोतों के माध्यम से बदलते वैश्विक परिदृश्यों के बीच ऊर्जा सुनिश्चितता जारी रखेगी। ये बयान अमरीका की प्रतिनिधि सभा द्वारा एक विधेयक पारित किए जाने के बीच आया है। इसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत और चीन जैसे देशों पर रूस से कच्चा तेल खरीदने पर 100% तक शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत भूटान की प्रगति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। उन्होंने भारत आने वाले भूटान के नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इससे भूटान में यूपीआई लेनदेन के साथ भारत और भूटान के बीच यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान कनेक्टिविटी पूर्ण हो गई है। इस दौरान भारतीय संस्थानों में भूटानी छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए नेहरू वांगचुंग छात्रवृत्ति योजना के विस्तार के लिए समझौता हुआ। इससे पहले विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री शेरिंग तोबके को 54 मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और उनके जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी का महीने भर चलने वाला राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान आज से शुरू हो गया है। पहले दिन सेवा दिवस में देश भर में रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। दिल्ली और बिहार सहित देश भर में आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना बंगाल में नारी शक्ति के सशक्तिकरण को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना में पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में 3,000 रूपए जमा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर विश्व नेताओं, राजनयिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने में उनके वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 आज से देश भर में शुरू हो गया है। इस वर्ष अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभागिता, स्वच्छ भारत, विकसित भारत। इस वर्ष ये अभियान 5 प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है। अभियान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और साझा जिम्मेदारी पर बल दिया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के कक्षा 6 के छात्रों के लिए अनिवार्य 3 भाषा नीति को वर्ष 2027 के शैक्षणिक सत्र से लागू करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्थगन का सुझाव दिया। भारत ने तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने अफगानिस्तान को 222 रन का लक्ष्य दिया था। अफगानिस्तान ने 14वें ओवर में और एक गेंद में 94 रन ही बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today positioned India as globally reliable semiconductor manufacturing hub amid weaponization of supply chains. He said, the world is looking for new and trusted manufacturing destinations and the country is steadily preparing itself to meet this need. He highlighted that India's growth in critical industries will strengthen global supply chains and create new opportunities amid evolving supply chain challenges around the globe. The Prime Minister stated this while inaugurating 5th edition of Semicon India at Yashobhoomi in New Delhi.
2: भारत हर वो कदम उठा रहा है जो हमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन बनाए। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। ऐसा देश जब एक क्रिटिकल इंडस्ट्री में सफल होता है तो इससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को ताकत मिलती है, और आज जब सप्लाई चेन वेपनाइज हो रही है तब तो इसकी महत्ता बहुत बढ़ जाती। भारत में हो रहे इस डेवलपमेंट को हमें इस बड़े नजरिए से भी देखना। भारत की एक्सपीरियंस आपके सामने और भारत में बन रहे नए अवसर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है।
3: Prime Minister Modi highlighted that India's semiconductor ecosystem is expanding rapidly and opening new opportunities for innovation, investment and growth. Mr. Modi said, the outlay for second phase of the India Semiconductor Mission 2.0 has been increased to $13.5 billion from $8 billion in the first phase. Later, addressing a press conference on the sidelines of the event this afternoon, Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnaw said, investment commitments worth around 1 lakh crore rupees have been received so far under the Semicon 2.0 ecosystem. He said, India will target at least 200 startups and companies engaged in chip design under the next phase of its semiconductor mission, Semicon 2.0. The three-day conference and exhibition bring together global semiconductor and electronics ecosystem to foster collaboration, drive innovation, strengthen manufacturing capabilities, attract investment, and develop future-ready talent. India today said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security. The External Affairs Ministry said, country remains firmly committed to ensuring energy security for its 140 crore people and will continue to do so through diversified sourcing and on the basis of evolving market dynamics.

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के